अभी आपने गीत सुना लता मंगेशकर की आवाज में और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भोर सुहानी। प्रकृति का हर कण हमें मेहनत, आशा और उत्साह का संदेश देता है। हमें भी जीवन में उमंग बनाए रखनी चाहिए।

जीवन में खुशियाँ बांटते चलें, क्योंकि अपनी खुशबू से ही फूल सबका मन जीत लेते हैं। हर नया दिन एक फूल की तरह खिलने और दूसरों के जीवन में आनंद भरने का अवसर है। और इसी विचार के साथ मैं आपसे ले रही हूँ अनुमति, छोड़ के जा रही हूँ आपको एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। जल्द मुलाकात होगी, तब तक आप सुनते रहें आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और खुश रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। संसद के मानसून सत्र के शुरू होने से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मानसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उनके पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने छात्रों और अभिभावकों को चेतावनी दी है कि ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली ओएमआर ही जमा करें। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसीलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वो जांच के लिए केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई है, इसीलिए अब हर शिकायत और हर ओएमआर शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार कक्षा 10वीं के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। शिक्षा बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के बीच एहतियाती तौर पर श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम की चेतावनी के बाद वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और जलभराव हो सकता है। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और जल स्रोत से दूर रहने की सलाह दी है। राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम विदेशी सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। बरामद सामान की कुल कीमत करीब 22 करोड़ रुपए है। इस मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धियों में से एक बताया है। पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। फिल्म आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ब्रह्मयुगम के लिए

ऊटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में आयोजित भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। फाइनल में आज रात 12:30 बजे न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। महिला कुश्ती में भारतीय पहलवान काजल ने कल हंगरी के बुडापेस्ट में 76 किलोग्राम भार वर्ग में अमेरिका की डायमंड प्रेशियस गिलफोर्ड को हराकर स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता में ये भारत का तीसरा स्वर्ण पदक है। भारत ने 53 किलो और 57 किलो भार वर्ग में 2 रजत पदक भी जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt rain water harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct bore wells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी
1: प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। इसके अंतर्गत सुनते हैं पद्मश्री से सम्मानित सुप्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक आर माधवन के साथ विशेष बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रही है जया सिन्हा।
2: नमस्कार। कभी एले पैदे के मोहब्बत बने, कभी मिनले की मासूमियत, कभी रंग दे बसंती का जुनून दिखाया, तो कभी थ्री इडियट्स का सपना। तनुमेद्स मनु के मनु से लेकर रॉकेट्री के नंबी नारायणन और शैतान के रहस्यमय किरदार तक और उसके बाद धुरंधर, इनका सफर मानो हर दौर में एक नई कहानी लिखता रहा है। भारतीय सिनेमा के बहुमुखी कलाकार, अभिनेता, लेखक, निर्देशक आर माधवन को वर्ष 2026 में कला के क्षेत्र में देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। स्वागत करते हैं आर माधवन का। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। सबसे पहला सवाल यही कि पद्मश्री मिला, काफी बधाइयां आई, लेकिन सबसे पहला विचार क्या आया? और आपने कहा कि ये सपनों से परे एक सम्मान आपको मिला है, ऐसा क्या है जो इस सम्मान को इतना विशेष, इतना खास बनाता है?
3: इस अवार्ड से रियलाइज किया कि एक प्रतिष्ठा तो है ही, साथ में एक जिम्मेदारी है कि भाई जो काम आप करते आ रहे हो ये तो इसकी शुरुआत है और आपसे ज्यादा उम्मीद की जाएगी, और फिर जिस मर्यादा के साथ आप आज तक रहे उससे ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। सो आई थिंक इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई एम रेडी फॉर इट।
2: ये सम्मान एक किरदार के लिए, एक फिल्म के लिए नहीं है, ये आपके पूरे सफर के लिए है। तो जब ये खबर मिली तो ऐसे में कोई किरदार याद आया कि ये किरदार मेरा सच में बेहद खास था? और साथ ही जिस जिम्मेदारी की बात की आपने, तो असर आया है कुछ जब फिल्म चुनाव करते हैं या कुछ सेलेक्ट करते हैं कि अब मैं पद्मश्री थोड़ा सा अच्छे से मुझे सेलेक्ट करना होगा क्योंकि एक जिम्मेदारी है मुझे?
3: बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, क्यों है कि सबसे पहले तो मुझे इसलिए सम्मानित किया गया क्योंकि मैं एक कलाकार हूँ और कलाकार की जो जिम्मेदारी है वो सबसे सर्वोत्तम आ जाता है जब मैं कहानी सेलेक्ट करता हूँ। तो एज अ एक्टर मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये मेरे पर्सनालिटी के साथ मैच करता है, मेरे बॉडी ऑफ वर्क के साथ मैच करता है। और फिर एक और फैक्टर हो जाता है कि क्या एक पद्मश्री को ऐसा एक्टिंग करना चाहिए, पर दैट्स वेरी लेट इन दी प्रोसेस। जहाँ तक सम्मान का सवाल है, ये सिर्फ जैसे कि आपने कहा बहुत फिल्मों के साथ जुड़ा हुआ ये सम्मान है, चाहे वो तमिल हो जाए या इंग्लिश हो जाए या हिंदी। मैं सिर्फ बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करता हूँ मेरे सारे लोगों के लिए जिन्होंने एक तो मुझे ब्रेक दिया और फिर इंडस्ट्री में इतने सारे रोल, एंड समाज की और मेरे ऑडियंस की जो इतने प्यार से मुझे आज तक देखते आ रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी तो बढ़ी जाती है, जो भी आप करते आ रहे हो उससे अच्छा ही करना होगा।
2: माधवन की खासियत है कि हर एक दशक में एक किरदार इनका सुपरहिट हुआ, थ्री इडियट्स एंड फिर आपने धुरंधर, वनराज। ये जो हर कोई आपसे ये सवाल पूछता है कि कैसे आप इतना रेलेवेंट रहने, हर दशक पीढ़ी को आप जोड़ा अपने से, क्या इसके पीछे का सीक्रेट क्या है?
3: जी हाँ, सीक्रेट तो है ही ना। देखिए, चाहे वो नंबे नारायण हो जाए या फिर आप धुरंधरी ले लीजिए जहाँ पे अजीत डोवाल साहब का किरदार है, उस फिल्म में अगर आप देखेंगे तो संजय दत्त साहब हैं, अर्जुन रामपाल जी हैं, अपने रणवीर सिंह हैं, अक्षय खन्ना जी, ये लोग जो असली किरदार हैं उसकी तरह दिखते तो थे, थोड़ी बहुत सेम्बलेंस थी। पर अगर आप फिल्म के डायरेक्टर होते और अगर आपसे कहा जाता कि अजीत डोवाल के लिए हम माधवन को कास्ट करें, जाहिर है कि आप मना कर देती क्योंकि कोई सेम्बलेंस नहीं है। फिजिकल रिजेंबलेंस होगी तो आप एग्री करोगे ना।
2: ये माधवन की खासियत है ना, हर किरदार में
3: वो विजन है आदित्य धर की। और मैं जो कहने की मतलब ये है कि चाहे वो कास्टिंग डायरेक्टर हो मुकेश या आदित्य धर, उनका एक विजन होता है कि हाँ माधवन ये कर पाएंगे। जब उनको कॉन्फिडेंस होता है और वो ऑफर करते हैं तभी मैं ये रोल कर पाऊंगा। अगर ये रोल मेरे पास आता ही नहीं तो मैं करूंगा कैसे? तो चाहे कोई भी रोल हो जाए, वो एक जो क्रिएटिव टीम है, जो डायरेक्टर है, जो प्रोड्यूसर है, वो लोग, वनराज ले लीजिए इन शैतान, बहुत मुश्किल है ना कि माधवन जैसे कैरेक्टर को कोई ये नेगेटिव कैरेक्टर दे, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी कोई नेगेटिव कैरेक्टर इस खतरनाक लेवल पे किया ही नहीं था।
2: और आपने एक्सेप्ट किया, ये भी
3: वही कह रहा हूँ, जो मेरे पास मौका आता है वो निडर होकर मैं एक्सेप्ट करता हूँ, वो मेरी खासियत है बस। बट ये मौका मिलना ऊपर वाले की देना।
2: किस तरह से आपको लगता है कि इस समय जिस तरह से अपॉर्चुनिटीज हैं, कंटेंट है, छोटा पर्दा, बड़ा पर्दा, ओटीटी, आपको लगता है कि एक बहुत ही बेहतरीन समय है? पिछले एक दशक में आप देखते हैं एक बड़ा बदलाव मिला है।
3: जी हाँ, ओटीटी की वजह से और रील्स की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से हमें ऐसे नए स्टार्स मिले हैं जो पहले हमें सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री से आया करते थे, उनके लिए हमें वेट करना पड़ता था कि कोई फिल्म इंडस्ट्री में कोई किरदार आए जिसको हम स्टार मानने लगे। पर ओटीटी की वजह से इतने कमाल के एक्टर्स आए हैं, इतने कमाल के टैलेंट हमें देखने को मिले हैं। इनफैक्ट हॉलीवुड में ले लीजिए, हाल ही में रिलीज हुए दो बहुत बड़े ब्लॉकबस्टर फिल्म के एक्चुअल डायरेक्टर जो है वो यूट्यूब के डायरेक्टर्स हैं, तो वहां

0: के रॉयल्टी नहीं कर पा रहे, जो चीज जो आजकल के यंग जनरेशन जो है वो बड़ी बड़ी फिल्में बनाने लगे हैं. इट इज अ फैबुलस मूव. कंपटीशन भी बढ़ गया है, एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है.
1: आप FDI से जुड़े हुए हैं, किस तरह से देखते हैं युवाओं के लिए, क्योंकि एक ऑरेंज इकोनॉमी का उदय इस वक्त हम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो विजन रहा इंडस्ट्री को, अगर हम बात करें सब्सिडीज की बात करें या फिर हम बात करें ऐतिहासिक आयोजन हुआ वेव समिट का,
0: जी
1: किस तरह से देखते हैं ये जो एक सर्ज है ऑरेंज इकोनॉमी, उस लिहाज से भारतीय सिनेमा को आप कैसे देख रहे हैं?
0: मुझे लगता है कि हॉलीवुड जो है वो हमेशा बहुत ही दूरदर्शक था. जो वो देश की खासियत थी, वो होने वाली जो संभावना है, जो होने वाली क्षमता है, उसके बारे में फिल्म बनाया करता था. और इस वजह से अगर हमें लगता है कि इस धरती पे कोई एलियन का अटैक हो जाए तो सिर्फ एक अमेरिकन ही जाके हमें बचा सकता है, या उनके पास ये टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से हम बच सकते हैं, तो उन्होंने वो पहले से प्रोजेक्ट करना शुरू किया, एक सॉफ्ट पावर को यूज़ करना शुरू किया.

0: सकते हैं। तो उन्होंने वो पहले से प्रोजेक्ट करना शुरू किया, एक सॉफ्ट पावर को यूज करना शुरू किया। मुझे लगता है कि हम इस इंडस्ट्री में अभी तक अपना सॉफ्ट पावर और अपना जो हक है जो हमने आज तक बाकी फील्ड्स में, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो एआई हो, चाहे वो साइंस हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, हर्बल मेडिसिन हो, योगा हो, हर चीज में जो हमने अपने आप को मशहूर साबित किया है पूरे दुनिया में, उस जगह को हमने अभी तक क्लेम नहीं किया एज फार एज आर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज कंसर्न। मुझे लगता है कि वो दिशा में हमें जाना बहुत जरूरी है। एक प्रोग्रेसिव इंडिया की जो कहानी है, एक एकम्प्लिश्ड इंडिया की, एक एम्पावर्ड इंडिया की जो कहानी है, वो हमें दिखाना चाहिए, बनाना चाहिए, वो हमारे फिल्म मेकर्स को समझना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे किरदारों में कभी हम पहले से ही जयशंकर साहब जैसे कोई किरदार को नहीं दिखा पाए। वो आए, उन्होंने एस्टैब्लिश किया, वो पूरे दुनिया में हमारे जिस तरीके से वो प्रेस वालों के साथ डील करते हैं, और वो किरदार क्यों नहीं हम पहले ही फिल्म इंडस्ट्री में सोच पाए। मैं इसकी छोटी छोटी जो है बातें कर रहा हूँ। सो आई थिंक जो प्रधानमंत्री जी और ये जो नया इनका एंडेवर है बहुत ही जरूरी है। एंड जब आप ये करोगे होगा ये कि हमारे यंग जनरेशन जो है उनके लिए जो नंबर ऑफ हीरोज हैं, जो नंबर ऑफ आइडल्स हैं, वो चेंज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और बहुत सारे फील्ड्स में हमें इन्वॉल्व होने का प्रोत्साहन मिलेगा।
1: एक ऐसी फिल्म है जो आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव रही, रॉकेटरी द नाम
0: जी।
1: द इफेक्ट। कितना चुनौतीपूर्ण था निर्देशन की कमान संभालना, और ये फिल्म आपके लिए कितनी एक लाइफ चेंजिंग भी थी। साथ में आपने फिल्म बनाई, लेकिन आपके अंदर क्या कुछ बदल दिया है?
0: बहुत अच्छा सवाल। इस फिल्म ने मुझे जो कुछ सिखाया है वो मैं सिर्फ फिल्मों में नहीं, मैंने अपने निजी जिंदगी में भी अपनाया है, क्योंकि इसके सारे जो मार्गदर्शक थे वो है मिस्टर नम्बे नारायण जी, पद्म भूषण है, और उनकी कहानी इतनी कमाल की थी, लोगों को उनके बारे में पता ही नहीं था और वो खुद उसके बारे में बात नहीं करना चाह रहे थे। ये हमारी खासियत है इंडियन की, नो, अपनी अचीवमेंट के बारे में बात ही नहीं करना उनको ठीक लगता है। वो अपने दर्दनाक कहानी के बारे में ज्यादा बात कर रहे थे। उनसे जो मुझे 5 साल सीखने को मिला, और जैसे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि जब आपका मन वाकई में किसी चीज पर लगता है, पहले आपको एक सपना आता है, फिर उसके बाद दूसरी बार जब आता है तो वो आपके लिए एक पैशन बन जाता है, और तीसरी बार तो एकदम आप उसके पीछे ही लग जाते हो और वो आपके लिए एक ऑब्सेशन बन जाता है। रॉकेटरी मेरे लिए एक ऑब्सेशन बन गया था। मैंने ना आए दिखाए या बाएं, मुझे लगा था कि ये कहानी बताना जरूरी है, इस इंसान के बारे में बताना जरूरी है, और इस देश को इस इंसान के बारे में जानना जरूरी है, ताकि हम अपने हीरोज को कम से कम सेलिब्रेट तो कर पाए। तो उस दौरान मैं उस माधवन को फिर से कभी देख नहीं पाया, उस सेट पे जो एक डायरेक्टर बनकर जो इंसान था, क्योंकि मैं सिर्फ नहीं एक्टर था, मैं डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, सब कुछ था उस सेट पर, और हम 3 लैंग्वेज में शूट कर रहे थे, हर एक शॉट को 3 लैंग्वेज में करना था। तो मुझे लगता है कि जब आपका दिल किसी चीज पे बैठ जाता है ना, तो फिर आप सामने में जितने चैलेंजेस हैं सब छोटे लगने लगते हैं। बस आप एवरी डे काउंट करते हो, एवरी मिनट काउंट करते हो, कि मुझे आगे नहीं देखना है, मुझे नहीं देखना है कि हम कितने दूर जाने वाले हैं और क्या हासिल करना चाहता हूँ, मुझे बस ये देखना है कि आज मुझे क्या करना है और कितनी अच्छी तरीके से मैं कर पाऊंगा, चाहे वो एक शॉट हो जाए, चाहे वो एक सीन हो जाए, चाहे वो किसी को ब्रीफ करना हो जाए। मैं पूरे दिल से, पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो चीज करता था, फिर मैं नतीजा के बारे में सोचता था।
1: आपने बात की सॉफ्ट पावर की। आज हम देख रहे हैं कि भारतीय सिनेमा को एक सॉफ्ट पावर के रूप में हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय सिनेमा आज दुनिया के कोने कोने में भारतीय संस्कृति, भारतीय कहानियां, भारतीय सितारों को लेकर जाती है और जोड़ती है। सिनेमा में वो ताकत है जो हमने देखा। आपकी ये फिल्म नामी की बात करें, राष्ट्र निर्माण को लेकर भी सिनेमा का एक बेहद बहुत ही सशक्त रोल हो सकता है, उस लिहाज से भी ये फिल्म बहुत ही खास रही। किस तरह से इतने युवाओं पर इसका इफेक्ट?
0: नम्बी नारायण साहब जिस इलाके में रहते थे वहां पे वो पहले से ही रहते आ रहे हैं पिछले 40 साल से। एक हीरो थे पहले, फिर सबके आंखों के वो तारे बन गए, फिर अचानक उन्हें देशद्रोही का करार दिया गया, जिसके वजह से लोग उनके यहाँ आना नहीं जाना चाहते थे, दिवाली पे नहीं आते थे, उनको मंदिरों में अलाउड नहीं किया जाता था, और फिर इस फिल्म के बाद वो एक वापस सुपरस्टार बन गए हैं। और आज जब भी हम कोई कंपटीशन की बात करते हैं तो देखिए ना, स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर कितने सारे कंपटीशन शुरू हो गए। आजकल यंगस्टर्स स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर कितना आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आज भी उनका जो इंजन आज तक फेल नहीं हुआ है, इट्स अ हाईली मोटिवेटिंग फैक्टर। और स्पेस रॉकेटरी के पब्लिसिटी के दौरान मैंने एक बात कही थी, पहले कहा जाता था कि जिस इंसान के पास हथियार और घोड़े हों तो वो राज कर सकता है पूरे दुनिया पे, फिर कहा जाता था कि जिसके पास शिप्स हो, जो समुन्दर को अपने काबू में कर ले, वो दुनिया पे राज करेगा, फिर कहा जाता था कि जिनके पास एयरफोर्स हो और आसमान पर जो राज करेगा वही दुनिया पर राज करेगा। आज ऐसा मौका आ गया है कि स्पेस के ऊपर जिसका राज है, जिसका कंट्रोल है, वही पूरे दुनिया पर राज करेगा, और वो सही है। और उस दौड़ में हम कभी पीछे नहीं रहना चाहते। इसी वजह से हमारे यंगस्टर्स को जो प्रोत्साहन मिलती है, व्हेन यू सी पीपल लाइक नम्बी नारायणन और द अचीवमेंट्स ऑफ इसरो, इट इज वेरी वेरी एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट।
1: कितने किरदार किए आपने, हर किरदार में एक अलग रंग माधवन का हमें देखने को मिलता है। ऐसा क्या है जो आपको लगता है कि आपकी अपनी एक प्रिपरेशन है, कि मैं इस किरदार को इस तरह से देखूं? एक विजन है डायरेक्टर का, लेकिन ये मेरा विजन, क्योंकि आज आप उस मुकाम पर हैं कि आपके पास वो एक लिबर्टी है कि मैं अपने किरदार चूज कर सकता हूं, किस तरह से उसे अपनी बात कहनी है, क्योंकि कहानी कहने का अंदाज आज बदल चुका है। तो वो मैडी इफेक्ट कहां से आता है और कैसे आता है?
0: बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत लोगों ने ऐसा कोई सवाल नहीं

0: पूछा जो जिसके बारे में जवाब देना चाह रहा हूँ। जब भी कोई किरदार हमें मिलता है करने के लिए, चाहे वो फिक्शनल हो या रियल लाइफ पे बेस्ड हो, इतना तो तय है कि इस चेहरे में जो जेन्युइन एक्सप्रेशंस होते हैं वो लिमिटेड हैं। मैं कुछ 3-4 तरीके से हंस पाऊंगा जो मैं निजी जिंदगी में वाकई में हंसता हूँ, या मैं रो पाऊंगा जैसे निजी जिंदगी में, उसकी एक रियलिटी होती है और वो रियलिटी ही कैमरा में ट्रांसलेट होती है।
1: इतना तो मैं विश्वास नहीं करती 3-4 एक्सप्रेशन है आपके पास
0: जो ओरिजिनल नहीं। एक होता है कि आपने किरदार निभाने के लिए अभिनय किया, और एक होता है कि आपने उस पर जान फूंक दी। जब आप जान फूंकते हो उसमें, तो आपकी जो एक्सप्रेशन है वो लिमिटेड होते हैं जो जेन्युइन होते हैं। तो हमें यह तय करना पड़ता है कि इस किरदार को प्ले करते समय कौन से सीन में वो जेन्युइन मैडी के एक्सप्रेशन डाल दिया जाए, ताकि वो रस जो है वो आपको लगे कि वाकई में ये इंसान जी रहा है। बाकी जगह मैं एक्टिंग कर सकता हूँ बाकी पूरे सीन में, पर मुझे वो चंद सीन्स या चंद शॉट्स पे मुझे डिसाइड करना पड़ता है कि इसमें मैडी आधा आधा वनराज को कैसे डालें, या आधा मैडी या माधव शास्त्री को कैसे ले आए, ताकि वो जेन्युइननेस के साथ वो किरदार निकल जाए, तो लोगों को वो एहसास हो जाता है कि वो रियल है। आई थिंक दैट इज द आइडेंटिफाइंग कि वो कौन सा शॉट है, कौन सा सीन है जहाँ पे आपको मैडी बनना है, असली लाइफ मैडी बनना है, और कहाँ पे आपको किरदार बनना है, वो आई थिंक इज द टैलेंट दैट इज इम्पोर्टेंट दैट आई हैव।
1: ऐसा शुरू में हुआ कि मैडी इतना ज्यादा लोकप्रिय हो गया, या आपकी जो रोमांटिक हीरो या चॉकलेट बॉय हीरो थी वो इतनी ज्यादा लोकप्रिय हो गई कि गंभीर किरदार के लिए लोग आपको, मतलब उसको गंभीरता से लेने में समय लगा ऑडियंस को या फिल्म इंडस्ट्री को, निर्माता निर्देशकों को?
0: नहीं, देखिए अगर आप मेरी फिल्मों की फिल्मोग्राफी हिंदी में देखेंगे तो पहला फिल्म था रहना है तेरे दिल में, उसके बाद दिल विल प्यार व्यार, के बाद रंग दे बसंती, फिर गुरु, फिर हो गया 3 इडियट्स, तनुवर्ड्स मनु, तो वो एक प्रोग्रेशन ही था। मुझे एक ही टाइप की फिल्में करने का मौका नहीं मिला, हालांकि मैंने सिर्फ एक फिल्म का सीक्वल किया विच इज तनुवर्ड्स मनु, पर अगर आप देखोगे तो सारे किरदार अलग हैं। विक्रम वेदा ले लीजिए, फिर साला खड़ूस, फिर रॉकेटरी, उसके बाद शैतान, फिर दे दे प्यार दे, फिर ओटीटी में जो मेरे किरदार हैं जो कि मैंने रेलवे मैन में की है, या ब्रीद में, तो सारे सीरियस ही रहे हैं एक्चुअली। और मैं चाह रहा था कि कभी यार हल्का फुल्का रोल भी कर लूं, तो उसमें दे दे प्यार दे 2 में मुझे एक मौका मिला। उसके अलावा मुझे लगता है कि लोग गंभीर रोल में मुझे ज्यादा पसंद करते हैं।
1: सबसे ज्यादा मजा किसमें आता है आपको पर्सनली, कि आज सेट पे गए हैं, आज इसमें करने में मजा आएगा, क्या आपको लगता है कि मुझे मजा आता है सबसे ज्यादा?
0: देखिए, ये सवाल का जवाब शायद वो नहीं है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये मजा तब आता है जब पूरे सेट में ना सारे लोग एक ही फिल्म को बनाने में लगे हुए हैं।
1: The craft,
0: like. नहीं, सबकी नियत जो है वो उस एक फिल्म को बनाने की है। कभी ना लोग जुड़ जाते हैं अलग मकसद लेके, कि कभी किसी को यार फिल्म पैसों के लिए करनी है, कभी किसी को ये नाम के लिए करना होता है किसी को, पर जब एक सेट में सब कोई मिलकर एक ही किस्म की फिल्म बनाना चाहते हैं, एक ही फिल्म बनाना चाहते हैं, एक ही आइडिया को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो क्या होता है कि एक दोस्ती सी छा जाती है सेट में, एक वननेस बन जाता है, तो फिर आपको ना मजा आता, बहुत मजा आता सेट पे, चाहे वो धुरंधर हो जाए, चाहे वो रंग दे बसंती हो जाए, सबको पता था कि हमें करना क्या है। कोई अपनी ओर अपनी दिशा पे जो है ना कहानी को ना अपनी क्राफ्ट को खींचने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी ये होता है अनफॉर्चुनेटली, जिससे आपको पता चल जाता है कि ये फिल्म एक ही नीयत से नहीं बनी है। तो जब सबकी नीयत सेम होती है, सब जुट के एक ही फिल्म बनाने होते हैं, तो उसका जो मजा है ना, दैट्स अनकंपेरेबल। हम अपने फैमिली से दूर रहते हैं, हम कई महीनों तक एक ही यूनिट के साथ रहते हैं, पर वो जो दूर रहने का जो दर्द है वो अच्छे सेट में होने से वो वो दर्द दूर हो जाता है।
1: जब फिल्म को लेकर आपको लगता है अलग अलग किरदार जो सारे हम सब दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किए, एंड मेरे ख्याल से आप बहुत ज्यादा एक लकी भी रहे या बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट रहे कि हर आपका किरदार एक कल्ट फिल्म के रूप में निकला। कैसे इतनी बेहतरीन फिल्मों का हिस्सा माधवन बनते चले गए?
0: जैसे कि मैंने कहा, ये किरदार मुझे ऑफर होना ये मेरे हाथ में नहीं है। अगर हमें पता चलता कि कोई किरदार बन रहा है तो हम सामने से अप्रोच करें, अगर वो मौका होता तो मैं जरूर करता था, पर मैंने कभी की नहीं क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ये किरदार बन रहे हैं। पर आपका जो सवाल है बहुत ही बढ़िया सवाल है, वो इसलिए क्योंकि जो भी रोल हमें मिलता है करने के लिए उसे पूरे जी जान लगाकर करना ही मेरा काम, और मैं ये कभी सोच के नहीं चलता कि मेरा किरदार जो है पिक्चर के बाद लोगों को सबसे ज्यादा याद रहे। ये मेरे लिए एक्चुअली, अगर मैं ऐसा अप्रोच लेके चलूंगा तो ये मेरे लिए एक हार है, या मेरी एक मैं कहूंगा कि ग्रीडी वाला एटीट्यूड होगा, जिसकी वजह से फिल्म को कोई फायदा नहीं होगा। किसी भी एक्टर से आप पूछ लीजिए कि आप चाहते हो कि आपको इस फिल्म में बहुत नाम मिले या आपकी फिल्म को नाम मिले, तो हर एक एक्टर हमेशा कहेगा कि फिल्म को नाम मिलना चाहिए, क्योंकि क्या है कि जब तक फिल्म चलेगी नहीं ना, तो फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग भले ही आपकी मतलब इतनी प्रेस करें कि आपने बहुत कमाल की फिल्म की, लेकिन पर प्रोजेक्ट नहीं चली, फिल्म नहीं चली, उससे किसी को कोई फायदा नहीं होता।
1: रिपीटिशन, दोहराव से डर लगता है?
0: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो रिपीटिशन इज पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स रिपीटेड बिकॉज इट इज गुड, बट द एटीट्यूड इज टू मेक श्योर दैट द फिल्म विंस। तो अगर किसी सीन में मेरा सीन नहीं है, हीरोइन का सीन है या किसी और का सीन है जहाँ पे वो हम पे हावी हो रहे हैं, तो एज एन एक्टर मेरे में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आई शुड अलाउ देम टू बी दैट, टू पुट मी डाउन इन द सीन, टू मेक श्योर दैट द फिल्म वर्क्स। तो मैं इसी नियत के साथ सेट पे जाता हूँ, ऊपर वाले की दुआ से आज तक वो चलता आ रहा है मेरे लिए।
1: सबसे ज्यादा किरदार आपको कौन सा याद आता है, आपको ऐसा लगता है कि ये तो मेरे से कुछ ले

0: गया ये तो, या मेरे में रह गया ये, या मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रहा।
1: मेरे ख्याल से नंबी नारायण साहब की जो किरदार है वो धुरंधर, एक और फिल्म अभी करी राउंड जो रिलीज होने वाली है जिसका नाम है जीडी नायडू, वो हमारे इंडियन एडिसन के बारे में एक फिल्म है। तो ये सब रियल लाइफ कैरेक्टर कुछ ना कुछ मुझ में छोड़ जाते हैं।
0: धुरंधर की कामयाबी को लेकर
1: जी
0: जो हिस्टेरिया हुआ, या उसका एहसास कैसे है? भारतीय सिनेमा के लिए बहुत उल्लेखनीय है ये, किरदारों के लिए, सबके लिए, बॉक्स ऑफिस नंबर्स, क्योंकि कोविड के बाद जिस तरह से हम उभरने की कोशिश कर रहे थे, कितनी महत्वपूर्ण है ये फिल्म, फिल्म इंडस्ट्री के लिए, आपके लिए, एक एक किरदार को लेकर अभी तक जिस तरह से हिस्टेरिया है या लोकप्रियता है, हाउ इम्पोर्टेंट दिस फिल्म इज?
1: मैं हमेशा ये कहता आ रहा हूँ और ये मानता भी आता रहा हूँ कि जब कोई फिल्म की रिसर्च सही होती है, जब उसके पीछे में सिर्फ पैसे कमाने की मकसद नहीं बल्कि एक कहानी को तहे दिल से कहने की जो इच्छा होती है ना, वो अगर सही रहे, उसका रिसर्च सही रहे, अगर आप दुनिया सही तरीके से बना पाओ तो वो कभी ऑर्डिनरी फिल्म हो ही नहीं सकती। जहां तक धुरंधर का सवाल है, मुझे पता है कि हर एक इंसान, हर एक जो टेक्नीशियन है, हर एक एक्टर जो है, वो इतना इन्वॉल्व था फिल्म के साथ कि इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सेपरेट द कैरेक्टर फ्रॉम द प्रोफेशनल। इट वॉज दैट वेरी गुड। इसमें हकीकत से जुड़ी हुई हर चीज है। एक प्रोग्रेसिव, एक एडवांस्ड और एक एम्पावर्ड इंडिया की जो कहानी है, वो अगर कहानी रहेगी तो लोग वाकई में देखेंगे। धुरंधर वॉज एग्जैक्टली दैट। और इसमें यंगस्टर्स को बहुत दिनों की बात थिएटर में आके एक फिल्म को देखकर गर्व करने का महसूस हुआ। उनको पता चला कि हमारी जो सुरक्षा है, जो हम इतनी आसानी से हम उसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि एक ही देश है जो एक डेमोक्रेसी में होना चाहिए, इर्द गिर्द घूम के बाकी सब देशों में देख लीजिए, ये हो नहीं पा रहा है। सुरक्षा की जो है सवाल जो है सर्वोत्तम है सबके दिमाग में बाकी के देशों में। सो आई थिंक टू बी एबल टू पे ओमाज एंड शो रिस्पेक्ट टू दीस पीपल, ये फिल्म देखना बहुत जरूरी है और लोगों ने भर भर के थिएटर में देखा।
0: रियल लाइफ हीरोज की आप बात करें, आप खुद रियल लाइफ हीरो भी रियल जिंदगी में निभा चुके हैं। पिछले 10 वर्षों में हमने पद्म में भी एक बदलाव देखा, पीपल्स पद्म हमारे पद्म बन चुके हैं, जो हमारे देश के गुमनाम नायकों, अनसुने नायकों को सम्मानित कर रहा है, किस तरह से देखते हैं?
1: ये बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि जब कोई अपना काम बगैर किसी उम्मीद का करे, समाज के लिए जो भलाई है वो किसी उम्मीद के बगैर करे और दिल से करे, तो उसका प्रभाव ज्यादा होता है, उसका असर ज्यादा होता है। और इन लोगों को सम्मानित करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी एटीट्यूड को हम ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहते हैं। सबके सामने कोई भला करना या फिर उसका फोटो निकाल कर उसके लिए शय पाना, वो कुछ लोग करते हैं, चाहे वो भला करें तो अच्छी बात है, लेकिन वो शय पाने की भी इच्छा रखते हैं। पर ये जो पद्मा की जो है फिलोसफी है, मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया है, बहुत ज्यादा सोच इसमें गया है और मुझे बड़ा गर्व है कि इस सोच के साथ पद्म अवार्ड्स दिया जा रहा है आज के दिन।
0: आखिरी सवाल, किसी ने समुद्र के किनारे चिल्ला चिल्ला कर कहा कि दुनिया को पागलों की जरूरत है। क्या आप ये मानते हैं कितना पागलपन अभी भी मौजूद है 3 दशकों के बाद, इतने किरदारों के बाद?
1: मुझे लगता है मैं तो अभी शुरुआत कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि अभी तो शुरुआत ही है, क्योंकि ये पागलपन का मतलब ये है कि जो चीज पहले से चलती आ रही है उस पर हम लोग खुश होकर उसी चीज को फॉलो करने में, जैसे कि हमारी उम्र बढ़ती जाती है, वो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है और कभी कभार वो समाज के लिए सही नहीं होता। तो उस चीज को तोड़ने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो किसी पागल के पास ही होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पागलपन मुझ में अभी भी।
0: बिल्कुल, हम भी उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही रहें और मैडी लगातार हर नए किरदार के साथ हमारे साथ यूं ही बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कुछ कलाकार हिट फिल्में देते हैं, कुछ किरदारों से याद रखे जाते, लेकिन बहुत कम कलाकार ऐसे होते हैं जो समय के साथ अपनी पहचान बदलते हैं और फिर भी दर्शकों के दिलों में वही जगह बनाए रखते हैं। माधवन उन्हीं चुनिंदा कलाकारों में से एक है, एक कलाकार जिसने मनोरंजन के साथ साथ प्रेरणा भी दी और अब पद्मश्री के रूप में देश ने उनके योगदान को सलाम किया है। माधवन जी, इस विशेष बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। इसी के साथ आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: अभी आप पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत सुन रहे थे पद्मश्री से सम्मानित सुप्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक आर माधवन के साथ विशेष बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रही थी जया सिन्हा। ये प्रसारण डीडी न्यूज के सहयोग से किया गया।
3: पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। वतन का

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt rain water harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct bore wells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.

Celine Dion singing I'm Alive, and you heard it only on the station of the nation, All India Radio FM Rainbow 101.9. Rainbow adds colors to your life. Time at the studio clock is 10:13, and friends, you are enjoying Namaste, Hello, Aadab. Okay, तो जब भी मैं आती हूँ मैं आप सबसे ये ज़रूर शेयर करती हूँ कि जिस दिन मैं आ रही हूँ या उस दिन पर कौन से ऑब्जर्वेशंस कहाँ पर हो रहे हैं. तो आप लोगों की जानकारी के लिए टुडे इज़ ऑब्जर्व्ड एज द बैंक नेशनलाइजेशन डे एंड इट इज़ ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन July 19th टू कमेमोरेट द हिस्टोरिक 1969 डिसीजन बाय then Prime Minister Indira Gandhi to nationalize 14 of India's largest private banks. This pivotal move aimed to expand rural banking, promote financial inclusion, and redirect credit towards agriculture and small-scale industries. So having said that, I move on to take you all to Jennifer Lopez, still followed by Simply Red Stars. Enjoy these songs.

0: That was Kool and the Gang singing Cherish. Beautiful lyrics saying, cherish every moment of a life. Just like how Ulysses says in the Trojan War that you should live life as you are drinking the juice. You know, live life to the tees. Juice ka glass jaise pura khatam hi kar dete hai, usi tarah zindagi ka har moment full pite pite enjoy karte hue ki last ka aakhri jo thoda sa dana bhi reh jayega na, उस तरह से निचोड़ते हुए जिंदगी को एंजॉय करते हुए जीना चाहिए. एंड ऑल दिस ओनली ऑन ऑल इंडिया रेडियो FM रेनबो 101.9. रेनबो एड्स कलर्स टू योर लाइफ.
1: डॉक्टर बी आर अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी डिग्री पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स.

I Want It That Way by Backstreet Boys. ये गाना अभी आपने सुना only on the station of the nation, All India Radio FM Rainbow 101.9 Rainbow के साथ Life Rangeen. Studio clock में time हो चुका है 10:54 and 43 seconds. बस कुछ ही देर में यानी कि 11 बजे आप सुनेंगे पोस्ट बॉक्स नंबर 111. उसके बाद न्यूज़ रिले के बाद 12:15 को मैं आप सभी के सामने वापस हाजिर हो जाऊंगी, ढेर सारे बातें, ढेर सारे गाने और अच्छा सा टॉपिक लेकर. तो मेरे साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, कहीं मत जाइएगा. आप सब सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब मेरे साथ यानी कि आरजे दीपा राज के साथ. तो एक और प्यारा सा गाना आप सभी के लिए, गाने के बाद आप सुनेंगे 11 बजे पोस्ट बॉक्स नंबर 111.

नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम अलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूं। साथियों, जैसा कि हम जानते ही हैं, हमारा ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का विस्तार है। प्रधानमंत्री जी जिन विषयों का उल्लेख करते हैं, उन्हें और अच्छे से समझने के लिए, अपनी जानकारी उन विषयों के बारे में बढ़ाने के लिए हमारा ये कार्यक्रम समर्पित है। इस कार्यक्रम में हम आमंत्रित करते हैं अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों को और उनके माध्यम से प्रधानमंत्री जी द्वारा उल्लेख किए गए उस विषय को, उन व्यक्तियों को, उन हस्तियों को हम और समझते हैं, उनके कार्य के बारे में हम और जानते हैं और इस तरह हम गहरे से जुड़ते हैं, अपनी जड़ों से अपनी संस्कृति को थोड़ा और अपनाते हैं। इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने नालंदा विश्वविद्यालय की एक ऐसी पहल का उल्लेख किया जो अनुकरणीय है, जो बेहद प्रेरित करती है। किस तरह से हमारी जो परंपरागत शैक्षणिक विधियां थी, उन्हें नालंदा विश्वविद्यालय पुनर्जीवित कर रहा है, उन्हें प्रचलित कर रहा है और किस तरह से हमारे युवाओं को एक ऐसा मार्ग दिखा रहा है जो जीवन में आगे बढ़ने में हमें लगातार तैयार करता रहेगा, हमें लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता रहेगा। तो आइए सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं मन की बात का वो हिस्सा

0: में माननीय प्रधानमंत्री जी ने नालंदा विश्वविद्यालय, शास्त्रार्थ की परंपरा और साथ ही आधुनिक भारत के जो बड़े बदलाव हैं उनका उल्लेख किया है।
1: साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए एआई इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य घड़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद, संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ, तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
0: तो साथियों, सुना आपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से नालंदा विश्वविद्यालय की सराहना की है। और आइए अब मैं आपका परिचय करवा रही हूं हमारे विशेषज्ञों से, जिनके माध्यम से हम इस विषय के बारे में आज और जानेंगे। आज हमें समय दिया है, हमारे स्टूडियो में आए हैं माननीय कुलपति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली से प्रोफेसर श्रीनिवास वारखेड़ी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में।
2: नमस्कार।
0: हमारे साथ हैं श्री प्रेम शंकर शर्मा जी, आप जाने माने संस्कृत विद्वान हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता हैं, पूर्व में पीसीएस अधिकारी, अपर जिला अधिकारी के रूप में आप सेवानिवृत्त हुए हैं इलाहाबाद से। प्रेम शंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में।
2: धन्यवाद नीलम जी।
0: और हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील जोशी, आप सहायक आचार्य हैं संस्कृत विभाग हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद नीलम जी।
0: मैं सबसे पहले श्रीनिवास सर आपसे ये जानना चाहूंगी, प्रधानमंत्री जी के उद्गार हमने यहाँ पर सुने, उसमें ऐसे बहुत सारे शब्द आए हैं जो नए लगते हैं, लेकिन ये भी हमें पता है कि वो हमारी संस्कृति का ही हिस्सा रहे हैं और हमें लगातार वो प्रेरित करते रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने शास्त्रार्थ की जिस परंपरा का उल्लेख किया है वो असल में क्या है?
2: नीलम जी, इस विषय में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं
0: जी,
2: जिन्होंने अपने मन की बात में हमारी पारंपरिक शास्त्र विरासत की एक बहुत बड़ा सराहना की उन्होंने
0: जी।
2: भारत देश में हमेशा संवाद के लिए बहुत बड़ा स्थान रहा है। शास्त्रार्थ यानी संवाद।

0: जी
1: वाद कथा इसको हम बोलते हैं। जब किसी विषय पर निर्णय करना हो, अनेक मत हो, उन सारे मतों को सामने रखते हुए एक मध्यस्थ को बीच में रख के शास्त्रार्थ करते हैं, अपने अपने मत को सब रखते हैं, उसके बाद जो संवाद के बाद जो निर्णय होता है वो मध्यस्थ उस निर्णय को बताते हैं। तो इस व्यवस्था को हमने शास्त्रार्थ नाम दिया है
0: जी।
1: हमारी परंपरा में इसको वाक्यार्थ भी बोलते हैं, वादार्थ भी बोलते हैं और वाद कथा भी, संवाद भी, ये समानार्थक शब्द है। हमारी शास्त्रीय परंपरा में आज भी वो जीवित परंपरा है। आज भी व्याकरण, न्याय, मीमांसा, वेद भाष्य और द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत की परंपरा में द्वैत और अद्वैत के अनेक विमतियों को निश्चय करने के लिए शास्त्रार्थ आज भी करते हैं
0: जी।
1: लेकिन ये परंपरा केवल एक पारंपरिक व्यवस्था का अंग रहा है। इसको पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस शास्त्रार्थ परंपरा को उज्जीवित करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय को सराहना की है। उसके द्वारा उन्होंने इस व्यवस्था को पूरे राष्ट्र का एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था का अंग के रूप में उन्होंने स्वागत किया है, इसलिए मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: जी डॉक्टर सुनील जोशी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बदलते दौर में बहुत सारी नई चीजें हम अपने आसपास लगातार घटित होते हुए देख रहे हैं और युवाओं के जीवन का ये हिस्सा भी बनते जा रहे हैं, जैसे कि AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन साथ ही एक चुनौती ये भी है कि हम अगर अपने पांडुलिपियों की बात करते हैं, अगर हम अपने उपनिषदों, शास्त्रों और प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण की बात करें, अपने वेदों की बात करें, तो क्या आपको लगता है कि AI इसमें किसी तरह सहायक सिद्ध हो सकती है या ये एक चुनौती है जो हमारे इन प्राचीन जो संपदा है इसका ह्रास करेगी?
2: जी नीलम जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया पांडुलिपि से संबंधित। देखिए, भारत की जो समृद्ध ज्ञान परंपरा है, जो हमारी बौद्धिक जो परंपरा है, उसका जो संरक्षण है वह तो पांडुलिपियों में संरक्षित है ही।
0: जी,
2: हम जानते हैं कि जो पांडुलिपियां हैं केवल मात्र हाथ से लिखे हुए कोई पुराने दस्तावेज नहीं है, बल्कि भारतीय सभ्यता की अक्षुण्ण जीवन स्मृति वो हैं और उनको ताम्र पत्र पर, भोज पत्र पर, वस्त्रों पर लिखा गया है और आज भी उनसे जो ज्ञान संपदा का जो विस्तार हो रहा है, निश्चित रूप से हम उसके द्वारा भावी पीढ़ियों को उस सुरक्षित ज्ञान के संवहन के लिए हम निरंतर प्रेरित कर रहे हैं। और जहां तक प्रश्न है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कि किस प्रकार से इस ज्ञान परंपरा को और अधिक दृढ़ भूमिका दे सकती है, तो मैं कहना चाहूंगा कि सबसे अच्छी बात यह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कि जो प्राचीन पांडुलिपियां हैं जो कि धुंधली हैं या जो क्षतिग्रस्त हैं, उन पांडुलिपियों की उच्च गुणवत्ता वाली जो डिजिटल रिस्टोरेशन की जो बात है वो आसानी से हो सकती है, जिसमें AI जो है इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक के द्वारा उन पांडुलिपियों को डिसाइफर कर सकता है और अनेक लिपियों में जैसे कि ब्राह्मी है, शारदा है, सिद्धम है या नंदीनागरी है या द्रविडियन भाषाओं में या द्रविडियन लिपियों में जो लिखी गई पांडुलिपियां हैं उनको डिसाइफर करके स्वचालित पहचान के द्वारा एक डिजिटल पाठ तैयार कर सकता है, जिससे कि लाखों पृष्ठों का जो है डिजिटलाइज वर्जन हमारे सम्मुख उपस्थित हो सकता है। तो इस दृष्टि से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो निश्चित रूप से पांडुलिपियों के संरक्षण, कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन और कैटलॉगिंग के लिए बहुत सहायक हो सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता में जो ज्ञान भारतम जैसा एक मिशन जो स्थापित हुआ है, निश्चित रूप से उसमें अभी लाखों मैन्युस्क्रिप्ट्स देश भर से जो हैं संग्रहित हुई हैं और जो विद्यार्थी संस्कृत पढ़ते हैं या जो भाषा विज्ञान पढ़ते हैं उन विद्यार्थियों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए एक अनुपम धरोहर है अनुसंधान के लिए। और इसी से देखिए हमारा नवाचार विस्तृत होगा और भारत की ज्ञान संपदा विश्व भर में प्रसारित होगी।
0: जी, तो इस तरह से AI सहायक है। जी,
2: निश्चित रूप से।
0: जी, मैं प्रेम शंकर जी आपसे अब जानना चाहूंगी, जब हम संस्कृत की बात करते हैं तो विद्यालयों में हम सबका जुड़ाव तो रहा ही है, आरंभिक चरण में, अपनी शिक्षा के आरंभिक चरण में हम सभी संस्कृत पढ़ते हैं। कुछ विद्यार्थी जो है वो आगे भी इसकी पढ़ाई जारी रखते हैं और कुछ सातवीं, आठवीं, नवीं कक्षा के बाद छोड़ देते हैं। आपसे जानना चाहूंगी, जब हम शास्त्रार्थ की बात करते हैं तो क्या यह केवल संस्कृत भाषा से जुड़ा है और जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है इसमें क्या मूल अवधारणा रही है, जो प्राचीन साक्ष्य है, क्या इस बारे में कुछ मिलते हैं हमें?
3: असल में शास्त्रार्थ अपनी बहुत प्राचीन परंपरा का एक अंग रहा है हमारे।
0: जी,
3: जिसमें शास्त्र कहते हैं ऐसा ज्ञान जो कि प्रमाणित हो, जो कि ग्रंथों में, स्मृतियों में, पुराणों में जिनका उल्लेख मिलता हो, वो ज्ञान। उस ज्ञान के कहीं अगर विरोधाभास होते हैं तो उसके संबंध में लोग अपना

0: शास्त्रार्थ के माध्यम से अपना व्याख्यान उसमें प्रस्तुत करते हैं। और जैसा कि कुलपति जी ने थोड़ी पूर्व में बताया था, उसके बाद जो सर्वोत्तम निष्कर्ष होता है, सर्वोत्तम मत जो होता है या तर्क संपन्न जो होता है, उस पर एक निर्णय हो जाता है। ये शास्त्रीय परंपरा, हमारी शास्त्रार्थ की परंपरा, शास्त्रीय परंपरा ही है एक तरह से, जो कि प्राचीन काल से चली आ रही है। और बल्कि कहना चाहिए कि ये, मैं तो ये मानता हूं कि गांवों में जो पंचायत जो चला करती थी, वो भी उस शास्त्रार्थ परंपरा का ही एक रूप है, क्योंकि उसमें अनेक लोग बैठते थे, कम से कम 5 तो बैठते ही थे। लेकिन पंचायत में 5 के अतिरिक्त ये नहीं था कि वो छठा व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। तो वो एक खुला मंच होता था गांव में भी, और अपनी अपनी बात रखते थे, और सत्य के निर्णय पर सब एक मत होकर के पहुंच के उसको पूरा समाज उसको मान्यता देता था। तो ये बहुत प्राचीन परंपरा है, और जो आज भी हम लोकतंत्र के रूप में, प्रजातंत्र के रूप में, हम उसका आज भी पल्लवन और पुष्पन देख रहे हैं
1: जी।
0: और ये शास्त्रार्थ सदैव जीवित रहेगा। और ये प्रधानमंत्री जी के जो मुख से निसृत हुआ है,
1: जी,
0: उसके आधार पर तो मैं समझता हूँ कि अब इसके विशेष रूप से ज्यादा बल दिए जाने की आवश्यकता है, जैसे कि उन्होंने अन्य विश्वविद्यालयों से इस संबंध में प्रार्थना की है कि वो भी AI और उसके माध्यम से, शास्त्रार्थ के माध्यम से, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय ने प्रयास किया है, उस तरह से अन्य विश्वविद्यालय भी उस तरह का अपना योगदान करें।
1: जी, यानी केवल भाषा से इसका संबंध नहीं है, शास्त्रार्थ का मतलब है किसी विषय के बारे में अपना मत रखना और जो सर्वोत्तम पद्धति है उसे स्वीकार करना।
0: जी,
1: मुझे याद आ रहा है कि जब हम कॉलेज में थे तब भी हमारे यहाँ अलग अलग अवसरों पर जब कॉम्पिटिशन्स होते थे, प्रतिस्पर्धाएं होती थी, तो डिबेट भी उसमें एक प्रतिस्पर्धा होती थी, और एक विषय के पक्ष में और विपक्ष में हम बोलते थे, फिर उसमें विजेता विद्यार्थी जो है उन्हें पुरस्कृत भी किया जाता था। तो अभी हमें समझ में आ रहा है कि शायद इसी परंपरा को जीवंत किया जा रहा था।
2: लेकिन उसमें एक जोड़ना चाहता हूँ, भारत में शास्त्रार्थ व्यवस्था में एक पद्धति विकसित की गई है। आज जो केवल डिबेट होता है उसमें केवल पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष के रूप में तो अपनापन रखते हैं, ये युक्ति के आधार पर निर्णय हो सकता है। लेकिन हमारी परंपरा में शास्त्रार्थ कैसे करना है, कैसे प्रस्तुति रखनी है, जैसे आज के कोर्ट में, न्यायालय में कोई पद्धति है, उसी तरह का प्राचीन पद्धति है, उसको शास्त्रार्थ पद्धति बोलते हैं। उस पद्धति में यदि किसी के मत हराना है, उसको हराना नहीं माना जाता था, उस मत के ऊपर उनको आक्षेप जितना करना है, कैसे करना है, प्रमाण क्या देना है, युक्ति क्या देनी है, युक्ति का बल कितना है, प्रमाण का बल कितना है, ये सारा निर्णय का अंग होता था। तो निर्णायक भी उसको ठीक से जानते थे, और जो पूर्व पक्ष के व्यक्ति, उत्तर पक्ष के व्यक्ति अपने मत को जब स्वीकार करते थे दूसरे मत को, तो एक स्पर्धा नहीं थी, ये सत्यान्वेषण का मार्ग था।
1: यानी जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसकी खोज सब मिलकर कर रहे हैं, और इसमें मत भेद हो सकता था, मन भेद नहीं था, व्यक्ति का सम्मान जो है वो बना रहता था। यहाँ सर मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगी, लेकिन उससे पहले आपकी पसंद का गाना मैं श्रोताओं को सुनवाना चाहती हूँ।
2: संस्कृत के गाने मुझे बहुत पसंद है, वैसे हिंदी के गाना भी सुनते हैं, लेकिन मेरे विश्वविद्यालय के गाने में एक जो पद्य है, बहुत सुंदर पद्य है, जो हमारे नवाचार को अपने आप में एक प्रतिबिंबित करता है। मुझे लगता है कि संस्कृत गानों को भी हमारे युवा लोग सुनना चाहिए। इस दृष्टि से एक इस गाने का इस भाग को मैं आपको उपहार के रूप में देना चाहता हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, हम ये अपने श्रोताओं को जरूर सुनवाएंगे।

इन मीठे से शब्दों के साथ ही जो गूढ़ अर्थ है इनका, उन्हें स्वीकार करने के साथ ही मैं एक बार फिर से आप सभी का पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में स्वागत करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं अपनी प्राचीन शास्त्रार्थ पद्धति की, और साथ ही जो नई तकनीक हमारी शिक्षा पद्धति में जुड़ी है उनकी बात भी हम कर रहे हैं। कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ हैं माननीय

कुलपति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली से प्रोफेसर श्रीनिवास वारखेड़ी हमारे साथ हैं। श्री प्रेम शंकर शर्मा, आप जाने माने संस्कृत विद्वान हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता हैं। और हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील जोशी, आप सहायक आचार्य हैं हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के। अब सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया कि AI को हम अपना तो रहे हैं और

0: एआई को हम अपना तो रहे हैं और हमारे युवा जो हैं उनका काम बहुत हद तक अब डिपेंड करता है एआई पर, वो उसकी मदद लेते हैं अपने काम में। लेकिन एक ये चुनौती भी है कि हम अपनी क्रिएटिविटी, ओरिजिनल थिंकिंग को कैसे बचाए रख सकें। तो इसमें हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या भूमिका निभा सकती है, हमारे विद्यालय क्या ऐसा कर सकते हैं, हमारा समाज ऐसा क्या कर सकता है कि हमारी रचनात्मकता जो है वो भी बची रहे और साथ ही नवाचार को लेकर हम आगे बढ़ें।
1: देखिए, मानव की इस यात्रा में जब नई नई टेक्नोलॉजी आते हैं उसमें हम प्रवेश करते हैं, हमेशा एक चैलेंज रहा है। जैसे हमारे हाथों से जो करते थे वो यंत्र बन गए, तो ये भी चैलेंज रहा है।
0: जी।
1: और जब हम पादचरण के द्वारा यात्रा करते थे, वाहन आ गए हमारे, उसके बारे में भी चर्चा है। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी के साथ मानव यात्रा का हमेशा एक संघर्ष दिखता है, लेकिन वो संघर्ष नहीं है, मानव कौशलता का विकास का एक भाग है। वो हम टेक्नोलॉजी छोड़ भी नहीं सकते हैं और टेक्नोलॉजी के साथ संघर्ष भी नहीं कर सकते।
0: जी।
1: तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि एआई टेक्नोलॉजी में प्रवेश करने के बाद मानव अपने आप को दूसरे ढंग से अपना कौशल का विस्तार करेगा, बुद्धि का विस्तार करेगा। लगता है शुरुआत में ये हमारे लिए चैलेंज है, लेकिन जिसके साथ हम स्नेह करेंगे उसके साथ हम जीना भी सीखेंगे। साथ ही हम अपनापन को मानव ने कभी छोड़ा नहीं आज तक। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एआई हमारे साथ रहेगी। जैसे जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे आ गई, क्या आज भी मानव निर्मित सुंदर कलाकृतियों के बारे में कोई प्रश्न है क्या? डिजिटल टेक्नोलॉजी में उसका एक नयापन मिला है। आज डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कई चित्रकार अच्छे अच्छे नए चित्र दिखते हैं। अब टेक्नोलॉजी आया है साउंड का, अकोस्टिक का, उसके साथ अच्छे गाने भी आए हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि कभी भी मानव का जो कलात्मकता है और प्रतिभा है उसके लिए सारी टेक्नोलॉजी हमारे लिए अनुकूल बनेंगे, कभी विरोधी नहीं बनेंगे। लेकिन एक जो है उसको सीखने का और उसके साथ जीने का मन करना होगा और उसका संयम के साथ उपयोग करना, क्योंकि मैं मानता हूं एआई टेक्नोलॉजी जैसे कि अभी हमारे सामने जो आया है बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजियों से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मैं इसको ब्रह्म राक्षस मानता हूँ। यदि ब्रह्म राक्षस को आप अपने वश में रखे बहुत ही काम करेगा वो आपके लिए। लेकिन ब्रह्म राक्षस यदि आपका वश में नहीं है आपको खा जाएगा, तो सोचना पड़ेगा उसका उपयोग करने से पहले। तो इस दृष्टि से मुझे आज ये वरदान है, हम ऐसा युग में जी रहे हैं, पूरी दुनिया में किसी सभ्यता ने इसको देखा नहीं था। वंडरफुल, इसके साथ करना चाहिए।
0: और बहुत ही प्यारी बात आपने कही कि हम जिससे प्रेम करेंगे उसके साथ एक सामंजस्य भी होगा, उसके साथ हम जीना भी सीखेंगे और हमारी बुद्धि का विस्तार होगा इससे, अगर हम चाहें तो। यहाँ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी सर, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक शुरू करने की पहल की है, तो आप शिक्षा व्यवस्था में इसे कितना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन मानते हैं, ऐसा क्यों किया गया है?
1: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको खासकर उल्लेख किया है, इसलिए नहीं है कि बीटेक भारत में पहली बार शुरू हो रहा है।
0: जी,
1: बीटेक पाठ्यक्रम भारत में कई संस्थानों में है।
0: जी,
1: लेकिन उसके पीछे रहा हुआ उद्देश्य के बारे में माननीय प्रधानमंत्री ने एक उल्लेख किया है। वो उल्लेख ये है कि तकनीकी व्यवस्था को हमारी भाषाओं के साथ, हमारी प्राचीन ज्ञान धरोहर के साथ जोड़ने का प्रयास, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बीटेक एआई और डेटा साइंस ये पाठ्यक्रम ही क्रांतिकारी नहीं है अपने आप में, लेकिन एआई टेक्नोलॉजी को हमारे प्राचीन ज्ञान परंपरा के साथ, भारतीय भाषाओं के साथ, संस्कृत के साथ जोड़ने का प्रयास पहली बार हो रहा है। ये कार्य कोई आईआईटी नहीं कर रहा है, एक संस्कृत विश्वविद्यालय कर रहा है। पहली बार संस्कृत विश्वविद्यालय अपने पारंपरिक क्षेत्र से बाहर एक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का प्रयास, साथ ही भारतीय भाषाओं के साथ टेक्नोलॉजी को जोड़ने का प्रयास जो कर रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस उद्देश्य को देखा है।
0: जी,
1: मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, इस विशेषता को आपने देखा और उल्लेख किया, मन की बात के द्वारा पूरे दुनिया को इस विषय को पहुंचा दिया।
0: जी,
1: ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, बार बार माननीय प्रधानमंत्री उसको उल्लेख करते हैं, संस्कृत केवल भाषा मात्र नहीं है, एक ज्ञान की धारा है, उसको जीवन के सभी अंगों में सभी डिसिप्लिन के साथ जोड़ने का आवश्यकता है, उसको मानते हुए उसमें हमने एक प्रयास किया है, हमने आधुनिक तंत्र ज्ञान के साथ जोड़ा है इस कार्यक्रम के द्वारा, भारतीय विधि शास्त्र के साथ जोड़ा है, आयुर्वेद के साथ जोड़ा है और सिविल सर्विस स्टडीज के साथ जोड़ा है। तो कुल मिलाकर भारत के जितने भी हमारे विभिन्न क्षेत्र है उन क्षेत्रों में संस्कृत को जोड़ने का प्रयास केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कर रहा है, उस दिशा

0: ये भी एक प्रयास है बीटेक कार्यक्रम, जिसमें एआई टेक्नोलॉजी को केवल संस्कृत नहीं सभी भारतीय भाषाओं के माध्यम में हम जोड़ना चाहते हैं। इसमें
1: जी
0: दोनों तरह के छात्रों को भाग लेना होगा, जिसमें संस्कृत और भारतीय भाषा जानते हो, साथ में टेक्नोलॉजी जानते हो। आने वाले दिनों में लार्ज लैंग्वेज मॉडल, वो संस्कृत और भारतीय भाषा आश्रित लार्ज लैंग्वेज मॉडल होंगे।
1: जी
0: उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स तैयार करने का बहुत बड़ा एक उद्यम हम जो शुरू कर रहे हैं, उसके लिए पूरे शिक्षा मंत्रालय का समर्थन है, पूरे भारत सरकार का समर्थन है, माननीय प्रधानमंत्री जी का समर्थन है, और आपके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने इसको आगे बढ़ाया है।
1: जी तो ये आने वाले कल की तैयारी है। जी डॉक्टर सुनील जोशी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम दीक्षांत समारोह अक्सर सुनते हैं
0: जी
1: और ऐसा लगता है कि ये विद्यालय विश्वविद्यालयों में अब केवल डिग्री वितरण समारोह है। मैं आपसे हमारी शिक्षा परंपरा, भारतीय शिक्षा परंपरा में दीक्षांत समारोह का वास्तविक स्वरूप क्या था, इसका महत्व क्या है, ये जानना चाहूंगी।
2: बहुत अच्छा प्रश्न किया नीलम जी आपने। देखिए, भारतीय ज्ञान परंपरा में जो कि इतनी समृद्ध है, विशाल है, विराट है, उसमें उपनिषद कहते हैं सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात विद्या वही है जो मनुष्य को अज्ञान से, भय से, अहंकार से और संकीर्णताओं से मुक्त करे।
1: जी
2: तो इसी की जो प्रबल भावना है वह हमारे दीक्षांत में हमें प्रकट होती है, क्योंकि भारतीय शिक्षण पद्धति में जो दीक्षांत समारोह है वह केवल शिक्षा समाप्ति का कोई विशेष उत्सव नहीं है, बल्कि जीवन के प्रति नए दायित्वों के अध्यायों का एक शुभारंभ है। इसीलिए हमारे गुरुकुलों में अध्ययन की समाप्ति नहीं होती है, बल्कि दीक्षा के पूर्ण होने से जो विद्यार्थियों में ज्ञान, चरित्र, अनुशासन, सेवा और जो लोक मंगल के जो संस्कार हैं उनका प्रतिष्ठापन किया जाता है। तो अब जैसे कि हम जानते हैं कि प्राचीन भारत में जब विद्यार्थी गुरुकुलों में पढ़ते हैं तो वो वेद सहित, चतुर्वेद सहित षडंग की वो विद्या को प्राप्त करते हैं, दर्शन शास्त्र में प्रवीण होते हैं, राजनीति हो चाहे शिल्प शास्त्र उसमें प्रवीण होते हैं, और इन सभी परीक्षाओं में सफल होने के उपरांत वे समाज में जो प्रवेश करने की जो अनुमति है उसको गुरु से प्राप्त करते हैं, यानी कि ब्रह्मचर्य आश्रम के उपरांत वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, तो आश्रम प्रवेश की भी अनुमति इसमें मिलती है। और विशेष रूप से दीक्षांत समारोह के संदर्भ में जब ये आयोजन किया जाता है समावर्तन संस्कार के उपरांत, तो तैत्तरीय उपनिषद की जो शिक्षावल्ली है वहां पर गुरु जो है वो शिष्य को बहुत सुंदर उपदेश देते हैं, सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायान मा प्रमद, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तो आप देखिए कि जो हमारे देश की इतनी विस्तृत और इतनी समग्र शिक्षा विकास की जो पद्धति रही है उसमें इतने सुंदर जो औपनिषदिक वचन है, जो वैदिक वचन है, वो किस प्रकार से हमारे राष्ट्र को कितना संगठित करते हैं और हमें कितनी सामाजिक संरचना को कितना अधिक वो सामंजस्यपूर्ण या समरसतापूर्ण युक्त बनाते हैं। और मेरा मानना है कि जो भारतीय जो दीक्षांत की जो दृष्टि है उसमें शिक्षा का लक्ष्य केवल इन्फॉर्मेशन नहीं देना है बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन करना है, यानी कि व्यक्तित्व परिवर्तन करना, और एक ऐसा व्यक्तित्व जिससे कि वह व्यक्ति भी ऋषि, परमर्षि, महर्षि, देवर्षि, राजर्षि की कोटि में अपने आप को रखे। तो ये एक आदर्श युक्त जीवन शैली जो हमें शिक्षा से मिलती है उसी की ये एक मूल भावना हमें दीक्षांत समारोह के अवसर पर देखने को मिलती है। जो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति है NEP 2020, उसमें भी इसी भारतीय दृष्टिकोण को पुनर्स्थापित करने का जो प्रयास है उससे राष्ट्र निर्माण का और जीवन को जीने का एक महत्वपूर्ण जो है वो अवसर है।
1: जी, महत्वपूर्ण अवसर है और इसीलिए शायद इसमें दीक्षा शब्द जुड़ा है शिक्षा की बजाय, क्योंकि दीक्षा का अंत नहीं होता है, आप जितना गुरु का अनुसरण करते जाएंगे वो दीक्षा और गहरी होती जाएगी।
2: जी,
1: बहुत अच्छा आपने इसका विवेचन किया है यहाँ पर। अब मैं आपकी पसंद का एक गाना श्रोताओं को सुनवाना चाहती हूँ।
2: एक बहुत ही मुझे प्रिय है एक गीत, प्रिय प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी, जो कि हम तुम और वो फिल्म से है और जिसको गाया है किशोर कुमार जी ने।
1: जी, और ये क्यों पसंद है आपको?
2: क्योंकि इसमें जो शब्दावली है वो संस्कृत परिनिष्ठित है, तो इस कारण से मुझे बहुत प्रिय है।
1: जी, इस गीत की विशेषता यही है। तो लीजिए श्रोताओं, आपको सुनवाते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गाना।
3: प्रिय

0: गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज हम अपने विशेषज्ञों के माध्यम से अपनी प्राचीन शिक्षा पद्धति और समृद्ध भारतीय परंपराओं को जान रहे हैं, साथ ही हम ये भी पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे युवा शक्ति को और ऐसा क्या दिया जा सके कि वो जो ऊर्जा है उसे एक सही राह पर लेकर आगे बढ़े और हम विकसित भारत के लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ रहे हैं, तो हमारे युवाओं का भी इसमें लगातार योगदान बना रहे। ये प्रेरणा हमें प्रधानमंत्री जी ने दी है मन की बात में उल्लेख करके नालंदा विश्वविद्यालय का। मैं प्रेमशंकर जी आपसे ये जानना चाहूंगी, प्रधानमंत्री जी ने और भी इसमें कई शब्द बोले हैं। प्रधानमंत्री जी ने पुरुष सूक्तम का जिक्र किया है, श्री सूक्तम है, श्री रुद्रम है, दुर्गा सूक्तम है। मैं आपसे ये अनुरोध करूंगी कि थोड़ा विस्तार से आप हमें ये समझाएं।
1: धन्यवाद नीलम जी। प्रधानमंत्री जी ने जो सूक्तम का जो उल्लेख किया है
0: जी,
1: वो हमारी प्राचीन जो वैदिक संपत्ति है
0: जी,
1: जो वेद हैं हमारे, जो मंत्र हैं, उनका उल्लेख करके, क्योंकि वही सूक्त हैं। सूक्त का अर्थ है जो उत्तम बात कही गई हो, वो है सूक्त
0: जी।
1: ये हमारा जो प्राचीन ज्ञान है वो किस कारण से, देखिए एक तो है वेद, इनको श्रुति कहा जाता है
0: जी।
1: वो कहीं लिखे नहीं गए थे, वो केवल स्मृति के आधार पर सुन सुन करके लोगों ने याद किए थे, वो किसी के द्वारा रचे नहीं गए थे, इसीलिए वो, और वो सब के सब क्या हैं, वो मंत्र हैं
0: जी।
1: और मंत्र क्या है, वो मंत्र हैं, वो छंद हैं, क्योंकि छंद भी जो है वेदों का एक अंग है। छंद पादौ तु वेदस्य, छंद जो है वेद का जो है वो चरण है, उनके बिना ज्ञान नहीं चल सकता, इसीलिए ये छंद। और ये आश्चर्य की बात है,

0: कि हमारे वेद सबको मंत्र याद रहे, उसका कारण ही यह है कि वो छंदोबद्ध थे, छंदों में थे, और वो छंदों को याद रखना आसान होता है और गद्य का याद, इसीलिए आप हमारे हिंदी के गीत जो हैं, चूंकि वो छंदोबद्ध हैं, इसलिए वो सबको हृदयंगम भी हो जाते हैं और सबको पसंद भी आते हैं, और इसीलिए इतना पुराना हमारा जो ये ज्ञान है, वैदिक ज्ञान है, वो छंदोबद्ध होने के कारण ये आज तक हमें प्राप्त होता है। इनमें से ही ये मंत्र हैं
1: जी,
0: जिनको कि श्री सूक्तम कहा गया है। ये श्री सूक्तम, ये श्री कहा गया लक्ष्मी जी के लिए, और पुरुष सूक्तम कहा गया नारायण, लक्ष्मी और नारायण
1: जी।
0: तो हमारे यहाँ तीन देव की कल्पना की गई है, ब्रह्मा विष्णु और महेश
1: जी।
0: तो ये तीन जो वो हैं, तो तीन बिना शक्ति के कुछ नहीं कर सकता, तो इनकी ये शक्ति रखते हैं, इनके साथ शक्ति जुड़ी हुई है, तो नारायण के साथ लक्ष्मी जी की शक्ति जुड़ी हुई है, क्योंकि ये कहा भी गया तीनों परमात्मा एक ही है लेकिन वो तीन रूपों में कार्य करता है। तो वो कैसे, रजो जुषे जन्मन सत्व व्रतये सितौ प्रजानाम प्रलये तमस्प्रसे अजाय सर्गस्थित नाश हेतवे त्रयी मयाय त्रिगुणात्मने नमः। यानी परमात्मा जो है त्रिगुण स्वरूप है, उसमें तीनों शक्तियां हैं, यानी जन्म सृष्टि करने की और पालन करने की और संहार करने की, वो शक्ति संपन्न होने के कारण ये सब करता है
1: जी।
0: तो ये श्री सूक्तम जो लक्ष्मी जी का सूत्र है और पुरुष सूक्तम जो है नारायण के सूत्र हैं, तो ये जो हैं ये प्रार्थना और स्तुतियों में प्रयुक्त किए जाते हैं। ऐसे ही रुद्र भगवान के जो हैं वो रुद्र सूक्तम है, देवी जो सूक्तम है वो देवी महात्म्य है
1: जी।
0: तो इस तरह से ये चूंकि मंत्र होने के कारण ये पठनीय रहते हैं और श्रवणीय भी रहते हैं और याद भी रहते हैं
1: जी,
0: और ये फल भी देते हैं
1: जी। तो स्तुति का माध्यम है ये।
0: हाँ, स्तुति के माध्यम है, क्योंकि मंत्र हमारे जो वेद मंत्र हैं ये सब परमात्मा की स्तुति के, प्रार्थना ही ज्यादातर वेदों का मुख्य अंग रही है और मंत्रों का प्रमुख अंग प्रार्थना ही रही है, स्तुति ही रही है
1: जी। यानी हम आम भाषा में समझ सकते हैं कि पुरुष सूक्तम जो है वो विष्णु जी की आराधना का एक माध्यम है, श्री सूक्तम लक्ष्मी जी की
0: जी,
1: और श्री रुद्रम जैसा कि नाम से ही प्रकट होता है शिव जी को समर्पित है, और दुर्गा सूक्तम ये हम देवी की आराधना
0: जी का स्वरूप है
1: जी। बहुत अच्छे से आपने हमें बताया। मैं श्रीनिवास सर आपसे ये जानना चाहूंगी, अब हम अक्सर सुनते हैं वसुधैव कुटुंबकम, और ये कहा जाता है कि भारतीय ज्ञान पद्धति भी और हमारी जो प्राचीन संस्कृति है वो भी विश्व को हमेशा ही अपनी ओर आकर्षित करती रही है, और हम वैश्विक जो पद्धतियां हैं उन्हें समाहित भी करते रहे हैं अपनी संस्कृतियों में, और कुछ ना कुछ ऐसा है कि दुनिया हमें आश्चर्य से भी देखती है लेकिन प्रशंसा से भी देखती है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भारतीय संस्कृति में ऐसा कौन सा वैश्विक आकर्षण है कि भाषा, भौगोलिक दूरी और सांस्कृतिक भिन्नताओं की सीमाओं को भी सहजता से पार कर जाता है। क्यों दुनिया हमारी प्राचीन संस्कृति को इतना मानती है कि हमारी भाषा जो है वो आज विदेशों में पढ़ाई जा रही है, बहुत सारे देश हैं संस्कृत वहां पर एक विषय है, वहां के बच्चे पढ़ते हैं, और हमारी संस्कृति के बहुत सारे हिस्से, हमारे जीवन यापन के दिनचर्या की बहुत सारी जो पद्धतियां हैं वो भी उनके जीवन यापन का हिस्सा है।
2: नीलम जी, एक बहुत गहरा प्रश्न है ये
1: जी।
2: इसमें जैसे आपने कहा भारतीय संस्कृति और सभ्यता एक आकर्षण का केंद्र रहा है, दुनिया में भारत की सभ्यता का विशेषता क्या है, वो यह है कि प्रकृति के साथ हमारा जीवन है, प्रकृति से दूर नहीं है हम, प्रकृति से विरुद्ध नहीं भी नहीं गए। दूसरी बात, विश्व कल्याण के लिए सोचा गया है, भाव शुद्धि भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा अंग रहा है, विश्व कल्याण प्रार्थना के साथ विश्व शांति के लिए। देखिए आज भी भारत किसी देश के विरोध में कभी भी आक्रमण नहीं किया है
1: जी,
2: यह इतिहास का भाग रहा है, इतिहास में भारत के ऊपर आक्रमण हुआ है लेकिन भारत ने किसी देश के विरुद्ध में आक्रमण नहीं किया है। हमने हमेशा ये सोचा है कि पूरे वसुधैव भी हमारा कुटुंब है, परिवार में हम आक्रमण नहीं करते हैं, परिवार के प्रति हम एक बंधुत्व भाव रखते हैं, इस स्नेह भाव से हमने जिया है, प्रकृति के साथ जिया है, पूरे विश्व के सभी के साथ सोदर भाव से जिया है, मित्रता के साथ जिया है, और सभी के अच्छाइयों को हमने स्वागत किया है, आनो भद्रा कृतवन्तु विश्वतः, दुनिया के सभी जगह से सभी दिशाओं से हम अच्छे विचारों को आचारों को स्वागत किया है, हमने हमेशा सीखा है
1: जी।
2: इसलिए दुनिया हमसे अपेक्षा करती है कि हमारे जीवन पद्धति को दुनिया ने भारतीय सभ्यता को एक आदर्श मानकर अपने आप ये विश्व गुरुत्व दिया है। मुझे लगता है कि यही विशेषताएं हैं, भारत की सभ्यता का विशेषताएं हैं।

0: हमारी संस्कृति अलग नहीं है, हमारे जीवन से अलग नहीं है, हमारा जीवन ही एक सांस्कृतिक जीवन है।
1: जी
0: संस्कृति यानी प्रकृति से दूर जब होता है तो संस्कृति नहीं होती है, वो विकृति हो जाती है। आज भी भारतीय जीवन पद्धति यदि देखेंगे वो प्रकृति के साथ जुड़ा है। हमने भी कई देशों से, कई विदेशों से आचरण व्यवहार को लिया है, लेकिन आज भी हमारा 3000 साल के बाद भी हमारी सभ्यता का जो अनेक विशुद्ध आचरण बचते हैं, इसका
1: जी
0: कारण है हमने उससे बहुत दूर नहीं गए। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी कारण है, कभी
1: जी
0: भी हम रिजिड नहीं रहे हैं। हम किसी मत पर, हमारा मत नहीं है, हम एक जीवन का धर्म लिया है। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि संस्कृति का और एक भाग है संस्कृत। हमने ये भी माना है कि हमारी भाषा के द्वारा हम संस्कृति हमने रिटेन किया है।
1: जी
0: भाषा लुप्त, देखिए आज हमारी इतनी भाषाएं हैं लेकिन भारत एक रहा है। यूरोप में भाषाएं बदली हैं, संस्कृतियां बदली हैं, देश भी बदले हैं, लेकिन भारत में इतनी भाषाओं के बावजूद, इतने आचरण के बावजूद, इतने मतों के बावजूद भारत एक रहा है। कारण, क्योंकि यहाँ एक संस्कृति और एक विशुद्ध विचार जो विश्व
1: जी
0: कल्याण के हो, विश्व शांति के हो, तो यही बहुत बड़ी भूमिका निभाती है।
1: जी और हम बहुत ही गर्व के साथ ये बात कहते हैं कि हमारी ये संस्कृति है जो सबसे पहले विश्व शांति की कामना करती है, और हम वो संस्कृति हैं जहां हमारे श्लोक जो हैं, हमारे वेद पुराण हमें वनस्पति और पूर्ण ब्रह्मांड की शांति की कामना करना भी सिखाते हैं। हमारी प्रार्थनाओं में ये शामिल है। तो बहुत अच्छे से आपने कहा कि हमारी जो संस्कृति है ये इसीलिए आकर्षक है क्योंकि इसमें सहज प्रवाह है और साथ ही विश्व शांति, विश्व कल्याण की कामना है। जी तो प्रेम शंकर जी, यहां मैं आपकी पसंद का एक गाना श्रोताओं को सुनवाना चाहती हूँ।
2: है प्रीत जहाँ की रीत सदा,
1: जी
2: मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ये भारत का संदेश देने के लिए मनोज कुमार ने बड़ी अच्छी तरह से प्रस्तुत किया है और बड़ा ही प्रेरक वो बन पड़ता है, और विदेश में ये गाना हुआ है।
1: इस वजह से आप सुनवाना चाहते हैं।
2: हाँ
1: जी बहुत ही अच्छा सा गाना है, हम सभी सुनते हैं।

0: गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम अपनी प्राचीन शिक्षा पद्धति को जान रहे हैं, आधुनिकता क्या है उसे समझ रहे हैं और हमारे युवाओं को आज किस प्रकार के मार्गदर्शन की जरूरत है ये भी हम अपने विशेषज्ञों के माध्यम से आज जान रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर सुनील जोशी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन जो रहा और मन की बात का जो हिस्सा हमने सुना उसमें एक शब्द आया, ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। मैं चाहूंगी कि आप इसके बारे में हमें विस्तार से बताएं।
1: जी निश्चित रूप से नीलम जी, प्रधानमंत्री जी ने जो ब्रह्म कमल डोमिनिकाना के विषय में बात की है वह स्पेनिश बोलने वाले लोगों का एक समूह है जो कि रिपब्लिकन डोमिनिकाना में है और विशेष रूप से ये स्पेनिश बोलते हैं और ये भारतीय संस्कृति से इतने अधिक अभिभूत हैं और इतने अधिक इन्होंने श्रद्धा दिखाई है भारतीय संस्कृति के प्रति जो कि हम सभी के लिए अत्यंत प्रसन्नता और गौरव का विषय है। और देखिए इसी कारण से भारतीय आध्यात्मिक परंपरा जो है वो आज भी हमें जीवंत दिखाई देती है विदेशों में। और इस प्रकार जब एक ये छोटा सा दल जो कि ब्रह्म कमल डोमिनिकाना के नाम से है तो उन्होंने हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो संपूर्ण मानवता की जो साझा विरासत है, उसको बहुत सुंदर प्रकार से पूरे विश्व में प्रख्यापित करने का एक महनीय कार्य किया है। और इनके संदर्भ में एक विशेष बात यह है कि ये जो हमारी प्राचीन शास्त्र हैं उन शास्त्रों का ये जो है अनुसरण करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं और शुद्ध मंत्रोच्चारण करते हैं और मंत्र भी वैदिक मंत्रों का ये पाठ करते हैं और विशेष रूप से दुर्गा सूक्तम और देवी महात्म्य जैसे देवी स्तुति परक मंत्रों का ये पाठ करते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारत से दूर जो देश हैं जहां पर भारतीय संस्कृति बहुत देर में गई लेकिन यहाँ के लोगों ने

0: अत्यंत ही भारत के प्रति सम्मान रखते हुए और भारत की सांस्कृतिक धरोहर को साझा विरासत के रूप में मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का जो उन्होंने एक परिचय दिया है, निश्चित रूप से वो सीमाओं से परे जाकर भी भारत को विश्व में जोड़ने की जो एक अद्भुत क्षमता दिखाई है, उसके लिए ये बहुत साधुवाद के पात्र हैं। और
1: जी
0: मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि ये वस्तुतः भारतीय जो कथाएं हैं, जो कि मंत्रात्मक हैं, जो कि पौराणिक हैं, उनको मात्र ऐतिहासिक या पौराणिक संदर्भ में नहीं देखते हैं, बल्कि वो इसको एक जीवंत भारतीय दर्शन के रूप में अपनाते हैं। जैसे कि दुर्गा सूक्तम, जो कि हम जानते हैं कि बहुत ही प्रसिद्ध है और मार्कंडेय पुराण का एक अंग है और तैत्तिरीय आरण्यक में भी यह प्राप्त होता है, वहां पर विशेष रूप से ये बात उपस्थित होती है कि ये जो वास्तविक जो शत्रु हैं वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और हिंसा हैं। ये अज्ञानात्मक, नकारात्मक जो प्रवृत्तियां हैं, इन्हीं को ही हमें इन सूक्तों के माध्यम से जो है समाप्त करना है और अपनी बाह्य जो है जगत में
1: जी
0: अपनी आंतरिक चेतना को प्रबल बनाना है और इन शत्रुओं पर जो है हमें विजय प्राप्त करते हुए देवी की स्तुति के माध्यम से विवेक है, साहस है, करुणा है, आत्मबल है, धर्म की स्थापना करनी है। और इसी कारण से हम देखिए पूरे विश्व में ये कहने के लिए तत्पर होते हैं कि भारत जो है वो विश्व गुरु है, आध्यात्मिक संदेश देने वाला
1: जी
0: एक देश है और शक्ति की उपासना करने वाला एक देश है। तो प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो समय समय पर इस प्रकार के देश दुनिया में हो रहे भारतीय संस्कृति के प्रति कार्यों से हम सभी को अवगत कराते हैं।
1: जी
0: और निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति में जो देव उपासना है, देवी उपासना है, प्रकृति उपासना है, उसका परिचय हम सभी को विश्व भर में मिलता है।
1: जी और अगर हम देखें तो हमारी दिनचर्या का हिस्सा वो रहा है, हमने घर परिवार में इस तरह की चीजें देखी हैं, ऐसी परंपराएं देखी हैं। हमारे पर्वों पर हम वृक्ष पूजन करते हैं,
0: जी
1: हमारे किसी ना किसी त्योहार से एक वृक्ष जुड़ा है,
0: जी
1: कभी वहां हमें दिया जलाना है, कभी जल अर्पित करना है, और प्राकृतिक उपादान जो हैं, चंद्र की पूजा हो रही है, सूर्य देव की पूजा हो रही है, तो शायद ये भी हमें प्रकृति के प्रति आभारी बनाए रखने, कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। और इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, जिसे हम आधुनिकता कहते हैं, इसमें हम ये चीजें कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद है कि वो हमें बार बार प्रेरित करते हैं कि हम ये परंपराएं जो हैं वो अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखें। मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, हम जब जिक्र करते हैं आधुनिकता का और हमारे युवाओं के पास अगर हम देखें, तो एक सर ने कहा कि ब्रह्म राक्षस है हमारे पास में, कि बहुत सारी तकनीक है और ग्लोबल सिटीजन अब हम अपने आप को कहते हैं, हमारे पास तकनीक के माध्यम से सूचनाएं बहुत जल्दी पहुंचती हैं और बहुत सारे विकल्प भी हैं आगे बढ़ने के। ऐसे में आपको क्या लगता है कि हमारे युवा कैसे, हम उन्हें अपनी परंपराओं से जोड़े रख सकते हैं, कैसे हम उन्हें आधुनिक शिक्षा पद्धति की जानकारी तो दें, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे विदेशों में भी जाकर पढ़ाई करें, वहां नौकरियां भी करें, हम चाहते हैं कि वो हमारी जीडीपी में एक अच्छी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, वो हमें फॉरेन करेंसी भी जो है वो देश में भेजें, लेकिन इन सब के साथ कैसे हम अपने बच्चों को अपने पर्वों का महत्व समझाएं, अपनी सनातन संस्कृति जो है उसकी वैज्ञानिकता हम समझाएं। आप संस्कृत के विद्वान हैं लेकिन विज्ञान के आप स्टूडेंट रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी।
2: नीलम जी, बहुत अच्छा आपने इसके बारे में प्रश्न किया है। इसका मूल कारण ये है कि हमारे युवाओं को, आजकल के विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा से अवश्य जोड़ना होगा, क्योंकि ज्ञान का जो सर्वोत्तम पक्ष है वो संस्कृत में मौजूद है। संस्कृत ही हमारे जीवन को उस ब्रह्म तक पहुंचाने का एक साधन बनाती है। जैसे कि ईशावास्य उपनिषद में कहा गया है कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा माग्रधः कश्चित् ब्रह्म। इस भारत देश के उपनिषदकार ने ही ये सबसे पहले कहा कि दूसरे की चीज को देख करके लालच मत करो, तो दूसरे की प्रगति को देख करके लालच मत करो, है ना। और ये भी तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा, यानी जो हमारे पास जो बैठा हुआ है उसका भी ध्यान रखो कि उसके लिए भी त्याग के साथ साथ आप भोग करो, मतलब त्याग भी करो। तो त्याग हमारे संस्कृति में बहुत, त्याग का बहुत महत्व रहा है, त्याग और तपस्या का। अगर इन चीजों से जुड़ना है तो संस्कृत को अपनाना होगा, क्योंकि ये सारे अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ये
1: जी
2: तो संस्कृति सिखाती है और कोई भाषा तो ये सिखाती नहीं है। तो अगर इसीलिए विश्व भी आज संस्कृत की शरण में जा रहा है, योग की शरण में जाता है, योग योग क्या है, ये एक

0: दर्शन है,
1: जी
0: षड दर्शनों में से एक दर्शन है। तो हमारे ये दर्शन क्या है, ये छह दर्शन जो है ये सूक्त रूप में ज्ञान का एक माध्यम है।
1: जी
0: सूत्र दिए हुए हैं, सूक्त दिए हुए हैं, उनके माध्यम से योग दर्शन में कैसे हम ब्रह्म को प्राप्त करें वो पूरा साधन दिया हुआ है। तो ज्ञान को प्राप्त करने का, ज्ञान का सदुपयोग करने का, ये हमारा संस्कृत सिखाती है, हमारी भाषा सिखाती है, हमारा साहित्य सिखाता है। तो इससे संस्कृत से हम जुड़े रहेंगे। और संस्कृत में एक खूबी बहुत बड़ी है
1: जी
0: कि ये संसार की ऐसी भाषा है संस्कृत जो कि सबसे अधिक वैज्ञानिक है, सबसे शुद्ध और उत्कृष्ट इसका व्याकरण है
1: जी
0: और सर्वोत्तम इसकी लिपि है। और जो आप लिख रहे हैं वही आप पढ़ते हैं, उच्चारण भी बिल्कुल वही है, जैसे कोई भी एक नुक्ता भी इसमें व्यर्थ का नहीं होता है।
1: जी
0: अगर उसे हटा देंगे तो अर्थ बदल जाएगा। तो ये वास्तव में पूरी तरह से वैज्ञानिक और ईश्वर प्रदत्त कहना चाहिए ये भाषा है संस्कृत।
1: जी
0: तो संस्कृत से अगर हम जुड़े रहेंगे तो हमारे भविष्य देश का और संसार का भी, संसार को भी जोड़ना पड़ेगा, संसार भी जुड़ रहा है, क्योंकि वो ज्ञान जो मानवता का जो ज्ञान है
1: जी
0: वो पशुत्व से ऊपर उठने का ज्ञान है, जिसमें मानव बन सके और देव बन सके,
1: जी
0: तो बिना संस्कृत के वो संभव नहीं है,
1: जी
0: क्योंकि वो हमारे उपनिषदों में और वेद मंत्रों में भी व्याख्यात है। और कहीं किसी पुस्तक को आप ढूंढ लीजिए, कहीं वो चीज आपको नहीं मिलेगी।
1: जी यानी संस्कृत केवल एक भाषा नहीं है, चरित्र निर्माण का एक माध्यम है और सांस्कृतिक जागरण जो है उसका एक सूत्र हम कह सकते हैं। जी प्रोफेसर श्रीनिवास, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी, हम जब सांस्कृतिक जागरण की बात कर रहे हैं और हमारे सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य है 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का, जिसमें हर नागरिक को एक भूमिका निभानी है, ऐसे में हमारे विश्वविद्यालय शिक्षा पद्धति के रूप में क्या भूमिका निभा सकते हैं, वो कैसे सहयोग कर सकते हैं इसमें?
2: देखिए नीलम जी, विकसित भारत का निर्माण केवल एक अंग के विकास से नहीं होगा।
1: जी
2: उसमें बौद्धिक विकास भी है, उसमें आर्थिक विकास भी है, उसमें व्यक्तित्व विकसन भी है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें अभी आज की शिक्षा एक एकांग या एक मुखी विकास का बात करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो विकसित भारत की बात कर रहे हैं
1: जी
2: वो संपूर्ण विकसित भारत का है। उसमें केवल शिक्षा से एक जॉब, जॉब से अर्थ, अर्थ से जीवन, ये नहीं है।
1: जी
2: सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः। हमने एक मिसिंग पॉइंट आज के शिक्षा में हुई है, सुख का मूल क्या है, लोगों से पूछेंगे तो बताएंगे अर्थ है, मनी है, मनी के मूल क्या है, जॉब है, जॉब के लिए क्या करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एग्जाम के क्या करना है, तैयारी करनी है।
1: जी
2: तो हमारी शिक्षा क्या हो गई है, जॉब के लिए तैयारी करनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के द्वारा जॉब करना है, जॉब से अर्थ मिलेगा, अर्थ से सुख मिलेगा, यहाँ बहुत सारे मिसिंग लिंक्स है। उसमें महत्वपूर्ण यह है कि कौटिल्य यह कहता है कि सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः।
1: जी
2: सुख का मूल धर्म है, समाज में धर्म जब रहेगा तभी सुख मिलता है, सबके लिए सुख मिलेगा, स्वार्थ नहीं है,
1: जी
2: सबके लिए सुख। उसके बाद धर्म का मूल अर्थ है, अर्थ चाहिए, लेकिन केवल अर्थ से सुख नहीं मिलेगा, धर्म के द्वारा ही मिलेगा।
1: जी
2: तो आज दुनिया में मिसिंग लिंक को भारत को सिखाना है। इसका मतलब है विकसित भारत केवल अर्थ से विकसित भारत नहीं होगा, संसाधनों से विकसित भारत नहीं होगा, आध्यात्मिक समृद्ध और संपूर्ण भारत आत्मनिर्भर जब होगा तभी विकसित भारत होगा। तो इसमें आत्मनिर्भरता भी है, समृद्धि भी है और आध्यात्मिकता भी है।
1: जी
2: तो हमारी शिक्षा व्यवस्था में इस तीनों का समावेश होना चाहिए। हम केवल ज्ञान की बात करते हैं और सीधा अर्थ से व्यवस्था से जुड़ते हैं, नहीं, आज हमें आध्यात्मिकता को, हमारी भारतीय विरासत, भारतीय परंपरा के द्वारा आत्मनिर्भरता को भी सिखाना है।
1: जी
2: तो विश्वविद्यालयों का ये दायित्व है, तंत्र ज्ञान मात्र नहीं, साइंस मात्र नहीं, अपितु आध्यात्मिकता और भारतीय विद्या के आधार पर, भारतीय ज्ञान परंपरा के आधारित ज्ञान व्यवस्था, तद्वारा अर्थव्यवस्था।
1: जी
2: तो नॉलेज इकोनॉमी जब बोलते हैं, केवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इकोनॉमी नहीं है वो,
1: जी
2: वो आध्यात्मिकता के साथ, धर्म के साथ और साथ ही हमारे नागरिक दायित्व के साथ, हम जब भारतीय ज्ञान परंपरा को जोड़कर जब आत्मनिर्भर व्यवस्था निर्माण करेंगे तभी विकसित भारत होगा।
1: जी
2: तो ये सारे दायित्व शिक्षा पर है। शिक्षा यानी शिक्षा संस्थान, शिक्षा संस्थान यानी शिक्षक,
1: जी
2: चाहे वो प्राथमिक शिक्षक हो, चाहे वो उच्च शिक्षा का शिक्षक हो, संशोधक हो, सबका दायित्व शिक्षक पर है, शिक्षा संस्थानों पर है। हमारा दायित्व निभाने के लिए आज के नई भारत के, विकसित भारत के लिए जो शिक्षा नीति बनाई गई

0: है, उसको सम्यक रूप से समीचीन व्यवस्था के साथ हम यदि उसका अनुष्ठान करेंगे तब विकसित भारत की ओर बढ़ेंगे। इसमें
1: जी
0: टेक्नोलॉजी भी होगा, भारतीय ज्ञान परंपरा भी होगी।
1: जी यानी सब कुछ साथ लेकर हमें बढ़ना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो वो किसी एक क्षेत्र या एक अंग का विकास नहीं है, वो सर्वांगीण विकास है देश का। और इसमें हमारी शिक्षा पद्धति बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, और साथ ही हमारे युवा भी, हमारे छात्र भी। और प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा है कि विदेशों में जो भारतीय बसते हैं वो भी, और जिन विदेशियों के हृदय में भारत बसता है वो भी
0: बिल्कुल
1: भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आज पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में हमने बात की नालंदा विश्वविद्यालय की एक बहुत अच्छी पहल की, और साथ ही आधुनिक शिक्षा पद्धति में हो रहे बदलावों की, आधुनिक चुनौतियों की, लेकिन उनके साथ ही समाधानों की भी हमने बात की। इस कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ थे, जिनके माध्यम से हमने विषयों को और गहराई से समझा है। प्रोफेसर श्रीनिवास वारखेड़ी, आप माननीय कुलपति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली से, सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए, इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए।
0: धन्यवाद।
1: हमारे साथ इस कार्यक्रम में श्री प्रेम शंकर शर्मा रहे, जाने माने संस्कृत विद्वान, आप साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता, पूर्व में पीसीएस अधिकारी, अपर जिला अधिकारी के रूप में आप इलाहाबाद से सेवानिवृत्त हुए, और आज इस कार्यक्रम में आपने हमसे साझा की संस्कृत भाषा की विशेषताएं, साथ ही ये भी कि किस प्रकार से हम अपने युवाओं को इनसे जोड़कर रखेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में
0: बहुत
1: शामिल होने के
0: धन्यवाद
1: लिए।
0: नीलम जी, शुक्रिया।
1: हमारे साथ इस कार्यक्रम में रहे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील जोशी, आप सहायक आचार्य संस्कृत विभाग हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से। सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: आपका भी हृदय से धन्यवाद।
1: आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए और ये कहते हुए कि हम हमेशा याद रखें संस्कृत केवल भाषा नहीं, चरित्र निर्माण का एक माध्यम है, अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति को आगे ले जाने का एक सूत्र है, ये हम याद रखें। मैं नीलम मलकानिया, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान के साथ और संयोजक श्री प्रमोद कुमार वत्स के साथ अब आप सभी से अनुमति लेती हूँ। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
4: आप सुन रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो FM रेनबो 101.9 रेनबो के साथ लाइव रंगीन। अभी तक आपने सुना पोस्ट बॉक्स नंबर 111। कुछ ही देर में आप सुनेंगे न्यूज। न्यूज के बाद 12:10 को मैं नमस्ते हेलो आदाब लेकर फिर हाजिर हो जाऊंगी।

आपके साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक आज संसद परिसर में शुरू हो गई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद हैं। बैठक शुरू होने के फौरन बाद विपक्षी दलों ने विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रमुक, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI संसद की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। इस बैठक के माध्यम से सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा कर रही है। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मॉल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुई। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मॉल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की यह मॉल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मॉल्दोवा की राष्ट्रपति

0: सैंडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। वे मोल्दोवा की संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मुलाकात करेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। वे भारत मोल्दोवा व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसिडोनिया जाएंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये उत्तरी मैसिडोनिया की भी पहली यात्रा रहेगी। इस दौरान वे मैसिडोनिया के राष्ट्रपति सिल्यानोस का दाउकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे वहां के प्रधानमंत्री और संसद के अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगी तथा उत्तरी मैसिडोनिया की असेंबली को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति भारत उत्तरी मैसिडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश की किसी भारतीय राष्ट्रपति की 3 दशक से अधिक समय बाद ये पहली यात्रा होगी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और जल भराव हो सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज वर्षा के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। श्री शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता करेगी। उधर जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी की यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में भी लगातार मूसलाधार बारिश जारी है।
1: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात से बारिश जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन व सिरमौर में येलो अलर्ट, जबकि अन्य 3 जिलों कांगड़ा, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा विभाग ने कल 20 जुलाई को चंबा, सिरमौर, मंडी और कांगड़ा जिलों में और 21 जुलाई को चंबा, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
0: और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: FM Rainbow 101.9
1: आप सुन रहे हैं द स्टेशन ऑफ द नेशन ऑल इंडिया रेडियो FM Rainbow 101.9 रेनबो के साथ लाइफ रंगीन। तो नमस्ते, हेलो, आदाब करते हुए आप सभी का तहे दिल से वापस स्वागत करती हूं मैं आपकी आरजे दीपा राज। तो ज्यादा वक्त ना गवाते हुए लीजिए सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल के मधुर आवाज में ये पहला गाना फ्रॉम द मूवी तानाजी।

0: अरिजीत सिंह के आवाज में हाँ मैं गलत फ्रॉम द फेमस मूवी। आप बताइए कौन सा मूवी, सोचते रहिएगा। कार्तिक आर्यन है उसमें और सारा अली खान है। इट्स अ सेकेंड वर्जन। हाँ, कार्तिक आर्यन के बारे में बात करूँ तो अभी यू नो ही इज एन्जॉइंग द प्रेजेंट मोमेंट दैट ही इज वन नेशनल अवार्ड फॉर चंदू चैम्पियन। तो सोचा क्या कौन सा मूवी से है, नहीं याद नहीं है, तो मेरे साथ यूं ही जुड़े रहिएगा। थोड़ी देर में बताऊंगी जरूर कौन से मूवी से था। फिलहाल टाइम छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद ये गानों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: Where there's water, there's life. Come, let us adopt rain water harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct bore wells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.
3: ईरानी चाय,
4: बन मस्का,
3: हैदराबादी बिरयानी,
4: टंगड़ी कबाब,
3: कुर्बानी का मीठा,
4: शहदूद मलाई।
3: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
4: एंड एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड।
3: एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई जश्न ए हैदराबाद इज योर आफ्टरनून ट्रीट
4: फ्रॉम 2 to 3 PM एवरी डे ऑन FM रेनबो 101.9।
3: इट्स नॉट जस्ट फूड,
4: इट्स कल्चर, हिस्ट्री एंड फ्लेवर रोल्ड इनटू वन।
3: जश्न ए हैदराबाद।

आप सुन रहे हैं द स्टेशन ऑफ द नेशन ऑल इंडिया रेडियो एफएम रेनबो 101.9 रेनबो के साथ लाइफ रंगीन। स्टूडियो क्लॉक में टाइम हो चुका है 12:32:09। उम्मीद कर रही हूँ कि ये म्यूजिकल सफर मेरे साथ आप सब जरूर एंजॉय कर रहे हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप सभी को बहुत ही मेलोडियस और फुट टैपिंग नंबर्स लेके आऊँ, बट फिर भी अगर आपको कुछ लगे तो मेरे साथ आप फ़ोन करके बोल सकते हैं। उसके लिए बस आपको और थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, बिकॉज़ हमारा अगला सेगमेंट जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार होता है,

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt rain water harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct bore wells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.

की शुरुआत में भी इस बात की जिक्र की थी कि जीवन को भरपूर जीना चाहिए, यू नो, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। तो उस बात पर नहीं है आज का टॉपिक, लेकिन मैंने जो एक बात बीच में बोली भूलने पर, उस बात पर है आज का हमारा अगला सेगमेंट हेलो रेनबो का टॉपिक जुड़ा हुआ। जी हाँ दोस्तों, बस कुछ ही क्षण में 1 बजने वाला है और हमारा अगला सेगमेंट हेलो रेनबो भी शुरू होगा। और आप सब तो जानते ही हैं कि हेलो रेनबो में मैं और आप मिलकर किसी एक टॉपिक पर अपने अपने राय देते हैं, अपने अपने विचार देते हैं। तो आज का टॉपिक यही है आप लोगों के लिए कि कौन सी ऐसी चीज है जो आमतौर पर लोग अक्सर भूल जाते हैं। ये एक चीज भी हो सकती है या फिर कोई एक आदत, यू नो, जैसे किसी के बर्थडेज, किसी के एनिवर्सरीज, या मोस्टली अगर बच्चों को होमवर्क दे तो होमवर्क भूल जाते हैं, प्रोजेक्ट वर्क्स दो तो वो भूल जाते हैं, है ना। कई बार अगर चीज़ों की बातें हो तो फ़ोन भूल जाते हैं, हालांकि दिन भर उसी में लगे रहते हैं, गाड़ियों की चाबी भूल जाते हैं, पता नहीं ऐसे ऐसे कौन से सारे चीज़ें होती हैं। मतलब मैंने तो आम तौर पर जो बहुत ही कॉमनली लोग भूलते हैं उसके बारे में आप सबसे जिक्र किया। देखती हूँ अगर कोई और भी वियर्ड सा, या खाना पकाते हुए कभी कभी मैंने सुना है आंटी लोगों को ये बोलते हैं कि मैंने नमक डालना भूल गई, यू नो, या दो बार भूल कर दो बार नमक डाल दिया। तो ये भूलने पर बहुत अजीब अजीब और यू नो हंसने वाले लाइट मोमेंट्स होते हैं। तो देखते हैं, ऐसा भी हुआ है ना कभी कभी हम जब घर लॉक करते हैं तो किसी एक इंसान को ही अंदर लॉक करते भूल जाते हैं, कभी कभी ट्रैवल करते हुए टिकट लेना भूल जाते हैं। सो ऐसे बहुत सारे किस्से होते। तो आपके साथ ऐसा कोई एक वाक्या जो आपने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, या फिर आप जनरली भी जो आपको लगता है कि आमतौर पर लोग भूलते हैं, उसके बारे में आज का टॉपिक है। आपको मुझे बस फ़ोन कर ये बताना है कि आमतौर पर लोग कौन सी चीज़, अगर आप चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो वो भूलते हैं, या कौन से वाक्या भुला सकते हैं, राइट। तो फ़ोन करने के लिए नंबर्स हैं 0402323000, एक और नंबर 0402323482111, वन मोर 0402970475। सो व्हाइल आई वेट फॉर ऑल योर कॉल्स, हियर्स वन ब्यूटिफुल सॉन्ग फॉर ऑल ऑफ यू।

0: लगता है, देन दे रियलाइज ओके आई फॉरगॉट माई ग्लासेस।
1: वैसे है माँ, वैसे
0: चलिए सर, थैंक यू
1: थैंक
0: सर, बहुत मजेदार किस्सा
1: यू
0: सुनाया।
1: मेरी बात।
0: हेलो हेलो,
1: हेलो, गुड आफ्टरनून दीपा जी। सभी
0: वेरी गुड आफ्टरनून सर, अपना परिचय
1: सभी
0: दीजिएगा।
1: श्रोताओं को नमस्कार। शेर खान साहब को प्यार भरा सलाम, दुआओं के साथ सलाम।
0: जी
1: हम जो एक बार जो है 500 किलोमीटर दूर से आ रहे थे, हमारा टिकट था 11 तारीख का।
0: अच्छा
1: तो हम क्या करें, वो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है 12 तारीख,
0: हाँ
1: और जाके ट्रेन में बैठ गए।
0: ओ
1: ट्रेन में बैठे तो सामने वाले कोई साहब थे, तो
0: जी
1: उन्होंने अपना टिकट देख ले रहे थे, चक्कर ले रहे थे।
0: कि आप आके बैठे हो, फिर उनको भी वही टिकट है शायद।
1: नहीं, हमारे सीट पे वो साहब जिसकी सीट थी, उन्होंने नहीं आया अभी, उन्हें आने का था, अभी टाइम बहुत
0: अच्छा
1: था ट्रेन
0: अच्छा
1: को।
0: अच्छा
1: टिकट चेक करे तो हम भी टिकट चेक कर लिए। जब
0: ओके
1: हमको मालूम हुआ हमारा 11 का टिकट है, हम 12 को आते बैठे। दो जनों का रिजर्वेशन चले गया, और फिर ट्रेन का टाइम बहुत था, तो हमारा लड़का जो है जाके बाहर से जनरल टिकट लाया, लाके फिर हमको जनरल डब्बे में बैठना पड़ा।
0: अरे बाप रे, मैं हमारे साथ भी एक बार ऐसा हुआ सर। हम क्या किए, शाम का टिकट
1: जी
0: मूवी का बुक किए, और नहीं या शाम का टिकट के लिए बुक कर रहे थे, लेकिन गलती से उसमें दोपहर का आफ्टरनून का हो गया था, वो चेक नहीं किया। हम जाके हमारे
1: हाँ
0: सीट में बैठ गए, हम लोग 5 लोग थे, हम और 5 लोग आके हमसे पूछे ये हमारा सीट है, वो भी नंबर दिखा रहे, मैं भी नंबर दिखा रही, मूवी भी सेम सब सेम। बाद में टाइम चेक किया, वो भी परेशान हम भी परेशान कि एक सीट तो नहीं दे सकते। फिर बाद में टाइम देखा तो हमारा दोपहर का था, उनका शाम का था, तो होता है कभी कभी ऐसे। एनीवेज थैंक यू सर।
1: ट्रेन में हुआ मेरे को ऐसा।
0: जी हम लोग को मूवी में हुआ।
1: शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।
0: धन्यवाद धन्यवाद। सो देखिए, ऐसे भूलने के किस्से सिर्फ हम एक के साथ नहीं, मैं तो सोच रही थी कि सिर्फ मेरे साथ होता है, बट आमतौर पर सभी कुछ ना कुछ जरूर भूलते हैं। बट कभी कभी ऐसे ये सब भूलने वाली चीजें याद करने से हमें एक अलग ही तरह से खुशी भी मिल जाती है, क्या बोलते हैं आप लोग? तो फिलहाल मुझे एक मैसेज आया है अश्विन जी फ्रॉम कोठी खुशहाल मार्केट, वो लिखते हैं एक दूसरे पर तीन उपकार जरूर करें, एक दूसरे पर तीन उपकार जरूर करें, रुक ये एक वर्ड ठीक से दिखाई नहीं दिया। एक दूसरे पर तीन उपकार जरूर करें, नफा नहीं दे सकते तो नुकसान ना करें, खुश नहीं कर सकते तो दुखी ना करें, तारीफ नहीं कर सकते तो निंदा ना करें। अरे वाह, थैंक यू सो मच अश्विन जी, बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। और अश्विन जी आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने मेरे स्कूल में एक बार ये पढ़ा था और मेरे टीचर ने मुझे ये बताया था कि इफ़ यू कैन नॉट बी द रीज़न फॉर समबडीज स्माइल, यू शुड डेफिनेटली नॉट बी द रीज़न फॉर समबडीज टीयर्स। तो वो बात याद दिला दी आज आपने मुझे ये वाला मैसेज भेजकर, थैंक यू सो मच अश्विन जी। तो अश्विन जी का ये बहुत ही प्यारा सा मैसेज है, और इस मैसेज को याद करते हुए एक अच्छा सा गाना आप सभी के लिए।

0: బేగంపేట గయ మేడం. బేగంపేట గయతో 9 బజ దగ్గర అయ్యాక 2 గంట చేర్చే అరగతే మేడం. గౌతమి ఎక్స్ప్రెస్ పర్సు 30 తారీఖు అంటే బొంబాయి జాతి మేడం. కాకినాడ పోర్ట్సే లింగంపల్లి లేకే లింగంపల్లిసే బొంబాయి జాకే బొంబాయి శాత మేడం. ఉదర్ బారిష గతి మేడం. ఇసులే 2 గంట దేర్చే చల్ర బోల్కే
1: तो आपके लिए अच्छा हुआ ना, भूल गए तो भी
0: अच्छा बच के ये बोल के बहुत अच्छा हो गया.
1: हाँ तो ये जिंदगी में नहीं भूलेंगे अभी आप.
0: 11 बजे को आए मैडम ट्रेन अच्छे से चला गए मैडम.
1: चलिए चलिए
0: ठीक है.
1: सो व्हाट एंड्स वेल इट्स ऑलवेज गुड राइट सर. थैंक यू. तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. वो भूल गए लेकिन फिर भी उनके साथ अच्छा ही हुआ. सो दैट्स गुड. देखते हैं और कोई कॉलर है. हेलो.
2: हेलो. हाय दीपा जी, कैसे हैं आप?
1: हम बिल्कुल ठीक हैं, आप कैसे हैं?
2: हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है
1: जी. बताइए तो आमतौर पर क्या चीज भूलते हैं
2: हम? ना पापा जब भी पैसे दिए ना ट्रस्ट हाँ. हम भी रख देते और भूल जाते लेकिन वो मिलते नहीं. और जब हम लोग को पैसों की जरूरत रही तब ढूंढे तो मिले तो इतना खुशी होती अपने पैसे ही अपने को मिलने.
1: जी जी जी जी.
2: जब वक्त के टाइम पे नहीं मिलते
1: हाँ.
2: लेकिन बाद में मिल जाते.
1: मतलब उससे भी ज्यादा, मतलब वो टाइम पे जरूरत था हाँ. इसलिए कोशिश करके रखे है कि आपको जब ज्यादा जरूरत होती है तब मिलने के लिए वो आप भूल जाते हो पहले. जी जी बताइए.
2: भूलना भी एक खुदा की नेमत है. भूलना भी एक खुदा की नेमत है वरना कुछ यादें पागल कर देते हैं.
1: अरे वाह बहुत ही गहरा था वो. चलिए थैंक यू मैम.
2: सबको सलाम गर्ल्स के लिए. हाय
1: जी जी.
2: बाय अल्लाह हाफिज.
1: अल्लाह हाफिज. तो बहुत ही गहरी वाली लाइन से एंड किया लेकिन बातें तो बहुत यू नो एकदम ऑन डॉट स्पॉट किया था. चलिए एक और अच्छा सा गाना.

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt rain water harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct bore wells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.

0: द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt rain water harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct bore wells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.
2: FM Rainbow 101.9.

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt rain water harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct bore wells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, 101.9 FM मेगाहर्ट्ज़ पर। इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में रात के 9:30 और 18 सेकेंड्स हो रहे हैं और अब पेश है उर्दू प्रोग्राम नए रंग।

0: ये आकाशवाणी हैदराबाद है, 101.9 FM मेगाहर्ट्ज़ पर। सामाइन, आप सभी का दिली खैर मकदम है उर्दू की इस बाज़ में, और हम आप सभी का खैर मकदम करते हैं और आप की खिदमत में तस्लीमात। बता दूं कि आज की इस बज़्म को हमने सजाया है हर्फ ताबिंदा से। तहरीरों पेशकश होगी जनाब एम ए हाई साहब की, और भुलाए नहीं भूलते के तहत, और आप पुराने फिल्मी नगमे समाप्त कर सकेंगे और नए रंग की बज़्में आप सुन सकेंगे। पयाम शब पेशकश होगी नदीम अख्तर जैदी की। तो सामिन, बज़्म का आगाज़ करते हैं हर्फ ताबिंदा से, जिसे पेश कर रहे हैं एम ए हाई। आइए सुने।
1: सामईन इकराम, ज़िंदगी का सफ़र नशेब व फराज से इबारत है। इसमें कभी दुश्वारियाँ आ जाती हैं तो कभी आसानियाँ। जो लोग मुस्बित सोच के हामिल होते हैं वो पुर उम्मीद होकर और सब्र तहम्मुल से काम लेते हैं और मंजिल को पा लेते हैं। इसके बरक्स मनफी सोच के हामिल अफराद मायूस होकर बैठ जाते हैं, इसलिए उन्हें मंजिल कभी नहीं मिलती। इस तरह वह परेशान रहकर दूसरों को भी परेशान करते हैं। इसलिए बजा तौर पर कहा जा सकता है कि ज़िंदगी का दारोमदार इंसान की सोच पर मुनहसिर है। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, कौमों की हयात इनके तखय्युल पे है मौकूफ़। यानी ज़िंदगी उलझनों में उलझा हुआ एक सिलसिला है। बेसवी, बेकसी, घुटन, मजबूरी और खौफ व हिरास में ये सभी उसके पड़ाव हैं। यह जुमला काबिल गौर है, यानि कहा जाए कि मैं अकेला हूँ, ये मनफी सोच पर होगा। इसके बरखिलाफ़ ये जुमला अकेला काफ़ी हूँ, इस जुमले में मायूसी और मजबूरी से निकाल कर हमें तवानाई की रोशनी देता है। जिस तरह मायूसी के जज्बे में डूबे, इस जुमले में थोड़ी सी तब्दीली करने से हमने ज़िंदगी के अंधेरे को दूर कर दिया। ठीक वैसे ही हम अपनी ज़िंदगी के अंधेरे को रोशन

0: नहीं दे सकते हैं। ज़िंदगी का सिलसिला सही है तो फिर इसे सुधरने में देर नहीं लगती। दरअसल तीन लफ्ज़ों के इस जुमले में ज़िंदगी का पूरा फ़लसफ़ा है, यानि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, क्योंकि ऐसे लोग अपने गर्दिश के दिनों में सभी अपनों को अच्छी तरह से परख चुके होते हैं। इन्हें सिर्फ अपने आप पर ही भरोसा होता है। बग़ैर किसी के सहारे वो भले ही धीमे कदमों से आगे बढ़ते हैं, मगर अपनी मंजिल पर पहुँच कर ही दम लेते हैं। ये माना ज़िंदगी है चार दिन की, बहुत होते हैं दोस्तों चार दिन भी।
1: वाह बहुत खूब। अभी आप सामिन इकराम समात कर रहे थे हरफ़ ताबिंदा, जिसे पेश कर रहे थे जनाब एम ए हाई। यकीनन जिस पर भरोसा होता है, जो अपने आप पर यकीन रखते हैं, वही अपनी मंजिल को पा लेते हैं। ये आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 FM मेगाहर्ट्ज पर सामिन आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग। और अब बज़्म सजाते हैं भुलाए नहीं भूलते के तहत पुराने फिल्मी नगमों से। बज़्म का आगाज़ मैं किशोर कुमार और आशा भोंसले के इस एवरग्रीन सॉन्ग से, जो रोमांटिक सॉन्ग है, इसको प्ले करके करती हूँ। यकीनन वैसे मौसम है बारिश का, बरसात का, और इस माह में, इस मौसम में तो फिर रातों का हसीन हो जाना शायद लाजमी बन जाता है या हो जाता है।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, 101.9 FM मेगाहर्ट्ज़ पर. समय आपने ट्यून किया है उर्दू प्रोग्राम नायरंग, और इस वक्त स्टूडियो घड़ी में रात के 9:41 और 5 सेकंड हो रहे हैं. अर्ज करती हूँ, क्या हकीकत नाम की है? क्या हकीकत नाम की है, अहमियत बस काम की है. क्या हकीकत नाम की है, अहमियत बस काम की है. सुबह जो तू करके गुजरी, सुबह जो तू करके गुजरी, ये फिक्र अब तो शाम की है. जान जैसी कीमती शय, जान जैसी कीमती शय, मैंने तेरे नाम की है. जान जैसी कीमती शय, मैंने तेरे नाम की है. आ बताऊँ क्या है मंजिल, आ बताऊँ क्या है मंजिल. बात एक दो काम की है, बात एक दो गाम की है. यूं कवि की है कविता, यूं कवि की है कविता, जैसे राधा श्याम की है, जैसे राधा श्याम की है. हाले दिल भी उसके आगे, हाले दिल भी उसके आगे, एक कहानी राम की है. हाले दिल भी उसके आगे, एक कहानी राम की है. घर बना ले जो ना दिल में, घर बना ले जो ना दिल में, शायरी किस काम की है, शायरी किस काम की है. ये गज़ल ये फिक्र ताज़ा, ये गज़ल ये फिक्र ताज़ा, ताहिर खुश नाम की है.

एक नई सुबह, एक नई उम्मीद, एक नई सुबह, एक नई उम्मीद और ज़िंदगी का एक और खूबसूरत दिन, एक नई सुबह, एक नई

उम्मीद और ज़िंदगी का एक खूबसूरत दिन जो हर कोई चाहता है, खुशियाँ भरा और वो तमाम ज़रूरतों को पूरा करने वाला, वो तमाम तकलीफ़ों को दूर करने वाला और मुस्कुराहटें देने वाला, अपनी मुसीबतों से दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देने वाला।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, 101.9 FM MHz पर सामाइन आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग, और बज्म सजी है भुलाए नहीं भूलते के तहत फिल्मी नगमों की। खबर तो है कि जवाज़ी किताब कौन सा है, हमारा जिक्र है जिसमें वो बाप कौन सा है। किसी ने शाख पे इस तरह होंठ रखे हैं, कोई पता नहीं चलता गुलाब कौन सा है। मैं तेरी सिमत कई रास्तों से आया हूँ, मैं तेरी सिमत कई रास्तों से आया हूँ, सो जानता हूँ कि ज़्यादा ख़राब कौन सा है। ये रोज़े वक्त ये मुकर्रर पे खिलने वाली खुलने वाली आँख, ये रोज़े वक्त मुकर्रर पे खुलने वाली आँख लिहाज ही नहीं करती कि ख्वाब कौन सा है।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, 101.9 FM मेगाहर्ट्ज़ पर। सामाइन, आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नायरंग और बज़्म सजी हैं भुलाए नहीं भूलते के तहत फिल्म नामों की। सामाइन, ज़िंदगी में मिलना जुलना आम है और जब मिलते हैं झूलते हैं तो फिर जुदाई भी कभी कभी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाती है, और वो जब तवील हो जाए तो फिर जीना मुश्किल हो जाता है। और अगर आपस में खुलूस हो, मोहब्बत हो, लेकिन डर हो अगर जुदाई का, तो फिर अल्फाज ये निकल पड़ते हैं।

समय मिलने और ना मिलने का भी एक अजीब रिवाज है, खासकर मोहब्बत में। और ना मिलो तो जुदाई का डर खौफ मार देता है, और मिलो तो फिर मिलने के बाद वो जो बिछड़ना होता है, जुदाई होती है, और एक दूसरे की आंखों से जो ओझल हो जाते हैं उससे भी घबरा जाते हैं।

हसीन मंजर रंग बिरंगे गुंचे, हसीन मंजर रंग बिरंगे गुंचे, खिले हैं गुंचे महक चमन में। हसीन मंजर रंग बिरंगे गुंचे, खिले हैं गुंचे महक चमन में।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, 101.9 FM मेगाहर्ट्ज़ पर सामईन आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग, और फिल्मी नगमे हम सुन रहे हैं भुला नहीं भूलते के तहत। तबीयत का खिलना, मिजाज का बदलना, तबीयत का खिलना, मिजाज का बदलना, दिल का हाल क्या खूब है। तबीयत का खिलना, मिजाज का बदलना, दिल का हाल क्या खूब है। दिल का गुब्बार, दिल से निकला धुआं, दिल का गुब्बार, दिल से निकला धुआं, दिल को धड़कने दो, दिल को धड़कने दो, धुएं को निकलने दो।

लगता है सभी को भाने, गोरे रंग वाले करते हैं नाज़ व नखरे, गोरे रंग वाले करते हैं नाज़ व नखरे, तो सामने वाला ये कह पड़ता है

ये आकाशवाणी हैदराबाद है। स्टोरी की घड़ी में इस वक्त रात के 10:28 और 50 सेकेंड्स हो रहे हैं। सामाइन बज्म सजी है नैरंग की और सुन रहे हैं हम फिल्मी नगमे भुलाए नहीं भूलते के तहत। काला सौला रंग लगता है अच्छा बहुत कम किसी को। काला सौला रंग लगता है बहुत कम किसी को। जब गोरा रंग लगता है सभी को भाने। जब गोरा रंग

खेल भी बड़ा निराला है, प्यारो इश्क का खेल भी बड़ा निराला है। आशिक को अपनी माशूक जब लगे खूब, आशिक को अपनी माशूक जब लगने लगे खूब, तो दिल ये इजहार कर बैठता है।

दिल जो सीने में धड़कता है, दिल जो सीने में धड़कता है, और इस धड़कन में जब बस जाता है माशूक, तो दिल से आशिक ये कह पड़ता है।

एक मुद्दत की रियाजत से कमाए हुए लोग कैसे बिछड़े हैं मेरे दिल में समाए हुए लोग। हाँ, लम्हात वो हैं जहाँ बजने लगे गीत ढोलक पर थाप, और सजने लगी हाथों में चूड़ियाँ और पायल की छनक, और बिछड़ने का दुख और साथ ही किसी से वादा कि हम जाएं और आप ना आएं।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, 101.9 एफएम मेगाहर्ट्ज़ पर। सामाई आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरम, और बज़्म सजी हैं भुलाए नहीं भूलते के तहत फिल्मी नगमों की। वादे पूरे होंगे है यकीन हमें, वादे पूरे होंगे है यकीन हमें, फिर भी जाने क्यों, फिर भी जाने क्यों दिल है बेचैन। बेखरारी का ये आलम, बेखरारी का ये आलम, और फिर ये इकरार।

इकरार वो इनकार का ये सिलसिला, इकरार वो इनकार का ये सिलसिला चलता रहा। आँखों से नींद रही दूर, रह गए करवटें बदलते बदलते।

सामाईन, आप सुन रहे थे भुलाए नहीं भूलते के तहत फिल्मी नगमे। ये आकाशवाणी हैदराबाद है और प्रोग्राम के आखिर में सुनते हैं पयाम-ए-शब, जिसे पेश कर रहे हैं नदीम अख्तर सैदी।

आदमियत और शय है, इल्म है कुछ और शय। कितना तोते को पढ़ाया पर वो हैवान ही रहा। सिर्फ इल्म हासिल कर लेना इंसान को कामिल इंसान नहीं बनाता। असल इंसानियत अच्छे अखलाक, किरदार, रहमदिली, दयानतदारी और अमल सालेह से पैदा होती है। जिस तरह तोता बहुत से अल्फाज बोल लेता है मगर उनका मफहूम नहीं समझता, इसी तरह अगर इंसान का इल्म सिर्फ जबान तक महदूद रहे और इसके किरदार में नज़र ना आए तो वह इल्म अपनी हकीकी रूह से खाली रह जाता है। इस्लाम भी इसी हकीकत की तालीम देता है कि बेहतरीन इंसान वो है जिसके अखलाक बेहतरीन हो। इल्म का मकसद इंसान में आजिज़ी, तकवा, इंसाफ और खिदमत खल्क का जज्बा पैदा करता है, ना कि गुरूर, दिखावा और दूसरों को कमतर समझना। इल्म वही कीमती है जो किरदार संवार दे, दिल में आजिज़ी पैदा करे और

0: دوسروں کے لیے خیر و بھلائی کا ذریعہ بنے، ورنہ صرف معلومات کا انبار انسانیت کی ضمانت نہیں ہوتا۔
1: سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے پیام شب، جسے پیش کر رہے تھے ندیم اختر زیدی۔ اسی پر اردو پروگرام نیرنگ کی بزم اب اپنے اختتام پر پہنچتی ہے، اس وعدے کے ساتھ کہ کل ٹھیک 9:30 بجے حاضر ہو جائیں گے اور کر کے نیرنگ کی بزم میں آپ سماعت کریں گے حرف تابندہ جناب ایم اے ہائی سے، بساط غزل آپ سماعت کریں گے ضامن علی حضرت سے، گیت سریلے کا تجا آپ سنیں گے، اور سلسلہ رہے گا جاری پیام شب کا، اور جسے پیش کریں گے زیدی۔ تو بزم یہیں پر ہمارے اختتام پر پہنچتی ہے، اجازت دیجیے، شب بخیر۔
2: لوک سبھا ادھیکش اوم برلا نے مانسون ستر سے پہلے آج کاریہ منترنا سمیتی کی بیٹھک بلائی۔ بیٹھک کے دوران سرکار اور وبھن راجنیتک دلوں کے سدسیوں نے ستر میں اٹھائے جانے والے ودھائی اور انیہ مدوں پر اپنے وچار ساجھا کیے۔ بیٹھک کو سمبودھت کرتے ہوئے شری برلا نے رچناتمک چرچا، سارتھک سہیوگ اور سنسدیہ پرمپراؤں کے اچ ماندنڈوں کا پالن کرنے کے مہتو پر بل دیا۔ संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौन भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्रीकृष्णा देव रायालु, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने उन सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
3: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
2: दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। यह यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉ मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। डॉ महापात्रा ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनाधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में आज सुबह से ही मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 11 लोगों की मृत्यु हो गई और 7 लोग लापता हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाएं। नागालैंड के मोन जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में 9 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ ने 1 करोड़ मूल्य

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. Today, being Sunday, we'll be taking your calls on mutual fund related queries. But do remember, we do not address stock or company specific queries. To connect with us, you can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. I'm Sarabjeet Kaur with my co-anchor, Subodh Mishra.
1: धन्यवाद सरबजीत और नमस्कार श्रोताओं. कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है. आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे. सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं 2331-4444, 2371-0481 और 2371-7106. श्रोता इससे पहले स्टडी कोड 011 भी डायल करें. आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट स्नेहा सूरी. स्नेहा, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
0: थैंक यू.
1: पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर.
0: Foreign portfolio investors infuse nearly 12,000 crore rupees into Indian equities so far in July. In bullion market, gold and silver prices extend downward slide last week, and domestic investors to focus on macroeconomic data, corporate earnings results and geopolitical developments for Qs next week.
1: Videshi portfolio niveshakon ne July mein ab tak bhartiya share bazar mein lagbhag 12,000 crore rupaye ka nivesh kiya. Sarafa bazar mein lagatar dusre hafte sone aur chandi ki kimaton mein giravat. और अगले हफ्ते देश के निवेशकों का फोकस रहेगा आर्थिक आंकड़ों, कंपनियों की आमदनी और वैश्विक गतिविधियों पर.
0: And listeners, before we go any further in the program, may we once again remind you that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We also advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: तो हम सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले खबरों पर नज़र डालते हैं सरबजीत. देखें आज क्या हाल रहा है इस हफ्ते एफपीआई का. लगातार चार महीने की बिकवाली का दबाव बनाए रखने के बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक एफपीआई ने जुलाई में लिवाली की है. इस महीने अब तक भारतीय शेयर बाजार में उन्होंने 11,897 करोड़ रुपए का निवेश किया है. सेमीकंडक्टर के वैश्विक व्यापार में कमजोरी से एफपीआई फिर से उभरते हुए बाजारों का रुख कर रहे हैं. देश के बेहतर आर्थिक संकेतकों और तिमाही आमदनी की अच्छी खबरों से विदेशी निवेशकों में उत्साह है. लेकिन अगर पिछले सप्ताह के आंकड़ों पर गौर करें तो एफपीआई ने भारतीय शेयरों से 3,260 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं. सरकार की टैक्स नीति में बदलाव के बाद विदेशी निवेशकों ने भारतीय ऋण बाजार में लगातार दिलचस्पी दिखाई है. जुलाई में अब तक उन्होंने एफएआर के जरिए 7,000

0: 4,492 करोड़ रुपए और जनरल रूट से 4,480 करोड़ रुपए का निवेश किया है।
1: और गुरुग्राम से कांता जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कांता जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछे। जी
2: मैं ये पूछना चाहती हूँ मैडम।
0: जी सवाल पूछे। जी
2: जी मैं पूछना चाहती हूँ कि जो पीपीएफ होता है ना, पीपीएफ में निवेश कितना, बैंक में कितना सुरक्षित है? बैंक जैसे पोस्ट ऑफिस में तो पैसा मरता नहीं कभी, और बैंक का कोई पता नहीं होता, तो मैंने बैंक में पीपीएफ खोला, वो कितना सुरक्षित है?
0: पीपीएफ में पैसा कितना सुरक्षित है?
3: कांता जी, पीपीएफ क्योंकि एक गवर्नमेंट की स्कीम है और ये फिक्स्ड इनकम एक्सपोजर आपको प्रोवाइड करती है, जहाँ पे आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, और ये काफ़ी लंबे 15 साल के लिए आप अपना पैसा यहाँ डालते हैं। यहाँ पर भी एक तरीके की कंपाउंडिंग होती है कि आप जो डालते हैं उस पर आपको एक इंटरेस्ट मिलता है, और फिर वो इंटरेस्ट जुड़ के आपके उस टोटल अमाउंट पर आपको एक तरीके का ब्याज है जो मिलता रहता है। तो इसकी सुरक्षा जितनी भी स्कीम्स एग्जिस्ट करती है उनसे काफ़ी ऊपर है। तो आप बिल्कुल इसमें अगर निवेश कर रहे हैं तो बिना इस चिंता के आप बिल्कुल अपना निवेश जारी रख सकते हैं।
0: जी स्नेहा, जब पीपीएफ की बात आती है तो कई बार लोग पूछते हैं अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के लिहाज से कि पीपीएफ कितना शेयर रखें, और ख़ासकर जब पहले जो ओल्ड टैक्स रिजीम था उसमें इसके फायदे दिखते थे, क्या आप बदले हुए हालात में इसका क्या सीन है, क्या रखना चाहिए?
3: एक बात तो ये है कि अगर आप पहले के समय में रख रहे थे तो क्योंकि एक लंबे टाइम के लॉक इन के साथ आता है, तो वो पैसे तो रहेंगे ही उसमें। बट देखना इस प्रकार से चाहिए कि हमें इक्विटी और डेट में अपनी एलोकेशन कितनी रखनी है। अगर आप डेट में लंबे समय के लिए कोई एलोकेशन रखना चाह रहे हैं तो पीपीएफ एक्चुअली एक काफ़ी अच्छा विकल्प हो जाता है, क्योंकि उसमें आप ये जो एक सेफ्टी की बात अभी हम कांता जी से डिस्कस कर रहे थे वो भी एक लेवल अप रहती है, और क्योंकि जितना इंटरेस्ट इसमें आज आपको मिल रहा है ये काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट है, वो भी टैक्स फ्री मिल रहा है, जो कि मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स में लोग चाह रहे होते हैं कि मिल जाए। और फिर इंडिया हैज़ लॉन्ग बीन अ फिक्स डिपॉजिट वाली एक मार्केट रही है, तो गारंटी से हमें काफ़ी प्यार है, तो ये वो हमें ऑफर करती है। तो हम अगर डेट एलोकेशन लंबे समय के लिए रखना चाह रहे हैं तो बिल्कुल इसमें रख सकते हैं।
0: जी अगले कॉलर हैं गाजियाबाद से अमित, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
4: हेलो मार्केट, दिस इज अमित। सो माय क्वेश्चन इज लाइक आई एम वर्किंग इन अ प्राइवेट कंपनी एज एन अर्निंग एज अ सैलरी इनकम, एंड माय मदर इज आल्सो गेटिंग पेंशन। So I have transferred my mutual funds to my mother, and when I'm filing my income tax return in a new regime, both for myself and my mother, so it is showing of rupees around 10 lakhs and under the off market transaction credit in EIS and TIS statements. So I want to know whether I have to pay any tax. Or how the tax calculation will be done while filing this return, for me and for my mother, I've transferred the mutual funds.
0: मुझे लगता है स्नेहा कि ये म्यूचुअल फंड से ज्यादा इनकम टैक्स का सवाल है, और किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप इस पर बेहतर सलाह ले पाएंगे।
1: लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम हैदराबाद। सौरभ जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
5: गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा।
1: गुड इवनिंग।
5: माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड रीबैलेंसिंग। आई जस्ट वांट टू आस्क दैट लेट्स से ऑन 1st of August आई हैव टू रीबैलेंस फॉर द ईयरली रीबैलेंसिंग। सो इन वन ऑफ माय लेट्स से एसेट दैट इज द मिड कैप और स्मॉल कैप, आई हैव नाउ मोर देन माय स्टिपुलेटेड परसेंटेज। सो फॉर द नेक्स्ट ईयर should I immediately sell off that thing, or I should reduce my SIP for the next year in that mid cap or small cap? Thank you.
3: Right. So Saurav, it's great actually that you're looking at, you're giving a holistic view to your portfolio annually. So kudos on that. On the aspect

0: regarding your mid and small cap have turned heavier as per your targeted allocation. What you can also do is at this point, let's say if you're looking at rebalancing and you have some debt allocation in your portfolio, maybe you can increase that a bit and eventually it should settle out. Because if your funds are doing reasonably well, they have been, let's say, generating healthy returns for you, then there is no point of selling it just for the rebalancing aspect. The other way of looking at it would be increasing, let's say, your debt allocation to some extent. And yeah, that should be helpful.
1: जी अगले कॉलर के पास चलें सरबजीत
2: जी चेन्नई काशीनाथ जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन
3: गुड इवनिंग मैडम
2: गुड इवनिंग
3: मेरा प्रश्न ये है कि मेरा पास एक स्मॉल कैप है टाटा स्मॉल कैप और दो फ्लेक्सी कैप क्वांट फ्लेक्सी कैप और जेम फ्लेक्सी कैप इस तीनों फंड के बारे में क्या अच्छा है इस पे बने रहना चाहिए हर फंड में दो दो हजार जा रहा है ये क्या अच्छा है इसकी अच्छा जानकारी चाहिए धन्यवाद
0: तो जो आपने पोर्टफोलियो बताया कि आप दो स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड हैं और एक फ्लेक्सी कैप में इस लिहाज से मुझे लगता है कि आपका स्मॉल कैप एलोकेशन थोड़ा ज़्यादा रह सकता है सिंस आप इक्वल अमाउंट इन तीनों में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है कि स्मॉल कैप हमारे पोर्टफोलियो का एक थोड़ा छोटा हिस्सा रहे बहुत ज़्यादा ओवर पार ना कर ले क्योंकि होता क्या है लंबे समय में ये देखा गया है कि बीच बीच में स्मॉल कैप जब मार्केट गिरती है तो स्मॉल कैप में जो फॉल होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप ऐसे करें कि अगर आप स्मॉल कैप में जो एलोकेशन कर रहे हैं इसके साथ साथ आप एक और फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर लें ताकि जो आपका एक पोर्टफोलियो का होलिस्टिक व्यू है वो थोड़ा बैलेंस हो पाए बस इतना इंश्योर करना कि जब वो उतार चढ़ाव हो रहा है स्मॉल कैप में तब आप डरे नहीं आप अपनी SIPs को कंटिन्यूड रखें क्योंकि वही लंबे समय में आपको एक ही स्ट्रैटेजी होती है जो आपको आपका रिटर्न आपका कमाई का मैक्सिमम बेनिफिट आपको दे सकती है तो आप देखिए अगर आप एक और फ्लेक्सी कैप में आपके पास सरप्लस है तो SIP स्टार्ट कर लीजिए
1: जी दिल्ली से आकाश जुड़ गए हैं आकाश स्वागत है आपका सवाल पूछें लगता है आकाश से हमारा संपर्क टूट गया है अगले कॉलर भी हमारे साथ हैं सरबजीत
2: यस आवर नेक्स्ट कॉलर इज फ्रॉम फरीदाबाद सुभाष जी सवाल पूछे
4: हाँ नमस्कार सर
2: जी नमस्कार
4: मैडम अभी आप बता रहे थे कि फॉरेन इन्वेस्टर अभी इक्विटी फंड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में तो मैं ये जानना चाहता था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ उनको इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ बेनिफिट प्रोवाइड किया है क्या जैसे डेप्ट फंड में उनका टैक्स रिबेट का दिया था ऐसा ही कोई इक्विटी फंड में भी दिया है और दूसरा ये है कि वो कौन सी स्कीम में इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर ये कुछ पता चल सकता है
1: वो जिस खबर की बात कर रहे हैं मैं वो साफ कर दूं कि वो इक्विटी फंड नहीं है उन्होंने भारत के शेयर बाज़ार में निवेश किया है और डेट फंड में भी नहीं है वो डेट मार्केट में है वो भारत के पूंजी बाज़ार का ही हिस्सा है तो मुझे लगता है ये जवाब काफ़ी होगा हमारे श्रोता के लिए जी अगले कॉलर के पास चले हम
2: यस लेट्स कनेक्ट विद आकाश फ्रॉम दिल्ली
4: हेलो
1: जी आकाश
4: मुझे दो बातें पूछनी एक तो ये पूछना है कि जैसे म्यूचुअल फंड के बारे में हम ब्रांच में जाते हैं तो वो अपने एजेंट के द्वारा हमें कुछ चीजें बताते हैं तो वहाँ कंफ्यूजन रहता है वो अपने ही कंपनियों के बारे में ज्यादा हमें राय देंगे और क्योंकि हम लोग की FD है तो हम लोग एक राय ये लेना चाहूंगा FD के बारे में कि हम एक साल के बाद मैच्योरिटी के बाद ही लें तो ज्यादा बेनिफिट है या हम हर महीने या तीन महीने बाद अपना से बनाए क्योंकि वो कहते हैं कि आप मैच्योरिटी के बाद लेंगे तो आपको एक साल के बाद कंपाउंड ब्याज मिलेगा कंपाउंड ब्याज तो हम वो समझे ना चक्रवर्ती ब्याज ब्याज के ऊपर ब्याज और ये साथ में ये सारे एक्सपर्ट आते हैं आप लोग कहीं आपका ऑफिस भी होता है जहां आप लोग आम आदमी जो म्यूचुअल फंड में जाना चाहता है आपसे राय लेना चाहता है क्योंकि आप आकाशवाणी में आते हैं तो आपका विश्वास ज्यादा बना रहता है धन्यवाद
0: जी आकाश जी आपकी वॉइस में थोड़ी डिस्टरबेंस थी जितना मैं समझ पाई हूँ आप कहना चाह रहे हैं जब आप बैंक में म्यूचुअल फंड्स बाय करने जाते हैं तो वो आपको अपनी ही कंपनी के फंड्स सजेस्ट
1: जी ऐसा अक्सर होता है
0: हाँ बिल्कुल ऐसा अक्सर होता है इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपनी थोड़ी बहुत रिसर्च जो हम कर सकते हैं वो करके जानी चाहिए जब आपको

आप आजकल ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल होता है, जब आप इतना समझ पाते हैं कि अगर आपको 5 साल से ज्यादा के लिए करना है तो आप इक्विटी फंड्स देखना चाहेंगे, तो आप उनमें चुनाव कर सकते हैं कि कौन सा जो जिसका खर्चा कम है, जिसने मार्केट के उतार चढ़ाव लंबे समय में देखे हुए हैं और उनसे आपको एक हेल्दी रिटर्न जनरेशन रही है, पर लंबे समय में, छोटे समय में नहीं। 1 साल में कोई अच्छा बुरा कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये

0: कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये मार्केट ही लॉन्ग टर्म, एक तरीके के लॉन्ग टर्म जनरेशन, वेल्थ जनरेशन के लिए है. अगर आपका गोल 3 साल से कम के लिए है तो हम डेट फंड्स देखेंगे. अगर आप पहली दफा मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम हाइब्रिड फंड्स देखेंगे. इतना भी अगर हम समझ के जाते हैं तो जब कोई हमें गलत चीज बेच रहा होता है या जो हम नहीं चाहते हैं वो बेच रहा होता है, वी कैन ऑलवेज आस्क द राइट क्वेश्चंस. जब हम सवाल करते हैं तो फिर हमें जवाब सामने वाला जिस तरीके से दे रहा होता है उसमें हम एक एक इन्वॉल्वमेंट रह पाती है. और क्योंकि सामने वाला ये समझता है कि वो काफी नॉलेजेबल है, वो आपको एक तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है. बट अगर आप खुद से कुछ फंड्स का चुनाव करके जाते हैं और आप उन्हें बोलें कि आपकी आपको इन्हीं में करना है, तो मतलब मैं कहना ये चाह रही हूँ कि आप अपना स्टैंड रखिए और आप फिर इन्वेस्ट करिए. और अगर बैंक के थ्रू आप नहीं कर पाते हैं तो, और आप अगर मान लीजिए डिजिटली आप काफी सोफेस्टिकेटेड हैं, तो आप AMCs की वेबसाइट पे जाकर, म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाके फंड का चुनाव कर सकते हैं जो आपको, जिसमें इन्वेस्ट करना है. बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो जो आपको बेच रहे हैं आप उसी में निवेश कीजिए. दूसरा, जो आपने बोला कि FD 1 साल की लेनी चाहिए या ज्यादा की लेनी चाहिए, मेरी समझ में अगर आप इफ एट ऑल फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं इसको ऐसे देखती हूँ कि जो आपका जितने समय का गोल है आप उतने समय के लिए वो वाले टेन्योर की FD लें. क्योंकि होता क्या है कि अगर वो मान लीजिए आपका मेच्योर होता है, वो वापस आता है, आप और उसी समय जिंदगी में कुछ ऐसा सर्कमस्टांस आ जाता है जहां पे आपको लगता है अच्छा यही इस्तेमाल करके अपना वो कंज्यूम कर लेते हैं पैसे, तो मतलब जब मैं सोचती हूँ इन्वेस्टमेंट का तो मुझे लगता है कि गोल के साथ अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट जोड़ते हैं तो एक बेटर वैल्यू मिल पाती है आगे जाकर, और जो इंटरमिटेंटली हम कंज्यूम कर लेते हैं उसका डर खत्म हो जाता है.
1: जी, अगले कॉलर हैं दिल्ली से दिनेश, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए।
2: नमस्कार, मैं जिस कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली अशोक विहार से.
1: जी
2: मैं दो बातें पूछना चाहता हूँ. एक तो ये है कि म्यूचुअल में जो एक्सपेंस रेशियो होता है, जो मैनेजमेंट चार्जेस होते हैं, फंड कैसा भी परफॉर्म करे फंड मैनेजर को अपने चार्जेस मिल जाते हैं. ऐसा क्या नहीं होना चाहिए कि अगर इंडस्ट्री एवरेज से बेटर परफॉर्म कर रहा है तो मैनेजर को बेटर चार्जेस मिले, और अगर इंडस्ट्री से एवरेज से कम परफॉर्म किया है तो वो कम चार्जेस लेकर बाकी चार्जेस NAV में ऐड कर सके. दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूछना चाहता हूँ कि गोल्ड ETF और सिल्वर ETF में से किसमें इन्वेस्ट करना बेटर रहेगा. थैंक यू.
0: जी दिनेश जी, आपका जो पहला सवाल है ये जब भी मार्केट अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही होती है तब बिल्कुल जो लंबे समय से इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं उनके दिमाग में ये आता है. और हाल फिलहाल में सेबी ने एक सर्कुलर निकाला था जिसमें उन्होंने परफॉर्मेंस लिंक्ड एक्सपेंस की बात करी थी, जिसका बिल्कुल यही माध्यम था कि जब कोई फंड अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है तो मतलब इन्वेस्टर को उसमें रहने का एक फायदा नहीं हो रहा है, तो फिर मैनेजमेंट को भी उसका जो प्रोपोर्शन है जो एक एक्सपेंस के तौर पर मिलता है वो उसी रिलेटिवली टू द परफॉर्मेंस मिलना चाहिए, तो कम ज्यादा परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनको मिले. बट इस पे अभी ये बस एक सर्क्युलर है, इस पे कुछ और डेवलपमेंट नहीं हुई है. AMCs ने अभी इसको इनेबल नहीं करा है, या फिर इस पे क्या थिंकिंग चल रही है ये सब, मतलब अभी टाइम जैसे जैसे आगे जाएगा तभी हमें पता चलेगा. बट हाँ, ये बात जरूर है कि दिनेश जी, सुना तो हुआ है, सुना है ये सेबी ने, रेगुलेटर ने, देखते हैं इसके आगे होता क्या है. एक बात मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि माना वो एक्सपेंस ले लेते हैं, बट इसकी वजह से हमें अपनी इन्वेस्टमेंट जो हम जारी रख रहे हैं उसको पॉज या स्टॉप नहीं करना चाहिए. हमारा नजरिया ये रहना चाहिए कि अगर कुछ 3 साल तक या फिर मतलब वो परफॉर्मेंस आपको उतना नहीं बेनिफिट दे रही है तो आप बिल्कुल उसमें अपनी SIPs पॉज करके एक दूसरे फंड को देखिए. बट छोटे समय में इस तरीके की थॉट से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी पे पॉज ना लगाइए. और दूसरा जो आपका क्वेश्चन था कि गोल्ड ETFs और सिल्वर ETFs में से किसका चुनाव करना चाहिए, तो बेसिकली ये एक तरीके का ऐसा एक्सपोजर है कि आपको मेटल में एक्सपोजर लेना है, समथिंग बियॉन्ड इक्विटी, जो इक्विटी के उतार चढ़ाव के साथ आपको एक तरीके का बैलेंस प्रोवाइड कर सकते हैं. तो गोल्ड का जितना हिस्ट्री देखी गई है वो इतना ये प्रोवाइड कर पाता है, प्लस गोल्ड ETFs ज़्यादा पुराने हैं और ज़्यादा वेराइटी अवेलेबल है मार्केट में उनकी, तो आप चुनाव किसी का भी कर सकते हैं, बट गोल्ड की हिस्ट्री क्योंकि ज्यादा है तो उनकी ट्रेडिंग वॉल्यूम्स जिसको आप जब आप खरीद बेच करते हैं मार्केट में, तो शायद एक बेटर

0: निवेश वो रह सकता है, बट इंश्योर बस ये करना है कि मेटल में जब आप एक इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो एक्सपोजर 10% से ज़्यादा ना रहे आपके पोर्टफोलियो का।
1: ऑल राइट, आवर नेक्स्ट कॉलर इज ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली। योगेश जी सवाल पूछे।
2: जी नमस्कार अक्षय को, मेरा सवाल ये है कि आईसीआईसी क्या, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि उसके लिक्विड फंड में हमने जो पैसे डाले थे तो उसमें विड्रॉ करने पे 7 डेज के अंदर अगर हम विड्रॉ करते हैं तो पेनल्टी का चार्जेस था, जबकि अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में और शॉर्ट टर्म फंड में आप डालने के अगले दिन भी निकाल सकते हैं, उसमें कोई पेनल्टी नहीं है सर, जबकि उसका जो मैकाले ड्यूरेशन है वो ज्यादा का है। तो ऐसा क्यों होता है कि लिक्विड फंड में ज्यादा लिक्विडिटी होनी चाहिए बट उसमें 7 डेज का लॉक इन है? और दूसरा सवाल है कि भारत 22 फंड ऑफ फंड
0: जी योगेश जी, कुछ समय पहले सेबी ने ये नोट करा था कि लिक्विड फंड्स में मतलब एक एग्जिट लोड की काफ़ी ज़रूरत थी, क्योंकि लोग बीच में डाल के जल्दी निकाल रहे थे, और लिक्विड फंड एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे जो बड़ी कंपनीज के ट्रेजरीज होते हैं वो भी इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए हम देखते हैं कि हर एक क्वार्टर के एंड में बहुत ज़्यादा पैसा लिक्विड फंड से या तो निकलता है और एक क्वार्टर के बाद निकलता वापस आ जाता है। तो ये होता इस वजह से है कि बड़े ट्रेजरी कॉरपोरेट्स इसमें इन्वेस्ट करते हैं, अपनी एडवांस टैक्स पेमेंट्स इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो जब वो एक दिन पहले डालते ही निकाल लेते हैं तो एक इम्पैक्ट ऐसा हो जाता है कि उन्होंने तो पैसे निकाल लिए पर उन पे कोई चार्ज नहीं लगा कम समय की इन्वेस्टमेंट के लिए। तो चीज़ों को थोड़ा बैलेंस रखने के लिए सेबी ने ये इंट्रोड्यूस करा था कि 7 दिन के लिए एक बहुत ही मामूली सा एग्जिट लोड लगेगा, बट जब ये बड़े अमाउंट पे लगता है तो वहाँ पे वो खर्चा ज़्यादा लगता है। और बाकी आपने सही नोटिस करा है कि डेट फंड्स, बाकी के डेट फंड्स में ऐसा कोई एग्जिट लोड का स्पेसिफिकली कोई ड्यूरेशन या फिर ऐसा नहीं है कि आपके पास वहाँ अप्लाई होता है, जनरली डेट फंड्स में नहीं होता है, लिक्विड में ये इंट्रोड्यूस करा गया था स्पेसिफिकली। तो बट इन एनी केस हम जब लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इतना इंश्योर कर सकते हैं कि इतने कम समय के लिए ना करें तो हमारा फायदा रहेगा।
3: जी, और देखते हैं सोने चांदी का क्या हाल रहा है। सर्राफा बाजार में लगातार दूसरे हफ्ते भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई। मजबूत अमरीकी डॉलर, ट्रेजरी यील्ड्स में बढ़ोतरी और इस आशंका से निवेशकों का भरोसा डगमगा गया कि अगर पश्चिम एशिया में टकराव बढ़ता है तो अमरीकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को लेकर सख्त रुख अपनाएगा। एमसीएक्स में अगस्त अनुबंध के लिए सोने के वायदा भाव में हफ्ते के दौरान 1.8% की गिरावट आई और ये 1,40,906 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। सितंबर अनुबंध की चांदी वायदा 3% गिरकर 2,16,013 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। कॉमेक्स में अगस्त अनुबंध के लिए सोने के वायदा भाव में हफ्ते के दौरान 2.3% की गिरावट आई और ये $4,018.80 प्रति ट्रॉय आउंस पर बंद हुआ। इसी दौरान सितंबर अनुबंध की चांदी वायदा 6.4% गिरकर $56.33 प्रति ट्रॉय आउंस पर बंद हुई।
0: मैं योगेश जी को एक ये चीज़ भी बताना चाहूँगी, ये जब एग्जिट लोड लगाया गया था उसका एक ये भी रीज़न था टू एनकरेज जो ये कॉरपोरेट इन्वेस्टर्स, मैं आपको बता रही हूँ कि ये ओवरनाइट फंड में लगाएं लिक्विड के बियॉन्ड, बिकॉज ओवरनाइट इन एनी केस एक दिन के पेपर में इन्वेस्ट करते हैं जिसके लिए वो लोग भी इन्वेस्ट करते हैं जो कॉरपोरेट इन्वेस्टर्स हैं, तो ये भी एक रीज़न था वहाँ पे।
1: ऑल राइट, लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम जयपुर। जितेंद्र जी सवाल पूछे।
4: हाँ मैडम, देखिए मेरा दो सवाल है, जैसे अभी तो वैसे मार्केट डाउन है तो कोई नया फंड हाउस कोई नया फंड लेके आया है तो अब तो उसका एंट्री जो है बहुत नीचे लेवल पे रहेगा, तो इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं? नया फंड हाउस है और नया स्कीम है तो डाउन है मार्केट, पहला प्रश्न तो ये। दूसरा प्रश्न है कि मैडम अब पिछले एक साल से एक सिस्टम निकल गया कि हम अपना यूनिट जो है गिफ्ट कर सकते हैं, तो मैंने अप्लाई किया और मैं ऐसा कर भी पाया, बहुत ईजी था, तो ऐसा क्या डीमैट में भी है क्या?
0: जी जितेंद्र जी, जो आपका पहला सवाल है कि नया फंड आ रहा है, मार्केट डाउन है, नीचे से स्टार्ट होगा, इसमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगी जब भी कोई नया फंड आता है तो सबसे पहला प्रश्न ये होना चाहिए कि क्या ये कुछ ऐसा एक्सपोजर दे रहा है जिसमें ए मेरे और पोर्टफोलियो में इसका एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, एज इन इसमें कुछ ऐसी यूनिक बात है टू ऑफर टू यू कि ये आप चाहेंगे अपने पोर्टफोलियो में, तो फिर उससे क्या होगा कि आप कि कोई और वजह देखेंगे ही नहीं इन्वेस्ट करने के लिए। दूसरा, कुछ अगर ऐसा थीम आ रहा है जिसमें आपका जो एक बिलीफ होता है वो आपका काफी ज्यादा है, आप चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो

0: में ऐसा एक्सपोजर हो, आपको लगता है कि ये स्टॉक, ये जो जो थीम है वो आपको आगे जाके बेनिफिट देगा, तो बिल्कुल आप फिर उसमें इन्वेस्ट करिए. ये दो तरीके, ये दो रीजंस अगर आपके इसमें टिक होता है कोई, ये जो नया फंड आ रहा है उसका बॉक्स, तो बिल्कुल आप इसमें इन्वेस्ट करिए, बेझिझक करिए. क्योंकि आप लंबे समय के लिए करेंगे तो जो आपका एंट्री पॉइंट है वो उस तरीके से मैटर नहीं करता. SIPs के थ्रू आप एम करेंगे तो आपको बेनिफिट ही होगा लंबे समय में.
1: जी, अगले कॉलर हैं भोपाल से शंकर, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
2: नमस्ते मैडम. नमस्ते मार्केट मद्रा टीम. मैडम मेरा सवाल है, ये करंट सिनारे में जब रिटर्न सारे टेपर होते जा रहे हैं इन इन एक्टिव फंड एंड स्मॉल और मिड कैप और फ्लेक्सी कैप, तो क्या वुड यू एडवाइस फॉर करंट SIP जो हम लोग शुरू कर रहे हैं या जो चल रही है, टू स्विच टू एन इंडेक्स फंड, और एक्टिव फंड वुड बी स्टिल बी ए बेटर बेट फॉर अ लॉन्ग टर्म 5 साल प्लस टेन्योर SIP से 10,000 की या 15,000 की जो भी SIP चल रही है, आपकी एज एन एक्सपर्ट व्हाट वुड बी एडवाइस, एन एक्टिव फंड मैनेज फंड और एन इंडेक्स फंड फॉर लॉन्ग फाइव.
0: सो शंकर, द डिबेट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव फंड्स डज नॉट रियली स्टैंड अप ऑन द करंट मार्केट सिनेरियो. इट एक्चुअली इवॉल्व्स ऑन द फैक्ट दैट लेट्स से इफ यू आर समबडी हु इज नॉट ओके विद एक्टिव मैनेजमेंट, और लेट्स से यू डू नॉट बिलीव दैट अ फंड मैनेजर विल बी एबल टू डू जस्टिस टू यू एंड दस द फीस ऑल्सो यू वुड नॉट लाइक टू पे, देन द पैसिव फंड मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली बिकम्स योर डी फैक्टो चॉइस. अदर देन दैट, लेट्स से फॉर समबडी हु डज नॉट रियली हैव एनी एक्सपीरियंस इन द मार्केट, ही और शी कैन सिंपली स्टार्ट विद अ पैसिव फंड. सो इफ यू आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन ईदर पैसिव और एक्टिव, आई वुड से दिस इज नॉट रियली एनी रीजन टू स्टॉप दोज एंड मूव ऑन टू डिफरेंट फंड और अ डिफरेंट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी. द इशू बींग दैट ऑफकोर्स इन लार्ज एंड मिड कैप पैसिव हैव, especially in large caps, passives have taken over, but there are a few funds who are able to beat the index as well, and if you are investing in those then you might as well continue. Same goes for mid cap, and in small cap passive really has a long way to, you know, beat active management, so there also active works best.
3: Let's ask our next caller from Ghaziabad. Ashu ji, sawal puchhe.
4: Yeah, very good evening. Actually, I wanted to know the prospects of Invesco Contra Fund and if it is good to invest for Invesco Contra Mutual Funds in the current market situations. The second one is Mirae Large Cap and Mid Cap, what are the prospects? And I have some points in that particular fund, so should I redeem it or should I continue investing?
0: Right. So how I would say, the prospects can never be judged at this point in time. It is always in hindsight that you would get to know about it. How you can look at it is, if you are looking to build the core of your portfolio, of course, Contra fits there. And for the supplementary allocation, a mid cap or a small cap allocation fits well. All of these funds have been decent enough to continue your SIP in. In case you need, you know, any other kind of exposure, let's say a small cap, a multi cap, it can be included in the portfolio.
3: All right, listeners, let's now take a look at how the markets are expected to show up next week. The domestic markets are expected to take cues from the first quarter corporate earnings results, geopolitical developments, commodity prices, foreign investor activity, progress in monsoon, and currency trends in the upcoming week. Market participants will closely monitor key economic indicators, including core industry data, purchasing managers index readings, and foreign exchange reserve figures. Meanwhile, the primary market is set to remain active this week with three main board IPOs scheduled for listing.
1: आज वक्त इतना ही है स्नेहा, कार्यक्रम में आने और ढेर सारे सवालों के जवाब देने के लिए, श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
0: जी धन्यवाद.
3: Listeners, before we wrap up today's show, a reminder of the headlines. Foreign portfolio investors infused nearly 12,000 crore rupees into Indian equities so far in July. In bullion market, gold and silver prices extend downward slide last week. And domestic investors to focus on macroeconomic data, corporate earnings results and geopolitical developments for cues next week. That's all in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow. Until then, goodbye.
5: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता

0: है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
1: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर वक्त हो चुका है ठीक 11:41 और 6 सेकेंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत का। नमस्कार, संगीत के इस खूबसूरत महफिल में आपका दिल से इस्तकबाल है। कुछ गीत ऐसे होते हैं जो वक्त की गर्द से कभी धुंधले नहीं पड़ते, पीढ़ियां बदल जाती हैं लेकिन उनके सुर, उनके अल्फाज और उनकी खुशबू हमेशा दिलों में बसी रहती हैं। ऐसे ही सदाबहार और गोल्डन एरा के उन बेहद खूबसूरत गीतों के साथ हम हाजिर हैं गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में। आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब। मैं हूं आपके साथ फेरोज। तो आइए आज के इस सफर का आगाज करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म के नगमे के साथ। साल 1956 में आई फिल्म चोरी चोरी ने हिंदी सिनेमा को कई यादगार गीत दिए और उन्हीं में से एक बहुत ही खूबसूरत गीत है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस खूबसूरत युगल गीत को अपनी सुरीली आवाज़ों से सजाया है मन्ना डे साहब और लता जी ने। गीत के दिल को छू लेने वाले अल्फाज यानी गीत लिखे हैं हसरत जयपुरी साहब ने, जबकि बेहद खूबसूरत संगीत से संवारा है कालजयी धुन तैयार किया है शंकर जयकिशन साहब की जोड़ी ने। इस गीत की सबसे बड़ी खासियत इसकी सादगी है, ना कोई बनावट ना कोई शोर, बस चांदनी रात, दो धड़कते दिल और मोहब्बत का एक मासूम सा पैगाम। यही वजह है कि 7 दशक बाद भी ये गीत अपनी ताजगी और कशिश बरकरार रखे हुए हैं। मन्ना डे की गहराई और लता मंगेशकर की कोमल आवाज जब एक साथ मिलती है तो हर अंतरा एक खूबसूरत गुफ्तगू बन जाता है। वहीं संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन का संगीत और हसरत जयपुरी की शायरी इस गीत को सिर्फ एक फिल्मी गीत नहीं बल्कि सुनहरे दौर की एक अनमोल याद बना देते हैं।

फिल्म चोरी चोरी का ये बेहद खूबसूरत नगमा मन्ना डे साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत की इस दिलकश महफिल में गीत मेरे मनमीत की इस महफिल में सुनहरे दौर के उन चुनिंदा नगमों के साथ हम हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है। ये वो दौर था जब मोहब्बत की दुनिया में कभी एक नज़र का इंतज़ार होता है तो कभी एक मुस्कुराहट पूरी दास्तान कह जाती हैं और कभी कभी बस एक पल के लिए कोई अपना चेहरा फेर ले तो दिल बेचैन हो उठता है। इसी नाजुक एहसास को सुरों में पिरोया गया है हमारे अगले सदाबहार नगमे में और इस सदाबहार नगमे हैं सुनहरे दौर के। इस रोमानी युगल गीत को अपनी जादुई आवाज़ों से अमर बनाया है मुकेश साहब और लता जी ने। गीत के सादगी भरे मगर दिल में उतर जाने वाले अल्फाज लिखे हैं शैलेंद्र ने और इन्हें मधुर धुनों का जादूगर जादू से सजाया है शंकर जयकिशन साहब की बेहद खूबसूरत जोड़ी ने। यह वो दौर था जब प्रेम का इजहार शोर से नहीं बल्कि निगाहों मुस्कुराहटों और मासूम शरारतों से होता था। ऐसा ही यह नगमा है दम भर जो उधर मुंह फेरे उसी खूबसूरत एहसास का आईना है। गीत में रूठने मनाने की मिठास है इश्क की चंचल अदा है और दो दिलों के बीच चलती एक प्यारी सी गुफ्तगु का रंग भी। मुकेश साहब की सादगी भरी आवाज़ और लता मंगेशकर की मधुर तान इस गीत को ऐसा जादू बख्शी है कि आज भी सुनते ही सुनहरा दौर आंखों के सामने जिंदा हो उठता है। यही वो दौर था यही उस दौर के संगीत की असली कशिश थी। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ आगे बढ़ते हैं और फिल्म आवारा का ये बेहद खूबसूरत नगमा हम आपको सुनवाते हैं मुकेश साहब।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube

चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से अंतरे के बाद, एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत में। और गीत मेरे मनमीत में सुनहरे दौर के उन नगमों के साथ हम हाजिर हैं जो हमारे दिल के, आपके दिल के बेहद करीब है। कहते हैं जब दो दिल एक दूसरे के करीब आते हैं तो सिर्फ एक रिश्ता नहीं बनता, जैसे दो सितारे अपनी रोशनी से पूरी फिजा को जगमगा देते हों। मोहब्बत का यही दिलनशी एहसास अगला ये नगमा बता रहा है। बरसों से इश्क की महफिल की ये शान भी बना हुआ है, हिंदी सिनेमा के संगीत की महफिल की ये शान भी बना हुआ है ये नगमा। ये गीत सिर्फ दो प्रेमियों की मुलाकात का बयान नहीं बल्कि उस एहसास का जश्न है जब दो रूहें एक दूसरे में अपना अक्स तलाश लेती हैं। शकील बदायूनी साहब की शायरी में नज़ाकत है, लफ्ज़ों में मिठास है और नौशाद साहब के सुरों में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की खुशबू साफ महसूस होती है इस गीत में। और यह नगमा है 1960 की एक शानदार फिल्म कोहिनूर से। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी की।

0: अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद आपके साथ रहेंगी मंजू। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने कल संसदीय सौंध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे सुने।
1: दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। यह यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने 1 करोड़ रुपए मूल्य का 1,700 मीट्रिक टन से अधिक अवैध रूप से खनन, भंडारण या परिवहन किया गया कोयला जब्त किया है। CISF ने कहा कि यह गहन कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा के बाद की गई है। बैठक में गृह मंत्रालय ने शून्य कोयला लीकेज हासिल करने, देश के कोयला संसाधनों से अवैध रूप से कोयला निकालने और चोरी तथा संगठित डकैती पर अंकुश लगाने के लिए लक्षित और समयबद्ध उपायों के निर्देश दिए। सरकार देश भर में मशीनीकृत स्वच्छता को बढ़ावा देते हुए स्वच्छता कर्मचारियों की सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र नमस्ते योजना को एक प्रमुख पहल के रूप में लागू कर रही है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में कल सुबह से ही मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 11 लोगों की मृत्यु हो गई और 7 लोग लापता हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाएं। नागालैंड के मोन जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में 9 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इंग्लैंड ने भारत को लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इससे पहले इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट खोकर 387 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 7 विकेट खोकर 360 रन ही बना सकी। अमरीकी सेना ने कल ईरान पर हवाई हमले किए। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन हमलों में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाया गया। अमरीका ने कहा है कि यह हमला जॉर्डन से अमरीकी सैनिकों की मौत का बदला लेने के लिए किया गया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज पिछले विजेता अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा। यह मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा। इससे पहले इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
1: पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
2: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम अलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। साथियों, जैसा कि हम जानते ही हैं, हमारा ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का विस्तार है। प्रधानमंत्री जी जिन विषयों का उल्लेख करते हैं, उन्हें और अच्छे से समझने के लिए, अपनी जानकारी उन विषयों के बारे में बढ़ाने के लिए हमारा ये कार्यक्रम समर्पित है। इस कार्यक्रम में हम आमंत्रित करते हैं अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों को और उनके माध्यम से प्रधानमंत्री जी द्वारा उल्लेख किए गए उस विषय को, उन व्यक्तियों को, उन हस्तियों को हम और समझते हैं, उनके कार्य के बारे में हम और जानते हैं और इस तरह हम गहरे से जुड़ते हैं, अपनी जड़ों से अपनी संस्कृति को थोड़ा और अपनाते हैं। इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने नालंदा विश्वविद्यालय की एक ऐसी पहल का उल्लेख किया जो अनुकरणीय है, जो बेहद प्रेरित करती है। किस तरह से हमारी जो परंपरागत शैक्षणिक विधियां थी, उन्हें नालंदा विश्वविद्यालय पुनर्जीवित कर रहा है, उन्हें प्रचलित कर रहा है और किस तरह से हमारे युवाओं को एक ऐसा मार्ग दिखा रहा है जो जीवन में आगे बढ़ने में हमें लगातार तैयार करता रहेगा, हमें लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता रहेगा। तो आइए सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं मन की बात का वो हिस्सा जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने नालंदा विश्वविद्यालय, शास्त्रार्थ की परंपरा और साथ ही आधुनिक भारत के जो बड़े बदलाव हैं उनका उल्लेख किया है।
3: साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए AI इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य गढ़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद, संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ, तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में BTech प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन

0: ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
1: तो साथियों, सुना आपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से नालंदा विश्वविद्यालय की सराहना की है, और आइए अब मैं आपका परिचय करवा रही हूँ हमारे विशेषज्ञों से, जिनके माध्यम से हम इस विषय के बारे में आज और जानेंगे। आज हमें समय दिया है, हमारे स्टूडियो में आए हैं माननीय कुलपति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली से प्रोफेसर श्रीनिवास वारखेड़ी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में।
2: नमस्कार।
1: हमारे साथ हैं श्री प्रेम शंकर शर्मा जी, आप जाने माने संस्कृत विद्वान हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता हैं, पूर्व में पीसीएस अधिकारी, अपर जिला अधिकारी के रूप में आप सेवानिवृत्त हुए हैं इलाहाबाद से। प्रेम शंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में।
2: धन्यवाद नीलम जी।
1: और हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील जोशी, आप सहायक आचार्य हैं संस्कृत विभाग हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद नीलम जी।
1: मैं सबसे पहले श्रीनिवास सर आपसे ये जानना चाहूंगी, प्रधानमंत्री जी के उद्गार हमने यहाँ पर सुने, उसमें ऐसे बहुत सारे शब्द आए हैं जो नए लगते हैं, लेकिन ये भी हमें पता है कि वो हमारी संस्कृति का ही हिस्सा रहे हैं और हमें लगातार वो प्रेरित करते रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने शास्त्रार्थ की जिस परंपरा का उल्लेख किया है, वो असल में क्या है?
2: नीलम जी, इस विषय में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं
1: जी,
2: जिन्होंने अपने मन की बात में हमारी पारंपरिक शास्त्र विरासत की एक बहुत बड़ा सराहना की उन्होंने
1: जी।
2: भारत देश में हमेशा संवाद के लिए बहुत बड़ा स्थान रहा है। शास्त्रार्थ यानी संवाद
1: जी,
2: वाद कथा इसको हम बोलते हैं। जब किसी विषय पर निर्णय करना हो, अनेक मत हो, उन सारे मतों को सामने रखते हुए एक मध्यस्थ को बीच में रख के शास्त्रार्थ करते हैं, अपने अपने मत को सब रखते हैं, उसके बाद जो संवाद के बाद जो निर्णय होता है वो मध्यस्थ उस निर्णय को बताते हैं। तो इस व्यवस्था को हमने शास्त्रार्थ नाम दिया है
1: जी।
2: हमारी परंपरा में इसको वाक्यार्थ भी बोलते हैं, वादार्थ भी बोलते हैं, और वाद कथा भी, संवाद भी, ये समानार्थक शब्द है। हमारी शास्त्रीय परंपरा में आज भी वो जीवित परंपरा है। आज भी व्याकरण, न्याय, मीमांसा, वेद भाष्य और द्वैताद्वैत विशिष्टाद्वैत की परंपरा में द्वैत और अद्वैत के अनेक विमतियों को निश्चय करने के लिए शास्त्रार्थ आज भी करते हैं
1: जी।
2: लेकिन ये परंपरा केवल एक पारंपरिक व्यवस्था का अंग रहा है। इसको पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस शास्त्रार्थ परंपरा को उज्जीवित करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय को सराहना की है। उसके द्वारा उन्होंने इस व्यवस्था को पूरे राष्ट्र का एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था का अंग के रूप में उन्होंने स्वागत किया है, इसलिए मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है
1: जी। डॉक्टर सुनील जोशी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बदलते दौर में बहुत सारी नई चीजें हम अपने आसपास लगातार घटित होते हुए देख रहे हैं, और युवाओं के जीवन का ये हिस्सा भी बनते जा रहे हैं, जैसे कि AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन साथ ही एक चुनौती ये भी है कि हम अगर अपने पांडुलिपियों की बात करते हैं, अगर हम अपने उपनिषदों, शास्त्रों और प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण की बात करें, अपने वेदों की बात करें, तो क्या आपको लगता है कि AI इसमें किसी तरह सहायक सिद्ध हो सकती है, या ये एक चुनौती है जो हमारे इन प्राचीन जो संपदा है इसका ह्रास करेगी?
3: जी नीलम जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया पांडुलिपि से संबंधित। देखिए, भारत की जो समृद्ध ज्ञान परंपरा है, जो हमारी बौद्धिक जो परंपरा है, उसका जो संरक्षण है वह तो पांडुलिपियों में संरक्षित है ही
1: जी।
3: हम जानते हैं कि जो पांडुलिपियां हैं केवल मात्र हाथ से लिखे हुए कोई पुराने दस्तावेज नहीं है, बल्कि भारतीय सभ्यता की अक्षुण जीवन स्मृति वो हैं, और उनको ताम्र पत्र पर, भोज पत्र पर, वस्त्रों पर लिखा गया है, और आज भी उनसे जो ज्ञान संपदा का जो विस्तार हो रहा है, निश्चित रूप से हम उसके द्वारा भावी पीढ़ियों को उस सुरक्षित ज्ञान के संवहन के लिए हम निरंतर प्रेरित कर रहे हैं। और जहां तक प्रश्न है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कि किस प्रकार से इस ज्ञान परंपरा को और अधिक दृढ़ भूमिका दे सकती है, तो मैं कहना चाहूंगा कि सबसे अच्छी बात यह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, कि जो प्राचीन पांडुलिपियां हैं जो कि धुंधली हैं या जो क्षतिग्रस्त हैं, उन पांडुलिपियों की उच्च गुणवत्ता वाली जो डिजिटल रिस्टोरेशन की जो बात है वो आसानी से हो सकती है, जिसमें AI जो है इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक के द्वारा उन पांडुलिपियों को डिसाइफर कर सकता है, और अनेक लिपियों में जैसे कि ब्राह्मी है, शारदा है, सिद्धम है या नंदीनाथ।

0: या द्रविडियन भाषाओं में या द्रविडियन लिपियों में जो लिखी गई पांडुलिपियां हैं उनको डिसाइफर करके स्वचालित पहचान के द्वारा एक डिजिटल पाठ तैयार कर सकता है, जिससे कि लाखों पृष्ठों का जो है डिजिटलाइज वर्जन हमारे सम्मुख उपस्थित हो सकता है। तो इस दृष्टि से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो निश्चित रूप से पांडुलिपियों के संरक्षण, कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन और कैटलॉगिंग के लिए बहुत सहायक हो सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता में जो ज्ञान भारतम जैसा एक मिशन जो स्थापित हुआ है, निश्चित रूप से उसमें अभी लाखों मैन्युस्क्रिप्ट्स देश भर से जो हैं संग्रहित हुई हैं, और जो विद्यार्थी संस्कृत पढ़ते हैं या जो भाषा विज्ञान पढ़ते हैं उन विद्यार्थियों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए एक अनुपम धरोहर है अनुसंधान के लिए। और इसी से देखिए हमारा नवाचार विस्तृत होगा और भारत की ज्ञान संपदा विश्व भर में प्रसारित होगी।
1: जी, तो इस तरह से AI सहायक है। जी,
0: निश्चित रूप से।
1: जी, मैं प्रेम शंकर जी आपसे अब जानना चाहूंगी, जब हम संस्कृत की बात करते हैं तो विद्यालयों में हम सबका जुड़ाव तो रहा ही है, आरंभिक चरण में, अपनी शिक्षा के आरंभिक चरण में हम सभी संस्कृत पढ़ते हैं। कुछ विद्यार्थी जो है वो आगे भी इसकी पढ़ाई जारी रखते हैं और कुछ सातवीं, आठवीं, नवीं कक्षा के बाद छोड़ देते हैं। आपसे जानना चाहूंगी, जब हम शास्त्रार्थ की बात करते हैं तो क्या ये केवल संस्कृत भाषा से जुड़ा है, और जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है इसमें क्या मूल अवधारणा रही है, जो प्राचीन साक्ष्य है, क्या इस बारे में कुछ मिलते हैं हमें?
2: असल में शास्त्रार्थ अपनी बहुत प्राचीन परंपरा का एक अंग रहा है हमारे।
1: जी,
2: जिसमें शास्त्र कहते हैं ऐसा ज्ञान जो कि प्रमाणित हो, जो कि ग्रंथों में, स्मृतियों में, पुराणों में जिनका उल्लेख मिलता हो, वो ज्ञान। उस ज्ञान के कहीं अगर विरोधाभास होते हैं तो उसके संबंध में लोग अपना शास्त्रार्थ के माध्यम से अपना व्याख्यान उसमें प्रस्तुत करते हैं। और जैसा कि कुलपति जी ने थोड़ी पूर्व में बताया था, उसके बाद जो सर्वोत्तम निष्कर्ष होता है, सर्वोत्तम मत जो होता है या तर्क संपन्न जो होता है, उस पर एक निर्णय हो जाता है। ये शास्त्रीय परंपरा हमारी, शास्त्रार्थ की परंपरा शास्त्रीय परंपरा ही है एक तरह से, जो कि प्राचीन काल से चली आ रही है। और बल्कि कहना चाहिए कि ये, मैं तो ये मानता हूं कि गांवों में जो पंचायत जो चला करती थी वो भी उस शास्त्रार्थ परंपरा का ही एक रूप है, क्योंकि उसमें अनेक लोग बैठते थे, कम से कम 5 तो बैठते ही थे। लेकिन पंचायत में 5 के अतिरिक्त ये नहीं था कि वो छठा व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। तो वो एक खुला मंच होता था गांव में भी, और अपनी अपनी बात रखते थे और सत्य के निर्णय पर सब एक मत होकर के पहुंच के उसको पूरा समाज उसको मान्यता देता था। तो ये बहुत प्राचीन परंपरा है, और जो आज भी हम लोकतंत्र के रूप में, प्रजातंत्र के रूप में, हम उसका आज भी पल्लवन और पुष्पन देख रहे हैं।
1: जी,
2: और ये शास्त्रार्थ सदैव जीवित रहेगा। और ये प्रधानमंत्री जी के जो मुख से निस्सृत हुआ है,
1: जी,
2: उसके आधार पर तो मैं समझता हूँ कि अब इसके विशेष रूप से ज्यादा बल दिए जाने की आवश्यकता है, जैसे कि उन्होंने अन्य विश्वविद्यालयों से इस संबंध में प्रार्थना की है कि वो भी AI और उसके माध्यम से, शास्त्रार्थ के माध्यम से, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय ने प्रयास किया है, उस तरह से अन्य विश्वविद्यालय भी उस तरह का अपना योगदान करें।
1: जी, यानी केवल भाषा से इसका संबंध नहीं है, शास्त्रार्थ का मतलब है किसी विषय के बारे में अपना मत रखना और जो सर्वोत्तम पद्धति है उसे स्वीकार करना।
2: जी,
1: मुझे याद आ रहा है कि जब हम कॉलेज में थे तब भी हमारे यहाँ अलग अलग अवसरों पर जब कॉम्पिटिशन्स होते थे, प्रतिस्पर्धाएं होती थी, तो डिबेट भी उसमें एक प्रतिस्पर्धा होती थी, और एक विषय के पक्ष में और विपक्ष में हम बोलते थे, फिर उसमें विजेता विद्यार्थी जो है उन्हें पुरस्कृत भी किया जाता था। तो अभी हमें समझ में आ रहा है कि शायद इसी परंपरा को पल्लवित किया जा रहा था।
3: लेकिन उसमें एक जोड़ना चाहता हूँ, भारत में शास्त्रार्थ व्यवस्था में एक पद्धति विकसित की गई है।
1: जी,
3: आज जो केवल डिबेट होता है उसमें केवल पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष के रूप में तो अपनापन रखते हैं।
1: जी,
3: ये युक्ति के आधार पर निर्णय हो सकता है, लेकिन हमारी परंपरा में शास्त्रार्थ कैसे करना है, कैसे प्रस्तुति रखनी है, जैसे आज के कोर्ट में, न्यायालय में कोई पद्धति है, उसी तरह का प्राचीन पद्धति है, उसको शास्त्रार्थ पद्धति बोलते हैं। उस पद्धति में यदि किसी के मत हराना है, उसको हराना नहीं माना जाता था, उस मत के ऊपर उनको आक्षेप जितना करना है, कैसे करना है, प्रमाण क्या देना है, युक्ति क्या देनी है, युक्ति का बल कितना है, प्रमाण का बल कितना है, ये सारा निर्णय का अंग होता था।
1: जी,
3: तो निर्णायक भी उसको ठीक से जानते थे, और जो पूर्व पक्ष के व्यक्ति, उत्तर पक्ष के व्यक्ति अपने मत को जब स्वीकार करते थे दूसरे मत को,
1: जी,
3: तो एक स्पर्धा नहीं थी,
1: जी,
3: ये सत्यान्वेषण का मार्ग था।
1: जी, यानी जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसकी

0: खोज सब मिलकर कर रहे हैं
1: जी।
0: और इसमें मतभेद हो सकता था, मन भेद नहीं था, व्यक्ति का सम्मान जो है वो बना रहता था जी। यहाँ सर मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगी, लेकिन उससे पहले आपकी पसंद का गाना मैं श्रोताओं को सुनवाना चाहती हूँ।
1: संस्कृत के गाने मुझे बहुत पसंद है
0: जी।
1: वैसे तो हिंदी के गाना भी सुनते हैं, लेकिन मेरे विश्वविद्यालय के गाने में एक जो पद्य है बहुत सुंदर पद्य है जो हमारे नवाचार को अपने आप में एक प्रतिबिंबित करता है। मुझे लगता है कि संस्कृत गानों को भी हमारे युवा लोग सुनना चाहिए। इस दृष्टि से एक इस गाने का इस भाग को मैं आपको उपहार के रूप में देना चाहता हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, हम ये अपने श्रोताओं को जरूर सुनवाएंगे।

0: इन मीठे से शब्दों के साथ ही जो गूढ़ अर्थ है इनका, उन्हें स्वीकार करने के साथ ही मैं एक बार फिर से आप सभी का पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में स्वागत करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं अपनी प्राचीन शास्त्रार्थ पद्धति की, और साथ ही जो नई तकनीक हमारी शिक्षा पद्धति में जुड़ी है उनकी बात भी हम कर रहे हैं। कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ हैं माननीय कुलपति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली से प्रोफेसर श्रीनिवास वारखेड़ी, हमारे साथ हैं श्री प्रेम शंकर शर्मा, आप जाने माने संस्कृत विद्वान हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता हैं, और हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील जोशी, आप सहायक आचार्य हैं हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के। अब सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया कि AI को हम अपना तो रहे हैं और हमारे युवा जो हैं उनका काम बहुत हद तक अब डिपेंड करता है AI पर, वो उसकी मदद लेते हैं अपने काम में, लेकिन एक ये चुनौती भी है कि हम अपनी क्रिएटिविटी ओरिजिनल थिंकिंग को कैसे बचाए रख सकें, तो इसमें हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या भूमिका निभा सकती है, हमारे विद्यालय क्या ऐसा कर सकते हैं, हमारा समाज ऐसा क्या कर सकता है कि हमारी रचनात्मकता जो है वो भी बची रहे और साथ ही नवाचार को लेकर हम आगे बढ़ें।
1: देखिए, मानव की इस यात्रा में जब नई नई टेक्नोलॉजी आते हैं उसमें हम प्रवेश करते हैं, हमेशा एक चैलेंज रहा है। जैसे हमारे हाथों से जो करते थे वो यंत्र बन गए, तो ये भी चैलेंज रहा है
0: जी।
1: और जब हम पादचरण के द्वारा यात्रा करते थे, वाहन आ गए हमारे, उसके बारे में भी चर्चा है। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी के साथ मानव यात्रा का हमेशा एक संघर्ष दिखता है, लेकिन वो संघर्ष नहीं है, मानव कौशलता का विकास का एक भाग है वो। हम टेक्नोलॉजी छोड़ भी नहीं सकते हैं और टेक्नोलॉजी के साथ संघर्ष भी नहीं कर सकते
0: जी।
1: तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि AI टेक्नोलॉजी में प्रवेश करने के बाद मानव अपने आप को दूसरे ढंग से अपना कौशल का विस्तार करेगा
0: जी,
1: बुद्धि का विस्तार करेगा। लगता है शुरुआत में ये हमारे लिए चैलेंज है, लेकिन जिसके साथ हम स्नेह करेंगे उसके साथ हम जीना भी सीखेंगे, साथ ही हम अपनापन को मानव ने कभी छोड़ा नहीं आज तक। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में AI हमारे साथ रहेगी। जैसे जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे आ गई, क्या आज भी मानव निर्मित सुंदर कलाकृतियों के बारे में कोई प्रश्न है क्या? डिजिटल टेक्नोलॉजी में उसका एक नयापन मिला है
0: जी।
1: आज डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कई चित्रकार अच्छे अच्छे नए चित्र दिखते हैं। अब टेक्नोलॉजी आया है साउंड का, अकोस्टिक का, उसके साथ अच्छे गाने भी आए हैं
0: जी।
1: और इसलिए मुझे लगता है कि कभी भी मानव का जो कलात्मकता है और प्रतिभा है उसके लिए सारी टेक्नोलॉजी हमारे लिए अनुकूल बनेंगे, कभी विरोधी नहीं बनेंगे
0: जी।
1: लेकिन एक जो है उसको सीखने का और उसके साथ जीने का मन करना होगा और उसका संयम के साथ उपयोग करना, क्योंकि मैं मानता हूँ AI टेक्नोलॉजी जैसे कि अभी हमारे सामने जो आया है बहुत ही पुराने टेक्नोलॉजियों से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मैं इसको ब्रह्म राक्षस मानता हूँ। यदि ब्रह्म राक्षस को आप अपने वश में रखे
0: जी,
1: बहुत ही काम करेगा वो आपके लिए।
0: हाँ।
1: लेकिन ब्रह्म राक्षस यदि आपका वश में नहीं है आपको खा जाएगा
0: जी।
1: तो सोचना पड़ेगा उसका उपयोग करने से पहले। तो इस दृष्टि से मुझे आज ये वरदान है
0: जी।
1: हम ऐसा युग में जी रहे हैं, पूरी दुनिया में किसी सभ्यता ने इसको देखा नहीं था। वंडरफुल
0: जी,
1: इसके साथ करना चाहिए।
0: और बहुत ही प्यारी बात आपने कही कि हम जिससे प्रेम करेंगे उसके साथ एक सामंजस्य भी होगा, उसके साथ हम जीना भी सीखेंगे और हमारी बुद्धि का विस्तार होगा इससे, अगर हम चाहें तो। यहाँ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी सर, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में BTech शुरू करने की पहल की है, तो आप शिक्षा व्यवस्था में इसे कितना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन मानते हैं, ऐसा क्यों किया गया है?
1: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको खासकर उल्लेख किया है, इसलिए नहीं है कि BTech भारत में पहली बार शुरू हो रहा है
0: जी।
1: BTech पाठ्यक्रम भारत में कई संस्थानों में है
0: जी,
1: लेकिन उसके पीछे रहा हुआ उद्देश्य के बारे में माननीय प्रधानमंत्री ने एक उल्लेख किया है
0: जी।
1: वो उल्लेख ये है कि तकनीकी व्यवस्था को हमारी भाषाओं के साथ, हमारी प्राचीन ज्ञान धरोहर के साथ जोड़ने का प्रयास, ये बहुत महत्वपूर्ण है
0: जी।
1: BTech AI

0: AI और डेटा साइंस ये पाठ्यक्रम ही क्रांतिकारी नहीं है अपने आप में, लेकिन AI टेक्नोलॉजी को हमारे प्राचीन ज्ञान परंपरा के साथ, भारतीय भाषाओं के साथ, संस्कृत के साथ जोड़ने का प्रयास पहली बार हो रहा है
1: जी।
0: ये कार्य कोई IIT नहीं कर रहा है, एक संस्कृत विश्वविद्यालय कर रहा है। पहली बार संस्कृत विश्वविद्यालय अपने पारंपरिक क्षेत्र से बाहर एक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का प्रयास, साथ ही भारतीय भाषाओं के साथ टेक्नोलॉजी को जोड़ने का प्रयास जो कर रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस उद्देश्य को देखा है
1: जी।
0: मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, इस विशेषता को आपने देखा और उल्लेख किया, मन की बात के द्वारा पूरे दुनिया को इस विषय को पहुंचा दिया
1: जी।
0: ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, बार बार माननीय प्रधानमंत्री उसको उल्लेख करते हैं, संस्कृत केवल भाषा मात्र नहीं है, एक ज्ञान की धारा है, उसको जीवन के सभी अंगों में सभी डिसिप्लिन के साथ जोड़ने का आवश्यकता है, उसको मानते हुए उसमें हमने एक प्रयास किया है, हमने आधुनिक तंत्र ज्ञान के साथ जोड़ा है इस कार्यक्रम के द्वारा, भारतीय विधि शास्त्र के साथ जोड़ा है, आयुर्वेद के साथ जोड़ा है और सिविल सर्विस स्टडीज के साथ जोड़ा है। तो कुल मिलाकर भारत के जितने भी हमारे विभिन्न क्षेत्र है उन क्षेत्रों में संस्कृत को जोड़ने का प्रयास केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कर रहा है, उस दिशा में ये भी एक प्रयास है बीटेक कार्यक्रम, जिसमें AI टेक्नोलॉजी को केवल संस्कृत नहीं सभी भारतीय भाषाओं के माध्यम में हम जोड़ना चाहते हैं। इसमें दोनों तरह के छात्रों को भाग लेना होगा, जिसमें संस्कृत और भारतीय भाषा जानते हो, साथ में टेक्नोलॉजी जानते हो। आने वाले दिनों में लार्ज लैंग्वेज मॉडल, वो संस्कृत और भारतीय भाषा आश्रित लार्ज लैंग्वेज मॉडल होंगे
1: जी।
0: उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स तैयार करने का बहुत बड़ा एक उद्यम हम जो शुरू कर रहे हैं, उसके लिए पूरे शिक्षा मंत्रालय का समर्थन है, पूरे भारत सरकार का समर्थन है, माननीय प्रधानमंत्री जी का समर्थन है, और आपके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने इसको आगे बढ़ाया है
1: जी। तो ये आने वाले कल की तैयारी है जी। डॉक्टर सुनील जोशी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम दीक्षांत समारोह अक्सर सुनते हैं और ऐसा लगता है कि ये विद्यालय विश्वविद्यालयों में अब केवल डिग्री वितरण समारोह है। मैं आपसे हमारी शिक्षा परंपरा, भारतीय शिक्षा परंपरा में दीक्षांत समारोह का वास्तविक स्वरूप क्या था, इसका महत्व क्या है, ये जानना चाहूंगी।
2: बहुत अच्छा प्रश्न किया नीलम जी आपने। देखिए, भारतीय ज्ञान परंपरा में जो कि इतनी समृद्ध है, विशाल है, विराट है, उसमें उपनिषद कहते हैं सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात विद्या वही है जो मनुष्य को अज्ञान से, भय से, अहंकार से और संकीर्णताओं से मुक्त करे
1: जी।
2: तो इसी की जो प्रबल भावना है वह हमारे दीक्षांत में हमें प्रकट होती है, क्योंकि भारतीय शिक्षण पद्धति में जो दीक्षांत समारोह है वह केवल शिक्षा समाप्ति का कोई विशेष उत्सव नहीं है, बल्कि जीवन के प्रति नए दायित्वों के अध्यायों का एक शुभारंभ है
1: जी।
2: इसीलिए हमारे गुरुकुलों में अध्ययन की समाप्ति नहीं होती है, बल्कि दीक्षा के पूर्ण होने से जो विद्यार्थियों में ज्ञान, चरित्र, अनुशासन, सेवा और जो लोक मंगल के जो संस्कार हैं उनका प्रतिष्ठापन किया जाता है। तो अब जैसे कि हम जानते हैं कि प्राचीन भारत में जब विद्यार्थी गुरुकुलों में पढ़ते हैं तो वो वेद सहित, चतुर्वेद सहित षडंग की वो विद्या को प्राप्त करते हैं, दर्शन शास्त्र में प्रवीण होते हैं, राजनीति हो चाहे शिल्प शास्त्र उसमें प्रवीण होते हैं, और इन सभी परीक्षाओं में सफल होने के उपरांत वे समाज में जो प्रवेश करने की जो अनुमति है उसको गुरु से प्राप्त करते हैं, यानी कि ब्रह्मचर्य आश्रम के उपरांत वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, तो आश्रम प्रवेश की भी अनुमति इसमें मिलती है। और विशेष रूप से दीक्षांत समारोह के संदर्भ में जब ये आयोजन किया जाता है समावर्तन संस्कार के उपरांत, तो तैतरीय उपनिषद की जो शिक्षावल्ली है वहां पर गुरु जो हैं उस शिष्य को बहुत सुंदर उपदेश देते हैं, सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायान मा प्रमद, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तो आप देखिए कि जो हमारे देश की इतनी विस्तृत और इतनी समग्र शिक्षा विकास की जो पद्धति रही है उसमें इतने सुंदर जो औपनिषदिक वचन है, जो वैदिक वचन है, वो किस प्रकार से हमारे राष्ट्र को कितना संगठित करते हैं और हमें कितनी सामाजिक संरचना को कितना अधिक वो सामंजस्यपूर्ण या समरसतापूर्ण युक्त बनाते हैं। और मेरा मानना है कि जो भारतीय जो दीक्षांत की जो दृष्टि है उसमें शिक्षा का लक्ष्य केवल इन्फॉर्मेशन नहीं

0: देना है बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन करना है,
1: जी
0: यानी कि व्यक्तित्व परिवर्तन करना, और एक ऐसा व्यक्तित्व जिससे कि वह व्यक्ति भी ऋषि, परमर्षि, महर्षि, देवर्षि, राजर्षि की कोटि में अपने आप को रखे। तो ये एक आदर्श युक्त जीवन शैली जो हमें शिक्षा से मिलती है, उसी
1: जी
0: की ये एक मूल भावना हमें दीक्षांत समारोह के अवसर पर देखने को मिलती है। जो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति है NEP 2020, उसमें भी इसी भारतीय दृष्टिकोण को पुनर्स्थापित करने का जो प्रयास है, उससे राष्ट्र निर्माण का और जीवन को जीने का एक महत्वपूर्ण जो है वो अवसर है।
1: जी महत्वपूर्ण अवसर है, और इसीलिए शायद इसमें दीक्षा शब्द जुड़ा है
0: जी
1: शिक्षा की बजाय,
0: जी
1: क्योंकि दीक्षा का अंत नहीं होता है। आप जितना गुरु का अनुसरण करते जाएंगे वो दीक्षा और गहरी होती जाएगी।
0: जी
1: जी बहुत अच्छा आपने इसका विवेचन किया है यहाँ पर। मैं प्रेमशंकर जी आपसे ये
0: जी
1: जानना चाहूंगी, प्रधानमंत्री जी ने और भी इसमें कई शब्द बोले हैं। प्रधानमंत्री जी ने पुरुष सूक्तम का जिक्र
0: जी
1: किया है, श्री सूक्तम है, श्री रुद्रम है, दुर्गा सूक्तम है। मैं आपसे ये अनुरोध करूंगी कि थोड़ा विस्तार से आप हमें ये समझाएं।
2: धन्यवाद नीलम जी। प्रधानमंत्री जी ने जो सूक्तम का जो उल्लेख किया है,
1: जी
2: वो हमारी प्राचीन जो वैदिक संपत्ति है,
1: जी
2: जो वेद हैं हमारे, जो मंत्र हैं, उनका उल्लेख करके, क्योंकि वही सूक्त हैं। सूक्त का अर्थ है जो उत्तम बात कही गई हो, वो है सूक्त।
1: जी
2: ये हमारा जो प्राचीन ज्ञान है वो किस कारण से, देखिए, एक तो है वेद जिनको श्रुति कहा जाता है,
1: जी
2: वो कहीं लिखे नहीं गए थे, वो केवल स्मृति के आधार पर सुन सुन करके लोगों ने याद किए थे, वो किसी के द्वारा रचे नहीं गए थे, इसीलिए वो, और वो सब के सब क्या हैं, वो मंत्र हैं।
1: जी
2: और मंत्र क्या है, वो मंत्र हैं, वो छंद हैं, क्योंकि छंद भी जो है वेदों का एक अंग है। छंदा पादौ तु वेदस्य,
1: जी
2: छंद जो है वेद का जो है वो चरण है, उनके बिना ज्ञान नहीं चल सकता, इसीलिए ये छंद। और ये आश्चर्य की बात है कि हमारे वेद सबको मंत्र याद रहे, उसका कारण ही ये है कि वो छंदोबद्ध थे, छंदों में थे, और वो छंदों को याद रखना आसान होता है, और गद्य का याद, इसीलिए आप हमारे हिंदी के गीत जो हैं, चूंकि वो छंदोबद्ध हैं,
1: जी
2: इसलिए वो सबको हृदयंगम भी हो जाते हैं और सबको पसंद भी आते हैं, और इसीलिए इतना पुराना हमारा जो ये ज्ञान है, वैदिक ज्ञान है, वो छंदोबद्ध होने के कारण ये आज तक हमें प्राप्त होता है। इनमें से ही ये मंत्र हैं
1: जी
2: जिनको कि श्री सूक्तम कहा गया है। ये श्री सूक्तम, ये श्री कहा गया लक्ष्मी जी के लिए, और पुरुष सूक्तम कहा गया नारायण, यानी लक्ष्मी और नारायण।
1: जी
2: तो हमारे यहाँ तीन देव की कल्पना की गई है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश।
1: जी
2: तो ये तीन जो वो हैं, तो तीन बिना शक्ति के कुछ नहीं कर सकता, तो इनके ये शक्ति रखते हैं, इनके साथ शक्ति जुड़ी हुई है, तो नारायण के साथ लक्ष्मी जी की शक्ति जुड़ी हुई है, क्योंकि ये कहा भी गया तीनों परमात्मा एक ही है, लेकिन वो तीन रूपों में कार्य करता है। तो वो कैसे, रजो जुषे जन्मने सत्वव्रतये सितौ प्रजानाम प्रलये तमस्प्रसे अजाय सर्ग स्थित नाश हेतवे त्रयी मयाय त्रिगुणात्मने नमः।
1: जी
2: यानी परमात्मा जो है त्रिगुण स्वरूप है, उसमें तीनों शक्तियां हैं, यानी जन्म सृष्टि करने की और पालन करने की और संहार करने की, वो शक्ति संपन्न होने के कारण ये सब करता है।
1: जी
2: तो ये श्री सूक्तम जो लक्ष्मी जी का सूत्र है, और पुरुष सूक्तम जो है नारायण के सूत्र हैं, तो ये जो हैं ये प्रार्थना और स्तुतियों में प्रयुक्त किए जाते हैं। ऐसे
1: जी
2: ही रुद्र भगवान के जो हैं, वो रुद्र सूक्तम है, देवी जो सूक्तम है वो
1: जी
2: देवी महात्म्य है।
1: जी
2: तो इस तरह से ये, चूंकि मंत्र होने के कारण ये पठनीय हो रहते हैं और श्रवणीय भी रहते हैं और याद भी रहते हैं
1: जी
2: और ये फल भी देते हैं।
1: जी तो स्तुति का माध्यम है ये।
2: हाँ, स्तुति के माध्यम है, क्योंकि मंत्र हमारे जो वेद मंत्र हैं, ये सब परमात्मा की स्तुति के, प्रार्थना ही ज्यादातर वेदों का मुख्य अंग रही है, और मंत्रों का प्रमुख अंग प्रार्थना ही रही है, स्तुति ही रही है।
1: जी यानी हम आम भाषा में समझ सकते हैं कि पुरुष सूक्तम जो है वो विष्णु जी की आराधना का एक
2: हाँ,
1: माध्यम है, श्री सूक्तम लक्ष्मी जी की जी, और श्री रुद्रम जैसा कि नाम से ही
2: हाँ,
1: प्रकट होता है
2: जी,
1: शिव जी को समर्पित है, और दुर्गा सूक्तम ये हम देवी
2: दुर्गा
1: की
2: पार्वती
1: आराधना
2: जी का स्वरूप
1: जी
2: है। जी
1: जी बहुत अच्छे से आपने हमें बताया। मैं श्रीनिवास सर आपसे ये जानना चाहूंगी, अब हम अक्सर सुनते हैं वसुधैव कुटुंबकम, और ये कहा जाता है कि भारतीय ज्ञान पद्धति भी और हमारी जो प्राचीन संस्कृति है वो भी विश्व को हमेशा ही अपनी ओर आकर्षित करती रही है, और हम वैश्विक जो पद्धतियां हैं उन्हें समाहित भी करते रहे हैं अपनी संस्कृतियों में, और कुछ ना कुछ ऐसा है कि दुनिया हमें आश्चर्य

0: से भी देखती है लेकिन प्रशंसा से भी देखती है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भारतीय संस्कृति में ऐसा कौन सा वैश्विक आकर्षण है कि भाषा, भौगोलिक दूरी और सांस्कृतिक भिन्नताओं की सीमाओं को भी सहजता से पार कर जाता है। क्यों दुनिया हमारी प्राचीन संस्कृति को इतना मानती है कि हमारी भाषा जो है वो आज विदेशों में पढ़ाई जा रही है, बहुत सारे देश हैं संस्कृत वहाँ पर एक विषय है, वहाँ के बच्चे पढ़ते हैं और हमारी संस्कृति के बहुत सारे हिस्से, हमारे जीवन यापन के दिनचर्या की बहुत सारी जो पद्धतियाँ हैं वो भी उनके जीवन यापन का हिस्सा है।
1: नीलम जी, एक बहुत गहरा प्रश्न है ये
0: जी।
1: इसमें जैसे आपने कहा भारतीय संस्कृति और सभ्यता एक आकर्षण का केंद्र रहा है, दुनिया में भारत की सभ्यता का विशेषता क्या है? वो यह है कि प्रकृति के साथ हमारा जीवन है, प्रकृति से दूर नहीं है हम, प्रकृति से विरुद्ध नहीं भी नहीं गए। दूसरी बात, विश्व कल्याण के लिए सोचा गया है, भाव शुद्धि भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा अंग रहा है। विश्व कल्याण प्रार्थना के साथ विश्व शांति के लिए, देखिए आज भी भारत किसी देश के विरोध में कभी भी आक्रमण नहीं किया है
0: जी,
1: यह इतिहास का भाग रहा है। इतिहास में भारत के ऊपर आक्रमण हुआ है लेकिन भारत ने किसी देश के विरुद्ध में आक्रमण नहीं किया है। हमने हमेशा ये सोचा है कि पूरे वसुधैव भी हमारा कुटुंब है, परिवार में हम आक्रमण नहीं करते हैं, परिवार के प्रति हम एक बंधुत्व भाव रखते हैं। इस स्नेह भाव से हमने जिया है, प्रकृति के साथ जिया है, पूरे विश्व के सभी के साथ सोदर भाव से जिया है, मित्रता के साथ जिया है और सभी के अच्छाइयों को हमने स्वागत किया है। आनो भद्रा कर्तव्यंतु विश्वतः, दुनिया के सभी जगह से सभी दिशाओं से हम अच्छे विचारों को आचारों को स्वागत किया है, हमने हमेशा सीखा है
0: जी।
1: इसलिए दुनिया हमसे अपेक्षा करती है कि हमारे जीवन पद्धति को दुनिया ने भारतीय सभ्यता को एक आदर्श मानकर अपने आप ये विश्व गुरुत्व दिया है। मुझे लगता है कि यही विशेषताएं हैं भारत की सभ्यता का विशेषताएं हैं। हमारी संस्कृति अलग नहीं है, हमारे जीवन से अलग नहीं, हमारे जीवन ही एक सांस्कृतिक जीवन है
0: जी।
1: संस्कृति यानी प्रकृति से दूर जब होता है तो संस्कृति नहीं होती है, वो विकृति हो जाती है। आज भी भारतीय जीवन पद्धति यदि देखेंगे वो प्रकृति के साथ जुड़ा है। हमने भी कई देशों से कई विदेशों से आचरण व्यवहार को लिया है लेकिन आज भी हमारा 3000 साल के बाद भी हमारी सभ्यता का जो अनेक शुद्ध आचरण बचते हैं इसका कारण है हमने उससे बहुत दूर नहीं गए। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी कारण है, कभी भी हम रिजिड नहीं रहे हैं, हम किसी मत पर, हमारा मत नहीं है, हम एक जीवन का धर्म लिया है। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि संस्कृति का और एक भाग है संस्कृत। हमने ये भी माना है कि हमारी भाषा के द्वारा हम संस्कृति हमने रिटेन किया है
0: जी।
1: भाषा लुप्त, देखिए आज हमारी इतनी भाषाएं हैं लेकिन भारत एक रहा है। यूरोप में भाषाएं बदली है, संस्कृतियां बदली है, देश भी बदले हैं लेकिन भारत में इतनी भाषाओं के बावजूद, इतने आचरण के बावजूद, इतने मतों के बावजूद भारत एक रहा है। कारण क्योंकि यहाँ एक संस्कृति और एक विशुद्ध विचार जो विश्व कल्याण के हो, विश्व शांति के हो, तो यही बहुत बड़ी भूमिका निभाती है
0: जी। और हम बहुत ही गर्व के साथ ये बात कहते हैं कि हमारी ये संस्कृति है जो सबसे पहले विश्व शांति की कामना करती है और हम वो संस्कृति हैं जहाँ हमारे श्लोक जो हैं, हमारे वेद पुराण हमें वनस्पति और पूर्ण ब्रह्मांड की शांति की कामना करना भी सिखाते हैं, हमारी प्रार्थनाओं में ये शामिल है। तो बहुत अच्छे से आपने कहा कि हमारी जो संस्कृति है ये इसीलिए आकर्षक है क्योंकि इसमें सहज प्रवाह है और साथ ही विश्व शांति, विश्व कल्याण की कामना है जी। यहाँ पर डॉक्टर सुनील जोशी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन जो रहा और मन की बात का जो हिस्सा हमने सुना उसमें एक शब्द आया, ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। मैं चाहूंगी कि आप इसके बारे में हमें विस्तार से बताएं।
2: जी निश्चित रूप से नीलम जी, प्रधानमंत्री जी ने जो ब्रह्म कमल डोमिनिकाना के विषय में बात की है वह स्पेनिश बोलने वाले लोगों का एक समूह है जो कि रिपब्लिकन डोमिनिकाना में है
0: जी।
2: और विशेष रूप से ये स्पेनिश बोलते हैं और ये भारतीय संस्कृति से इतने अधिक अभिभूत हैं और इतने अधिक इन्होंने श्रद्धा दिखाई है भारतीय संस्कृति के प्रति जो कि हम सभी के लिए अत्यंत प्रसन्नता और गौरव का विषय है। और देखिए इसी कारण से भारतीय आध्यात्मिक परंपरा जो है वो आज भी हमें जीवंत दिखाई देती है विदेशों में। और इस प्रकार जब एक ये छोटा सा दल जो कि ब्रह्म कमल डोमिनिकाना के नाम से है तो उन्होंने हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो संपूर्ण मानवता की जो साझा विरासत है, उसको बहुत सुंदर प्रकार से पूरे विश्व में प्रख्यापित करने का एक महनीय कार्य

0: किया है। और इनके संदर्भ में एक विशेष बात यह है कि ये जो हमारी प्राचीन शास्त्र हैं, उन शास्त्रों का ये जो है अनुसरण करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं और शुद्ध मंत्रोच्चारण करते हैं, और मंत्र भी वैदिक मंत्रों का ये पाठ करते हैं। और विशेष रूप से दुर्गा सूक्तम और देवी महात्म्य जैसे देवी स्तुति परक मंत्रों का ये पाठ करते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारत से दूर जो देश हैं जहां पर भारतीय संस्कृति बहुत देर में गई, लेकिन यहाँ के लोगों ने अत्यंत ही भारत के प्रति सम्मान रखते हुए और भारत की सांस्कृतिक धरोहर को साझा विरासत के रूप में मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का जो उन्होंने एक परिचय दिया है, निश्चित रूप से वो सीमाओं से परे जाकर भी भारत को विश्व में जोड़ने की जो एक अद्भुत क्षमता दिखाई है उसके लिए ये बहुत साधुवाद के पात्र हैं। और मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि ये वस्तुतः भारतीय जो कथाएं हैं जो कि मंत्रात्मक हैं, जो कि पौराणिक हैं, उनको मात्र ऐतिहासिक या पौराणिक संदर्भ में नहीं देखते हैं, बल्कि वो इसको एक जीवंत भारतीय दर्शन के रूप में अपनाते हैं। जैसे कि दुर्गा सूक्तम जो कि हम जानते हैं कि बहुत ही प्रसिद्ध है और मार्कंडेय पुराण का एक अंग है और तैत्तिरीय आरण्यक में भी यह प्राप्त होता है, वहां पर विशेष रूप से ये बात उपस्थित होती है कि ये जो वास्तविक जो शत्रु हैं वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और हिंसा हैं। ये अज्ञानात्मक नकारात्मक जो प्रवृत्तियां हैं इन्हीं को ही हमें इन सूक्तों के माध्यम से जो है समाप्त करना है और अपनी बाह्य जो है जगत में अपनी आंतरिक चेतना को प्रबल बनाना है और इन शत्रुओं पर जो है हमें विजय प्राप्त करते हुए देवी की स्तुति के माध्यम से विवेक है, साहस है, करुणा है, आत्मबल है, धर्म की स्थापना करनी है। और इसी कारण से हम देखिए पूरे विश्व में ये कहने के लिए तत्पर होते हैं कि भारत जो है वो विश्व गुरु है, आध्यात्मिक संदेश देने वाला एक देश है और शक्ति की उपासना करने वाला एक देश है। तो प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो समय समय पर इस प्रकार के देश दुनिया में हो रहे भारतीय संस्कृति के प्रति कार्यों से हम सभी को अवगत कराते हैं
1: जी।
0: और निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति में जो देव उपासना है, देवी उपासना है, प्रकृति उपासना है, उसका परिचय हम सभी को विश्व भर में मिलता है
1: जी। और अगर हम देखें तो हमारी दिनचर्या का हिस्सा वो रहा है, हमने घर परिवार में इस तरह की चीजें देखी हैं, ऐसी परंपराएं देखी हैं, हमारे पर्वों पर हम वृक्ष पूजन करते हैं, हमारे किसी ना किसी त्योहार से एक वृक्ष जुड़ा है, कभी वहां हमें दिया जलाना है, कभी जल अर्पित करना है, और प्राकृतिक उपादान जो हैं, चंद्र की पूजा हो रही है, सूर्य देव की पूजा हो रही है, तो शायद ये भी हमें प्रकृति के प्रति आभारी बनाए रखने, कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। और इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जिसे हम आधुनिकता कहते हैं, इसमें हम ये चीजें कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद है कि वो हमें बार बार प्रेरित करते हैं कि हम ये परंपराएं जो हैं वो अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखें। मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, हम जब जिक्र करते हैं आधुनिकता का और हमारे युवाओं के पास अगर हम देखें तो एक सर ने कहा कि ब्रह्म राक्षस है हमारे पास में, कि बहुत सारी तकनीक है और ग्लोबल सिटीजन अब हम अपने आप को कहते हैं, हमारे पास तकनीक के माध्यम से सूचनाएं बहुत जल्दी पहुंचती हैं और बहुत सारे विकल्प भी हैं आगे बढ़ने के। ऐसे में आपको क्या लगता है कि हमारे युवा कैसे हम उन्हें अपनी परंपराओं से जोड़े रख सकते हैं, कैसे हम उन्हें आधुनिक शिक्षा पद्धति की जानकारी तो दें, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे विदेशों में भी जाकर पढ़ाई करें, वहां नौकरियां भी करें, हम चाहते हैं कि वो हमारी जीडीपी में एक अच्छी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, वो हमें फॉरेन करेंसी भी जो है वो देश में भेजें, लेकिन इन सब के साथ कैसे हम अपने बच्चों को अपने पर्वों का महत्व समझाएं, अपनी सनातन संस्कृति जो है उसकी वैज्ञानिकता हम समझाएं। आप संस्कृत के विद्वान हैं लेकिन विज्ञान के आप स्टूडेंट रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी।
2: नीलम जी, बहुत अच्छा आपने इसके बारे में प्रश्न किया है। इसका मूल कारण ये है कि हमारे युवाओं को, आजकल के विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा से अवश्य जोड़ना होगा, क्योंकि ज्ञान का जो सर्वोत्तम पक्ष है वो संस्कृत में मौजूद है। संस्कृत ही हमारे जीवन को उस ब्रह्म तक पहुंचाने का एक साधन बनाती है। जैसे कि ईशावास्य उपनिषद में कहा गया है कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मागृध कश्चित् ब्रह्म। इस भारत देश के उपनिषदकार ने ही ये सबसे पहले कहा कि दूसरे की चीज को देख करके लालच मत करो, तो दूसरे की प्रगति को देख करके लालच मत करो, है ना। और ये भी तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा, यानी जो हमारे पास जो बैठा हुआ है उसका भी ध्यान रखो कि उसके लिए भी त्याग।

0: त्याग के साथ साथ आप भोग करो, मतलब त्याग भी करो। तो त्याग हमारे संस्कृति में बहुत, त्याग का बहुत महत्व रहा है, त्याग और तपस्या का। अगर इन चीजों से जुड़ना है तो संस्कृत को अपनाना होगा, क्योंकि ये सारे अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम, ये तो संस्कृति सिखाती है और कोई भाषा तो ये सिखाती नहीं है। तो अगर इसीलिए विश्व भी आज संस्कृत की शरण में जा रहा है, योग की शरण में जाता है। योग, योग क्या है? ये एक दर्शन है, षट दर्शनों में से एक दर्शन है। तो हमारे ये दर्शन क्या है? ये छह दर्शन जो है ये सूक्त रूप में ज्ञान का एक माध्यम है
1: जी।
0: सूत्र दिए हुए, सूक्त दिए हुए, उनके माध्यम से योग दर्शन में कैसे हम ब्रह्म को प्राप्त करें वो पूरा साधन दिया हुआ है। तो ज्ञान को प्राप्त करने का, ज्ञान का सदुपयोग करने का, ये हमारा संस्कृत सिखाती है, हमारी भाषा सिखाती है, हमारा साहित्य सिखाता है। तो इससे संस्कृत से हम जुड़े रहेंगे। और संस्कृत में एक खूबी बहुत बड़ी है
1: जी,
0: कि ये संसार की ऐसी भाषा है संस्कृत जो कि सबसे अधिक वैज्ञानिक है, सबसे शुद्ध और उत्कृष्ट इसका व्याकरण है
1: जी,
0: और सर्वोत्तम इसकी लिपि है। और जो आप लिख रहे हैं वही आप पढ़ते हैं, उच्चारण भी बिल्कुल वही है, जैसे कोई भी एक नुक्ता भी इसमें व्यर्थ का नहीं होता है
1: जी।
0: अगर उसे हटा देंगे तो अर्थ बदल जाएगा। तो ये वास्तव में पूरी तरह से वैज्ञानिक और ईश्वर प्रदत्त कहना चाहिए ये भाषा है संस्कृत
1: जी।
0: तो संस्कृत से अगर हम जुड़े रहेंगे तो हमारे भविष्य देश का और संसार का भी, संसार को भी जोड़ना पड़ेगा, संसार भी जुड़ रहा है, क्योंकि वो ज्ञान जो मानवता का जो ज्ञान है
1: जी,
0: वो पशुत्व से ऊपर उठने का ज्ञान है जिसमें मानव बन सके और देव बन सके
1: जी,
0: तो बिना संस्कृत के वो संभव नहीं है
1: जी।
0: क्योंकि वो हमारे उपनिषदों में और वेद मंत्रों में भी व्याख्यात है, और कहीं किसी पुस्तक को आप ढूंढ लीजिए कहीं वो चीज आपको नहीं मिलेगी
1: जी। यानी संस्कृत केवल एक भाषा नहीं है, चरित्र निर्माण का एक माध्यम है, और सांस्कृतिक जागरण जो है उसका एक सूत्र हम कह सकते हैं जी। प्रोफेसर श्रीनिवास, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी, हम जब सांस्कृतिक जागरण की बात कर रहे हैं और हमारे सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य है 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का, जिसमें हर नागरिक को एक भूमिका निभानी है, ऐसे में हमारे विश्वविद्यालय शिक्षा पद्धति के रूप में क्या भूमिका निभा सकते हैं, वो कैसे सहयोग कर सकते हैं इसमें?
2: देखिए नीलम जी, विकसित भारत का निर्माण केवल एक अंग के विकास से नहीं होगा
1: जी,
2: उसमें बौद्धिक विकास भी है, उसमें आर्थिक विकास भी है, उसमें व्यक्तित्व विकसन भी है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें अभी आज की शिक्षा एक एकांग या एक मुखी विकास का बात करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो विकसित भारत की बात कर रहे हैं
1: जी,
2: वो संपूर्ण विकसित भारत का है। उसमें केवल शिक्षा से एक जॉब, जॉब से अर्थ, अर्थ से जीवन, ये नहीं है
1: जी।
2: सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः। हमने एक मिसिंग पॉइंट आज के शिक्षा में हुई है, सुख का मूल क्या है? लोगों से पूछेंगे तो बताएंगे अर्थ है, मनी है। मनी के मूल क्या है? जॉब है। जॉब के लिए क्या करना है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। एग्जाम के क्या करना है? तैयारी करनी है
1: जी।
2: तो हमारी शिक्षा क्या हो गई है? जॉब के लिए तैयारी करनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के द्वारा जॉब करना है, जॉब से अर्थ मिलेगा, अर्थ से सुख मिलेगा। यहाँ बहुत सारे मिसिंग लिंक्स हैं। उसमें महत्वपूर्ण यह है कि कौटिल्य यह कहता है कि सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः। सुख का मूल धर्म है। समाज में धर्म जब रहेगा तभी सुख मिलता है, सबके लिए सुख मिलेगा, स्वार्थ नहीं है
1: जी,
2: सबके लिए सुख। उसके बाद धर्म का मूल अर्थ है। अर्थ चाहिए, लेकिन केवल अर्थ से सुख नहीं मिलेगा, धर्म के द्वारा ही मिलेगा
1: जी।
2: तो आज दुनिया में ये मिसिंग लिंक को भारत को सिखाना है। इसका मतलब है विकसित भारत केवल अर्थ से विकसित भारत नहीं होगा, संसाधनों से विकसित भारत नहीं होगा, आध्यात्मिक समृद्ध और संपूर्ण भारत आत्मनिर्भर जब होगा तभी विकसित भारत होगा। तो इसमें आत्मनिर्भरता भी है, समृद्धि भी है और आध्यात्मिकता भी है
1: जी।
2: तो हमारी शिक्षा व्यवस्था में इस तीनों का समावेश होना चाहिए। हम केवल ज्ञान की बात करते हैं और सीधा अर्थ से व्यवस्था से जुड़ते हैं, नहीं। आज हमें आध्यात्मिकता को, हमारी भारतीय विरासत, भारतीय परंपरा के द्वारा आत्मनिर्भरता को भी सिखाना है
1: जी।
2: तो विश्वविद्यालयों का ये दायित्व तो है, तंत्र ज्ञान मात्र नहीं, साइंस मात्र नहीं, अपितु आध्यात्मिकता और भारतीय विद्या के आधार पर, भारतीय ज्ञान परंपरा के आधारित ज्ञान व्यवस्था, तद्वारा अर्थव्यवस्था
1: जी।
2: तो नॉलेज इकोनॉमी जब बोलते हैं, केवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इकोनॉमी नहीं है वो
1: जी।
2: वो आध्यात्मिकता के साथ, धर्म के साथ और साथ ही हमारे

0: हमारे नागरिक दायित्व के साथ हम जब भारतीय ज्ञान परंपरा को जोड़कर जब आत्मनिर्भर व्यवस्था निर्माण करेंगे तभी विकसित भारत होगा।
1: जी
0: तो ये सारे दायित्व शिक्षा पर है। शिक्षा यानी शिक्षा संस्थान, शिक्षा संस्थान यानी शिक्षक,
1: जी
0: चाहे वो प्राथमिक शिक्षक हो चाहे वो उच्च शिक्षा का शिक्षक हो संशोधक हो, सबका दायित्व शिक्षक पर है, शिक्षा संस्थानों पर है। हमारा दायित्व निभाने के लिए आज के नई भारत के विकसित भारत के लिए जो शिक्षा नीति बनाई गई है उसको सम्यक रूप से समीचीन व्यवस्था के साथ हम यदि उसका अनुष्ठान करेंगे तब विकसित भारत की ओर बढ़ेंगे। इसमें टेक्नोलॉजी भी होगा, भारतीय ज्ञान परंपरा भी होगी।
1: जी, यानी सब कुछ साथ लेकर हमें बढ़ना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो वो किसी एक क्षेत्र या एक अंग का विकास नहीं है, वो सर्वांगीण विकास है देश का, और इसमें हमारी शिक्षा पद्धति बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, और साथ ही हमारे युवा भी, हमारे छात्र भी। और प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा है कि विदेशों में जो भारतीय बसते हैं वो भी, और जिन विदेशियों के हृदय में भारत बसता है वो भी भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आज पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में हमने बात की नालंदा विश्वविद्यालय की एक बहुत अच्छी पहल की, और साथ ही आधुनिक शिक्षा पद्धति में हो रहे बदलावों की, आधुनिक चुनौतियों की, लेकिन उनके साथ ही समाधानों की भी हमने बात की। इस कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ थे जिनके माध्यम से हमने विषयों को और गहराई से समझा है। प्रोफेसर श्रीनिवास वारखेड़ी, आप माननीय कुलपति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली से, सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए, इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए।
0: धन्यवाद।
1: हमारे साथ इस कार्यक्रम में श्री प्रेम शंकर शर्मा रहे, जाने माने संस्कृत विद्वान, आप साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता, पूर्व में PCS अधिकारी, अपर जिला अधिकारी के रूप में आप इलाहाबाद से सेवानिवृत्त हुए, और आज इस कार्यक्रम में आपने हमसे साझा की संस्कृत भाषा की विशेषताएं, साथ ही ये भी कि किस प्रकार से हम अपने युवाओं को इनसे जोड़कर रखेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।
2: नीलम जी शुक्रिया।
1: हमारे साथ इस कार्यक्रम में रहे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील जोशी, आप सहायक आचार्य संस्कृत विभाग हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से। सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
3: आपका भी हृदय से धन्यवाद।
1: आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए और ये कहते हुए कि हम हमेशा याद रखें संस्कृत केवल भाषा नहीं, चरित्र निर्माण का एक माध्यम है, अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति को आगे ले जाने का एक सूत्र है, ये हम याद रखें। मैं नीलम मलकानिया, कार्यक्रम संयोजक श्री प्रमोद कुमार वत्स के साथ अब आप सभी से अनुमति लेती हूँ। नमस्कार।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं राजश्री त्रिवेदी। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने कल संसदीय सौंध भवन में सर्वदलीय बैठक

0: बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने स्वतंत्रता आंदोलन, धर्म और साहित्य सहित हर क्षेत्र में बंगाल के समृद्ध राष्ट्र योगदान को याद करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की तत्कालीन सरकार ने बंगाल की विरासत को नष्ट कर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल को फिर से महान बनाएगी। श्री अमित शाह ने कल कोलकाता के बिस्वास बांग्ला कन्वेंशन सेंटर से पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के संकराइल में अमूल बंगाल डेयरी के दही बनाने के केंद्र की वर्चुअल आधारशिला रखी। यह विश्व की सबसे बड़ी दही बनाने का केंद्र है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के 9 जिलों में कुल 1400 मीट्रिक टन क्षमता वाले 14 गोदामों की वर्चुअल आधारशिला रखी। श्री शाह ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कूचबिहार और दक्षिण 24 परगना जिलों में 100 मीट्रिक टन क्षमता वाले 2-2 गोदामों का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री ने एक सरकारी पोर्टल WBERCS भी शुरू किया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने 1 करोड़ रुपए मूल्य का 1700 मीट्रिक टन से अधिक अवैध रूप से खनन, भंडारण या परिवहन किया गया कोयला जब्त किया है। CISF ने कहा कि यह गहन कार्यवाही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा के बाद की गई है। असम में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ गई है। 7 जिलों में बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर 57,000 से अधिक हो गई है और एक व्यक्ति के मरने की खबर है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने सेना और वायुसेना को बचाव और राहत कार्यों के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि उन्होंने अपने 4 मंत्रिमंडल सहयोगियों को ऊपरी असम का दौरा करने और हाल ही में आई बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित 3 जिलों में बचाव और राहत कार्यों का जायजा लेने का निर्देश दिया है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा विश्व कप फुटबॉल 2036 का मुकाबला मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और यूरोपीय चैंपियन स्पेन के बीच न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में जारी है। अर्जेंटीना फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे सफल टीमों में से एक है जिसने 3 बार खिताब जीता है। अर्जेंटीना के लिए जहां मेसी सबसे बेहतर खिलाड़ी हैं, तो दूसरी ओर 19 वर्षीय लामिन यामल स्पेन के आक्रामक प्रतिभाशाली खिलाड़ी के रूप में उभरे हैं। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने तीसरे एक दिवसीय भारत को 27 रनों से हराकर लंदन के लॉर्ड्स में 2-1 से श्रृंखला जीत ली। जेकब बेथल को प्लेयर ऑफ द मैच और जो रूट को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। इससे पहले भारतीय टीम ने
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। The monsoon session of Parliament will commence today and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. On the eve of the monsoon session,

107.1 MHz पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपके रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 11 सेकेंड। गीत सुहाने प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सदाबहार आवाज़ के साथ, यानी गीता दत्त की आवाज़ के साथ।

गीता दत्त की आवाज में फिल्म साहेब बीवी और गुलाम से सुन रहे थे आप ये गीत। संगीत था हेमंत कुमार का और गीतकार थे शकील बदायूनी साहब। ये फिल्म आई थी 1962 में और इस फिल्म को निर्देशित किया था अबरार अलवी ने और इस फिल्म को निर्मित किया था गुरुदत्त साहब ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी गुरुदत्त, मीना कुमारी रहमान और वहीदा रहमान ने। ये फिल्म 1956 की बंगाली फिल्म की रीमेक थी जो आधारित थी विमल मित्रा के उपन्यास पर। और इस फिल्म की कहानी के साथ साथ इस फिल्म का संगीत भी दर्शकों द्वारा काफ़ी सराहा गया। और अगला गीत आप तक पहुंच रहा है आशा जी, रफ़ी साहब और शमशाद बेगम की आवाज़ में, फिल्म CID से।

फिल्म का नाम सीआईडी और आवाजें थी शमशाद बेगम, आशा भोंसले और मोहम्मद रफी साहब की। संगीत उपिनैयर साहब का और गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी। ये फिल्म आई थी 1956 में और इस फिल्म को निर्देशित किया था राज खोसला ने और निर्मित किया था गुरुदत्त ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी देवानंद, शकीला, जॉनी वॉकर, के एन सिंह और वहीदा रहमान ने। इस फिल्म में देव साहब की भूमिका एक पुलिस इंस्पेक्टर की थी जो एक हत्या के मामले की जांच करता है। और अगला गीत आप तक, जगजीत कौर की आवाज़ में, फिल्म शगुन से।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। अगला गीत रफी साहब की आवाज़ में।

रफ़ी साहब की आवाज़ में फिल्म कोहिनूर से सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत। ये फिल्म आई थी 1960 में और इस फिल्म का निर्माण किया था वीएन सिन्हा ने, निर्देशन किया था एसयू सनी ने और इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी दिलीप कुमार, मीना कुमारी, लीला चिटनेस और कुमकुम ने। फिल्म का संगीत दिया था नौशाद साहब ने और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल फिल्म रही थी और 1960 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। अगला गीत लता मंगेशकर और रफ़ी साहब की आवाज़ में।

मदर इंडिया फिल्म से सुना आपने ये गीत लता मंगेशकर और रफ़ी साहब की आवाज़ में, संगीत नौशाद साहब का था और गीतकार थे शकील बदायूनी। ये फिल्म आई थी 1957 में और इस फिल्म को लिखा और निर्देशित किया था महबूब खान ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी नरगिस, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राजकुमार ने। ये फिल्म महबूब खान की ही फिल्म औरत का रीमेक थी और फिल्म मदर इंडिया एक गरीब महिला राधा की कहानी है जो बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए, जिंदगी से लड़ते हुए, जीवन की परिस्थितियों से लड़ते हुए, समाज से लड़ते हुए अपने बच्चों का पालन पोषण करती है और भारतीय नारी की जो एक सशक्त परिभाषा है उसे स्थापित करती है। अगला गीत फिर से लता मंगेशकर और रफी साहब की आवाज़ में।

गीत सुहाने में आज के लिए बस इतना ही। 2 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी 2:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम में। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं राजश्री त्रिवेदी। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने कल संसदीय सौंध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथ

0: को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
1: दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने स्वतंत्रता आंदोलन, धर्म और साहित्य सहित हर क्षेत्र में बंगाल के समृद्ध राष्ट्र योगदान को याद करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की तत्कालीन सरकार ने बंगाल की विरासत को नष्ट कर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल को फिर से महान बनाएगी। श्री अमित शाह ने कल कोलकाता के बिस्वास बांग्ला कन्वेंशन सेंटर से पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के शंकरराइल में अमूल बंगाल डेयरी दही बनाने के केंद्र की वर्चुअल आधारशिला रखी। ये विश्व की सबसे बड़ी दही बनाने का केंद्र है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के 9 जिलों में कुल 1400 मैट्रिक टन क्षमता वाले 14 गोदामों की वर्चुअल आधारशिला रखी। श्री शाह ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कूच बिहार और दक्षिण 24 परगना जिलों में 100 मीट्रिक टन क्षमता वाले 2-2 गोदामों का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री ने एक सहकारी पोर्टल WBERCS भी शुरू किया है। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के धेमाजी, डिब्रूगढ़, चराईदेव, तिनसुकिया, लखीमपुर, शिवसागर, उदलगुरी और जोरहाट जिले प्रभावित हैं, जिनमें से अधिकांश ऊपरी असम में स्थित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 22 राजस्व सर्कल और 298 गांवों के 57,199 लोग प्रभावित हुए हैं। शिवसागर जिले के अमगुरी राजस्व सर्कल में बाढ़ से संबंधित एक मौत की सूचना मिली है, जिससे राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या अब तक 5 हो गई है। राज्य सरकार ने 14 राहत शिविर बनाए हैं। इस बीच शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट जिलों में बाढ़ की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। बदलते हालात को देखते हुए असम सरकार ने भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना से अनुरोध किया है कि जरूरत पड़ने पर निकासी और बचाव कार्यों में सहयोग के लिए वे तैयार हैं। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। फीफा विश्व कप फुटबॉल 2026 का मुकाबला मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और यूरोपीय चैंपियन स्पेन के बीच न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में जारी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगा। इस पर 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने तीसरे एक दिवसीय में भारत को 27 रनों से हराकर लंदन के लॉर्ड्स में 2-1 से श्रृंखला जीत ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष। The monsoon session of Parliament will commence today and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. On the eve of the monsoon session, government yesterday convened an all-party meeting at Parliament House NXE. The meeting was chaired by Defence Minister Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended the meeting. Just after the meeting began, opposition parties staged a symbolic walkout from the meeting over the participation of Nationalist Citizens Party of India. The NCPI is a registered party that has participated in the West Bengal Assembly elections, and recently several rebel

तुम जब भी आना अपने साथ ले आना समंदर, तुम जब भी आना अपने साथ ले आना समंदर, जब सूरज डूब रहा होगा और चांद निकलने को होगा, हम मिलेंगे समंदर किनारे किसी हल्के से सुनहरे थोड़े धुंधलाए से रेत के घर में। ये दुनिया कभी इतनी बड़ी नहीं हो सकेगी कि तुम आ ना सको, और ना ही ये हो पाएगी इतनी छोटी कि हमें मिलने की जगह ना दे सके। हंड्रेड पॉइंट वन मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:12 और 17 सेकेंड। शुरू हो चुका है प्रोग्राम रात सुरमई। प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम का आगाज करते हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज के साथ।

वैसे बताने वाले तो बहुत कुछ बता गए हैं, लेकिन सच कहूं, मोहब्बत को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। मुझे ऐसा लगता है कि मोहब्बत के मायने सबके लिए अलग अलग होते हैं। किसी के लिए ये इंतज़ार है, किसी के लिए यादें हैं, तो किसी के लिए साथ चलना मोहब्बत कहा जा सकता है। खैर, मोहब्बत की परिभाषाएं तो चलती रहेंगी और बातों का यह सिलसिला भी यूं ही चलता रहेगा, लेकिन अभी वक्त है अगला गीत सुनने का। अगला गीत लता जी की आवाज़ में।

आपके दिल की धुन इस वक्त क्या कह रही है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ मेरा दिल तो एक ख्वाब बुनना चाहता है। चलेंगे आप मेरे साथ अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: एक ऐसा वक्त भी आता है चांदनी शब में, एक ऐसा वक्त भी आता है चांदनी शब में, मेरा दिमाग मेरा दिल कहीं नहीं होता, तेरा ख्याल कुछ ऐसा निखर के आता है, तेरा ख्याल कुछ ऐसे निखर के आता है कि तेरा विसाल भी इतना हसीन नहीं होता। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपके साथ आपके रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:38 और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रात सुरमई।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

कहने और सुनने की जो कश्मकश होती है ना, यही हमें इंसान बनाती है। और ये कश्मकश जब मोहब्बत से मिल जाती है तो इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। कई बार मैं सोचती हूँ कि इस पूरी कायनात में सबसे मुश्किल काम शायद यही है, अपने दिल की बात को सही वक्त पर, सही इंसान पर, सही लफ्ज़ों में कह पाना। कई बार तो पूरी ज़िंदगी गुजार दी जाती है लेकिन समझ नहीं आता कि क्या ये सही इंसान है, क्या ये सही वक्त है, क्या ये सही लम्हा है। और इसी उधेड़ बुन में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है और वो इंसान शायद हमारी ज़िंदगी से हमसे छूट भी जाता है। और फिर हम कई बार जब हम सोचते हैं तो फिर लगता है कि ये रंग और नूर की बारात आखिर पेश किसे की जाए। अगला गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में।

मैंने जज्बात निभाए हैं उसूलों की तरह। वाकई साहिर साहब को उनके शब्द ही साहिर बनाते हैं। पता है जिंदगी में कई बार ऐसा मोड़ आता है जब हमारे पास सब कुछ होता है, कामयाबी होती है, नाम होता है, महफिलें होती हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में एक ऐसा खालीपन होता है जिसे दुनिया की कोई भी दौलत, कोई भी चमक भर नहीं पाती। साहिर साहब ने जो इस गीत में कहा है वो आज भी उतना ही सच है। हम अक्सर अपनी खुशियों की बारात सजाते हैं, लेकिन उस उदासी का क्या जो बार बार हमारी यादों से, हमारी स्मृतियों से हमें घेरती है। अगला गीत फिर से रफी साहब की आवाज में।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। 3 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर आपके साथ रहेंगी सुरभि, मुझे यानी अपनी रात की हमसफर। मंजू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने कल संसदीय सौंध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है।

0: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने स्वतंत्रता आंदोलन, धर्म और साहित्य सहित हर क्षेत्र में बंगाल के समृद्ध राष्ट्र योगदान को याद करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की तत्कालीन सरकार ने बंगाल की विरासत को नष्ट कर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल को फिर से महान बनाएगी। श्री अमित शाह ने कल कोलकाता के विश्वास बांग्ला कन्वेंशन सेंटर से पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के संकराइल में अमूल बंगाल डेयरी के दही बनाने के केंद्र की वर्चुअल आधारशिला रखी। यह विश्व की सबसे बड़ी दही बनाने का केंद्र है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के 9 जिलों में कुल 1400 मीट्रिक टन क्षमता वाले 14 गोदामों की वर्चुअल आधारशिला रखी। श्री शाह ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कूच बिहार और दक्षिण 24 परगना जिलों में 100 मीट्रिक टन क्षमता वाले दो दो गोदामों का भी उद्घाटन किया। सहकारिता मंत्री ने एक सहकारी पोर्टल WBERCS भी शुरू किया है। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के धेमाजी, डिब्रूगढ़, चराईदेव, तिनसुकिया, लखीमपुर, शिवसागर, उदलगुरी और जोरहाट जिले प्रभावित हैं, जिनमें से अधिकांश ऊपरी असम में स्थित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 22 राजस्व सर्कल और 298 गांवों के 57,199 लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने 14 राहत शिविर बनाए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. हेमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जनता की सुरक्षा और कल्याण राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा विश्व कप 2026 का फुटबॉल का बहुचर्चित फाइनल मुकाबला न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और यूरोपीय चैंपियन स्पेन के बीच चल रहा है। 90 मिनट के खेल के बाद दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। अब जीत के लिए उन्हें अतिरिक्त समय दिया गया है। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने तीसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रनों से हराकर लंदन के लॉर्ड्स में 2-1 से श्रृंखला जीत ली। जैकब बेथल को प्लेयर ऑफ द मैच और जो रूट को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित गुयाना में 133 यात्रियों और चालक दल को ले जा रही एक सरकारी नौका पलट गई। अधिकारियों ने बताया है कि अब तक 67 लोगों को बचा लिया गया है। लापता लोगों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर खोज और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। गुयाना के सरकार की ओर से बचाव कार्य का नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स ने बताया कि MV बारिमा नौका राजधानी जॉर्ज टाउन से उत्तरी अटलांटिक तट के किनारे पोर्ट कैटुमा की ओर जा रही थी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष एब्राहम। The monsoon session of Parliament will commence today and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. On the eve of the monsoon session, government yesterday convened an all-party meeting in Parliament House Annexe. The meeting was chaired by Defence Minister Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended the meeting. Just after the meeting began, opposition parties staged a symbolic walkout from the meeting over the participation of Nationalist Citizens Party of India, NCPI. The NCPI is a registered party that has participated in the West Bengal Assembly elections, and recently several rebel Trinamool Congress MPs have joined it. However, after registering their protest, the opposition members attended the meeting. Speaking to media after the meeting, Mr. Kiran Rijiju urged all political parties to ensure the smooth functioning of Parliament and engage in constructive discussions on key issues.
2: There are various demands by various political parties for discussion. We have said that let Parliament function smoothly. Exactly what are the issues to be discussed, that has to be decided in the Business Advisory Committee.
1: Talking to media, TMC MP Mahua Moitra said that the entire opposition, including Congress, Samajwadi Party, DMK, JMM and Aam Aadmi Party, walked out from the meeting. She also alleged that NCPI is not a recognized parliamentary party.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं आपके साथ सुरभि। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम है हमराही। चलिए आगाज करते हैं हमराही का। जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां दिल बहुत कुछ

हमराही प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। जब बात इश्क की, मोहब्बत की और प्यार की होती है, तब ऐसे में सबसे खूबसूरत तोहफा फूल होते हैं। जी हाँ, फूल सिर्फ खुशबू नहीं लाते, वे दिल की उन भावनाओं को भी साथ समेट लाते हैं जिन्हें अक्सर शब्द हम कह नहीं पाते। जब किसी अपने के लिए फूल भेजे जाते हैं तो उसमें प्यार, अपनापन, इंतज़ार तीनों महकते हैं। आइए सुनते हैं इसी खूबसूरत एहसास को बयां करता हुआ ये सदाबहार गीत।

हमराही प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है हमराही और मैं हूँ सुरभि आपके साथ। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी खुशियां दे देती है जिसका इंतजार बरसों से होता है। जब दिल अपनी सबसे प्यारी मंजिल के करीब पहुंच जाए तो हर पल किसी जश्न से कम नहीं लगता। ऐसे ही मोहब्बत की खुशी और अपना पन लिए पेश है ये गीत।

हमराही सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। हर प्यार की अपनी एक कहानी होती है, कभी फूलों की तरह महकती तो कभी परिंदों की तरह खुलकर गुनगुनाती हुई। कुछ किस्से तो इतने मासूम होते हैं कि वे पीढ़ियों तक मुस्कुराहट बनकर जिंदा रहते हैं। तो आइए सुनते हैं प्यार की एक ऐसी ही बहुत ही प्यारी खूबसूरत दास्तां बयां करता हुआ एक ऐसा ही गीत, एक था गुल और एक थी बुलबुल।

हमराही प्रोग्राम सुरभि के साथ आप सुन रहे हैं और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। वो नहीं भूलता कहाँ जाऊं, वो नहीं भूलता जहाँ जाऊं, हाय मैं क्या करूं, हाय मैं कहाँ जाऊं, वो नहीं भूलता मैं जहाँ जाऊं।

और इसी गीत के साथ हमराही का सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने कल संसदीय सौंध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने 1 करोड़ रुपए मूल्य का 1,700 मीट्रिक टन से अधिक अवैध रूप से खनन, भंडारण या परिवहन किया गया कोयला जब्त किया है। CISF ने कहा कि यह गहन कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा के बाद की गई है। सरकार देशभर में मशीनीकृत स्वच्छता को बढ़ावा देते हुए स्वच्छता कर्मचारियों की सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र नमस्ते योजना को एक प्रमुख पहल के रूप में लागू कर रही है। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।

0: राज्य के धेमाजी, डिब्रूगढ़, चराईदेव, तिनसुकिया, लखीमपुर, शिवसागर, उदलगुरी और जोरहाट जिले प्रभावित हैं, जिनमें से अधिकांश ऊपरी असम में स्थित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 22 राजस्व सर्कल और 298 गांवों के 57,199 लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने 14 राहत शिविर बनाए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जनता की सुरक्षा और कल्याण राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना, राजस्थान, विदर्भ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आज बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक के तूफान का भी पूर्वानुमान व्यक्त किया है। उत्तरी इराक में एक ईरानी ड्रोन को नियंत्रित तरीके से नष्ट करने के दौरान मारे गए तीसरे अमरीकी सैनिक की मौत की खबर है। इससे पहले अमरीकी केंद्रीय कमान ने जॉर्डन में अज्ञात शवों का पता लगाने की बात कही थी, जहां एक अलग ईरानी हमले में दो अमरीकी सैनिक मारे गए और एक लापता था, लेकिन अब कुल मिलाकर तीन अमरीकी सैनिक मारे गए हैं। फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में स्पेन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर नया चैंपियन बन गया है। यूरोपीय चैंपियन स्पेन ने विश्व कप के इतिहास में दूसरी बार यह खिताब जीता है। वह 16 साल के बाद फिर से चैंपियन बना है। फेरॉन टॉरेस ने विजयी गोल किया। अविजित रहने के मामले में स्पेन ने इटली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित गुयाना में 133 यात्रियों और चालक दल को ले जा रही एक सरकारी नौका पलट गई। अधिकारियों ने बताया है कि अब तक 67 लोगों को बचा लिया गया है। लापता लोगों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर खोज और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने तीसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रनों से हराकर लंदन के लॉर्ड्स में 2-1 से श्रृंखला जीत ली। जैकब बेथल को प्लेयर ऑफ द मैच और जो रूट को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। The monsoon session of Parliament will commence today and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. On the eve of the monsoon session, government had yesterday convened an all-party meeting at Parliament House in Exe. The meeting was chaired by Defence Minister Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended the meeting. Just after the meeting began, opposition parties staged a symbolic walkout from the meeting over the participation of Nationalist Citizens Party of India, NCPI. The NCPI is a registered party that has participated in the West Bengal Assembly elections, and recently several rebel Trinamool Congress MPs have joined it. However, after registering their protest, the opposition members attended the meeting. Speaking to media after the meeting, Mr. Kiran Rijiju urged all political parties to ensure the smooth functioning of Parliament and engage in constructive discussions on key issues.
2: There are various demands by various political parties for discussion. We have said that let Parliament function smoothly. Exactly what are the issues to be discussed? That has to be decided in the Business Advisory Committee.
1: Talking to media, TMC MP Mahua Moitra said that the entire opposition, including Congress, Samajwadi Party, DMK, JMM and Aam Aadmi Party, walked out from the meeting. She also alleged that NCPI is not a recognized parliamentary party. Lok Sabha Speaker Om Birla called on the Business Advisory Committee meeting ahead of the monsoon session of Parliament. During the meeting, members representing the government as well as various political parties exchanged views on the legislative and other businesses proposed to be taken up during the session. Addressing the meeting, Mr. Birla emphasized the importance of constructive deliberations, meaningful participation and adherence to the highest parliamentary traditions. Delhi police has clarified that no permission has been sought or granted for any protest march and procession in the New Delhi district in view of Parliament session beginning today. In a social media post, the police said Section 163 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita is in force in the area, hence protest marches, processions, demonstrations and assemblies of

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है अरुणिमा और मैं हूं आपके साथ सुरभि। आप सभी को मेरा नमस्कार। जब दिल सच्ची नीयत से दुआ करता है तो हर अर्जी उम्मीद की एक नई किरण बन जाती है। विश्वास, प्रेम और उम्मीद हमें हर मुश्किल में आगे बढ़ने की ताकत देती है। आइए सुनते हैं एक ऐसा ही गीत जो दिल की गहराइयों से निकलकर प्रार्थना और खूबसूरत एहसास को सुरों में पिरोता है।

अरुणिमा सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। भक्ति वो शक्ति है जो मन को शांति, विश्वास और नई ऊर्जा से भर देती है। जब भी हम श्रद्धा के साथ ऊपर वाले का स्मरण करते हैं तो हर दिन एक नई शुरुआत और एक नया कदम, एक नया उत्साह बन जाता है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूँ सुरभि, प्रोग्राम सुन रहे हैं आप अरुणिमा। देखा जाए तो ये जिंदगी हमें हर दिन कुछ नया सिखाती है, कभी खुशी दे जाती है तो कभी चुनौती, लेकिन हर अनुभव हमें और मजबूत बनाता है। मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना ही जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो चलिए उम्मीद, हौसले और सकारात्मक सोच से भर देने वाला गीत सुनते हैं।

जीवन की असली खूबसूरती तब और बढ़ जाती है जब हमारी मुस्कान किसी और के चेहरे की वजह बन जाए या हम किसी के काम आ जाए। क्योंकि अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन जो लोग दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी ढूंढ लें, वही जीवन सच्ची मायनों में सार्थक हो जाता है। तो चलिए सुनते हैं इंसानियत और अपनत्व का संदेश देता हुआ ये गीत।

और इसी गीत के साथ अरुणिमा का ये सफ़र यहीं तक। 5:10 पर भोर सुहानी में होगी हमारी आपकी एक बार फिर मुलाकात। अब सुरभि को दीजिए अनुमति, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। 13 अगस्त तक चलने वाले सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे। सत्र का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए कल सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मीडिया से बातचीत में सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे सुने।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सदस्यों ने इस सत्र के दौरान उठाए जाने वाले विधायी और अन्य प्रस्तावित कार्यों पर अपने विचार साझा किए। श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, अर्थपूर्ण भागीदारी और उच्चतम संसदीय परंपराओं के अनुपालन के महत्व पर बल दिया। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है और ना ही ऐसी कोई अनुमति मांगी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू है, इसीलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर सख्त प्रतिबंध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जनसंपर्क क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है। इन 3 देशों की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने कल समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल में हुई बैठक में ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। ये विधेयक आज से शुरू हो रहे राज्य विधानसभा के मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने 1,700 मीट्रिक टन से अधिक अवैध कोयला जब्त किया है। ये जब्ती पिछले 3 सप्ताह में कोयला क्षेत्रों में CISF के गहन अभियानों के दौरान हुई। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय

इस समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिया गया। सरकार देश भर में स्वच्छता को बढ़ावा देते हुए सफाई कर्मियों की सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक गरिमा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता तंत्र नमस्ते योजना लागू कर रही है। सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय तथा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित इस योजना का उद्देश्य मशीनीकृत सफाई, कौशल विकास और कल्याणकारी उपायों के माध्यम से सीवर और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक मैनुअल सफाई प्रक्रिया को समाप्त करना है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी अगले दिनों तेज बारिश का अनुमान है। स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। फाइनल में स्पेन ने अतिरिक्त समय में अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। फेरान टेरोस ने विजयी गोल किया। स्पेन दूसरी बार यह खिताब जीता है। और इंग्लैंड ने तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। लंदन के लॉर्ड्स में कल हुए मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 388 रन का लक्ष्य दिया। भारतीय टीम 7 विकेट के नुकसान पर 360 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। प्रोग्राम है भोर सुहानी और मैं हूं आपके साथ सुरभि। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जिंदगी में कभी कोई अकेला नहीं होता। एक सच्चा साथ, एक भरोसे भरा हाथ और थोड़ी सी संवेदना अगर मिल जाए तो किसी की भी पूरी दुनिया बदल सकती है। इंसानियत की सबसे बड़ी पहचान यही है कि हम और आप एक दूसरे का सहारा बने। तो चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं उम्मीद, अपनापन और हौसले का संदेश देते हुए इस भावपूर्ण गीत को सुनकर।

भोर सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। सफर चाहे कितना ही कठिन क्यों ना हो, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो हौसला नहीं छोड़ते। हर ठोकर हमें कुछ नया सिखाती है और हर नई सुबह एक नई शुरुआत का संदेश देती है। तो चलिए आत्मविश्वास को थाम कर निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा को देने वाला ये गीत हम और आप सुनते हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है भोर सुहानी। जिंदगी में कुछ पल ऐसे भी आते हैं जिसमें बीते हर लम्हे खास बन जाते हैं। खुशियां जब अचानक दस्तक देने लगती हैं तो दिल मुस्कान से भर उठता है, नई उम्मीदें जागती हैं, बहुत ही खूबसूरत एहसास जीवन में आ जाते हैं। तो चलिए खूबसूरत एहसास, नई उम्मीदों और जीवन की मधुरता को समेटे ये गीत सुनते हैं।